ज्योत मंत्र मन अस्थिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, कोट सूरज जा कह प्रगास, कोट महादेव अर कबिलास, दुर्गा कोट जा कह मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे, जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम रहाओ,

बासक कोट सेज बिस्तर है, समुंद कोट जाके पानी हार, रुमावल कोट अठारे पार, कोट कमेर परे पंडार, कोटक लक्ष्मी करे सिगार, कोटक पाप

रहाओ। जैसी पर पुरखा रत नारी, लोभी नर तन का हितकारी। कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामी प्रीत मुरारी। साई प्रीत जे आपे लाए, गुर प्रसादी दुबदा जाए। कबहु न टूटस रहा समाए, नामे चित लाया सचनाए। जैसी प्रीत बारिक अरमाता, ऐसा हर सेती मन राता। प्रणवै नाम देव लागी प्रीत, गोविंद बसे हमारे चीत।

जपताना। पापी का कर अग्नि माहे, जलत रहे मिटवे कब नाहे। राव हर की भगत ना देखे जाए, मार्ग छोड़ अमार्ग पाए। मूलो पूला आवे जाए, अमृत डार लाद बिखाए। ज्यो बेसवा के परे अखारा, कापर पहर करे सिंगारा। पूरे ताल निहाले सास, वहां के गले जम का है फांस। जाके मस्तक लिखियो कर्मा, सो पज पर है गुर की सरना। कहत नाम दियो इहो विचार, इन विद संतो उतरो पार। संडा मर कह जाए पुकारे, पड़े नहीं हम ही पछारे। राम कह कर ताल बजावे, चटिया सब बिगारे। राम नामा जप वो करे,

जो गुरुदेव तसीस आकाश, जो गुरुदेव सदा साबास, जो गुरुदेव सदा बैरागी, जो गुरुदेव पर निंदा त्यागी, जो गुरुदेव

काल गुरुमुख राम नाम गुण गाए तू अपरंपर सर्व पाल रहाओ बिन साध ना पाये हर का संग बिन गुरु मैल मलीन अंग बिन हर नाम ना सुध

गुर संग दिखायो राम राय। मिल सकी सहेली हर गुण बने, हर प्रभ संग खेले वर कामन। गुरमुख खोजत मन मने रहाओ, मन मुखी दुहागन नाहे पेओ। ओ कट कट रावे सर्व प्रेओ, गुरमुख तिरची ने संग देओ। गुरु नाम दृढ़ाया जप जपेओ, बिन गुर भगत ना पाओ होए। बिन गुर संत ना संग दे, बिन गुर अंधले तंद रोए। मन गुरमुख निर्मल मल शब्द खोए।

ऐसे संत जन राम नाम रवत रहे। मैं मूरख मुग्ध ऊपर करो दया, तौ शरणागत रहूं पया। कहत नानक संसार के ने फल कामा, गुर प्रसाद को पा।

सालग्राम विप पूज मनावो, सुकृत तुलसी माला राम नाम जप बेड़ा बांधो, दया करो दयाला,

दयाला प्रणवत नानक दासन दासा दया करो दयाला बसंत महला पहला हिंडोल सौरड़ी बस सब किछ सांझी।

वतम रह अंदिन साच नाम उचरै इन विद प्राणी दुत्तर तरै बिख अमृत करतार उपाए संसार बिरख को दोय फल लाए आपे करता करे कराए जो

तीजा राते साथ हर नाम निहाला दया करो प्रभु दीन दयाला तिस बिन अवर नहीं मैं कोए ज्यों पावे त्यों राखे सोए गुरु गोपाल मेरे मन पाए रह ना सकूं दर्शन देखे।

मनमुख मोए नाही हर मनमाहे, मर मर जमे पी मर जाहे, से जन जीवे जिन हर मनमाहे। साथ समाले साथ समाए राव, हर ना सेवे ते हर ते दूर, दिसंतर पवे सिर पावे तूर। हर आपे जन लिए लाए, तिल सदा सुख है तिल ना तमाए।

भरपूर, गुर के शब्द रहा भरपूर, जी जंत की करे प्रतपाल, गुर प्रसादी सब समाल, दर्शा चै पथरों कर जाए, नानक नाम बढ़ाई पाए, बसंत महला तीजा, अंतर पूजा मनते होए, एक होवे खै और न कोए, दूजे लोकी बहुत दुख पाया, सतगुर मैनो एक दिखाया, मेरा प्रभ मौलिया सद बसंत, ए मन मौलिया गाए गुण गोविंद रहाओ, गुर पूछो तुम करो विचार, ता प्रभ साचे लगे प्यार, आप छोड़ होए दासत।

अपना प्रभ सेवे सहज सुभाए, नानक नाम वसै मन आए, बसंत महला तीजा, माया मोह शब्द जलाए, मन तन हरिया सतगुरु भाए, सफल्यो बिरख हर कै द्वार, साची बाणी नाम प्यार, ए मन हरिया सहज सुभाए, सच फल लागे सतगुरु भाए रहाओ, आपे नेड़े आपे दूर, गुर कै शब्द देखे सद हजूर, छावकणी फूली बन राए, गुरमुख बिगते सह सुभाए, अनदिन कीर्तन करे दिन रात, सतगुर गवाई विच्चों झूठ परात, परपंच वेख रहा विस्माद, गुरमुख पाये नाम प्रसाद, आपे करता सब रख भोग, जो किछ करे सोई पर भोग, वड्डा दाता तिल ना तमाए, नानक मिलिए शब्द कमाए, बसंत महला तीजा, पूरे पाग सचकार कमावे, एक पोचे तै फिर जून ना आवे, सफल जन्म इस जग में आया, सच नाम सहज समाया, गुरमुख कार करो लिव लाए, हर नाम सेवो विच्चों आप गवाए रहाओ, तिस जन की है साची बाणी, गुर कै शब्द जग माए समाणी, चहु जुग पसरी साची सोए, नाम रता जन प्रगट होए, एक साचे शब्द रहे लिव लाए, से जन सा

जीवत मरे मर मरण सवार है। गुरु कै शब्द साच उधार है रहाओ। गुरुमुख सच भोजन पवित्र शरीरा, मन निर्मल सदगुणी गहीरा। जब मैं मरे ना आवे जाए, गुरु प्रसादी साथ समाए। साचा से वो साच पछाने, गुरु के शब्द हर दर निशाने। दर साचे सच शोभा होए, निज करवासा पावे सोए। आप अपूल सच्चा सच सोए, और सब पूले दूजे पत होए। साचा सेवो साची बाणी, नानक नामे साच समाणी। बसंत महला तीजा, बिन कर्मा सब परम पुलाई। माया मोह बहुत दुख पाए, मनमुख अंधे ठौर न पाई। बिस्ता का कीड़ा बिस्ता माए समाए, हुकम मने सो जन प्रवान। गुर के शब्द नाम निशान रहाओ, साच रते जिना।

लै पाए सो बुझे जिस आप बुझाए सतगुर सेवा नाम दृढ़ाए जिन एक जाता के जन प्रवान नानक नाम रते दा निशान बसंत मैला तीजा कृपा करे सतगुरु मिलाए आपे आप।

मन शांत न होए, बहु अभिमान अपनी पक होए, सेवड पागी जिन शब्द पछाणिया, बार जांदा कर मैं आणिया, कर मैं वक्त अगम अपारा, गुरमत खोजे शब्द बिचारा, नाम नाम निद पाई करनी माए, सदा रंग राते सच समाए, आप करे किछ करन

देता जापी आदमंत गुण आस विचारी मेरी माए हर जप हर कह लगो पाए रहाओ गुरु प्रसाद लागे नाम स्वाद काहे जन्म गवावो वैरवाद गुर कृपा की नीचू का अभिमान सहज पाए पाया हर नाम उत्तम ऊंचा शब्द काम नानक बखान है साच नाम बसंत महला तीजा बनस्पत मौली चढ़िया बसंत हे मन मौलिया सतगुरु संग तुम साच आवो मुग्ध मना ता सुख पावो मेरे मना रहाओ इत मन मौल्य पया आनंद अमृत फल पाया नाम गोविंद एको एक सब आख बखाने हुकम बूझे ताए को जाने कहत नानक हो मैं कह न कोए आखन वेखन सब साहिब ते होए बसंत महला तीजा सब जुग तेरे कीते होए सतगुरु पेटे मत बुद्ध होए हर जियो आपे लहो मिलाए गुर कह शब्द सच नाम समाए रहाओ मन बसंत हरे सब लोए फले फुलिये राम नाम सुख होए सदा बसंत गुर शब्द विचारे राम नाम रखे उदारे मन बसंत तन मन

पूरे पाग हर पगत कराए। इस मन को बसंत की लगे न सोए, ए मन जलिया दूजे दोए रहाओ। ए मन तंदे बांदा कर्म कमाए, माया मूठा सदा बिन लाए। ए मन छूटे जा सतगुरु पेटे, जम काल की फिर आवे ना फेटे। ए मन छूटा गुरु लिया छाए, नानक माया मोह शब्द जलाए। बसंत महला तीजा बसंत चढ़िया फूली बन राए, ए जी जंत फूले हर चित लाए। इन विद ए मन हरिया होए, हर हर नाम जपे दिन राती। गुरमुख हो मैं कदे तोए रहाओ, सतगुर पाणी शब्द सुनाए। ए जग हरिया सतगुर पाए, फल फूल लागे जा आपे लाए। मूल लगे ता सतगुर पाए, आप बसंत जगत सब वाड़ी। नानक पूरे पाग भगत निराली।

टूट ना की अकुली है पाई, सब संगत मेल मिलाए, आप सराय करे आप भाई, जिन हरिया किया सब कोए, नानक मन तन सुख।

आए रहाओ। काट काट अंतर एको हर सोए, गुर मिलिया एक प्रगट होए। एको एक रहा परपूर, साकत नर लोभी जाने दूर। एको एक वर्तै हर लोए, नानक हर एको करे सो होए। बसंत महला चौथा, रैन दिनस दोए सदे पए। मन हर सिमरो अंत सदा रख ले, हर हर चेत सदा मन मेरे। सब आलस दुख पंज प्रभ पाया, गुरमत गावो गुण प्रभ के रे रहाओ। मन मुख फिर हो मैं मोए, काल दैत संगारे जमपुर गए। गुरमुख हर हर हर लिव लागे, जन्म मरण दो दुख पागे। भगत जना को हर कृपा धारी, गुरु नानक तुखा मिलिया बनवारी। बसंत हिंडोल मैला चौथा, कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद राम नाम रतन कोठड़ी घर मंदिर एक लुकानी। सतगुर मिले ता खोजिए, मिल ज्योति ज्योत समानी। माधो साधु जन देओ मिलाए, देखत दर्स पाप सब नासे। पवित्र परम पद पाए राव, पंच चोर मिल लागे नगरिया। राम नाम तन हिरिया, गुरमत खोज परे तब पकरे। तन साबत रास उबरिया, पाखंड परम उपाव कर थाके। रिद अंतर माया मा

हम किए पतत पवीछे बसंत हिंडोल मैला चौथा। मेरा एक छिन मनुआ रह न सके नित हर हर नाम रस गीदे जो बारिक रसक परयो थन माता थन काडे बिलल बिली दे। गोविंद जीओ मेरे मन तन नाम हर दी दे।

काल नहीं चेत्या जम पकड़े काल सलुंज गोविंद जीओ बिखो में ममता मुंज सत संगत गुर की हर प्यारी मिल संगत हर रस पुंज राव सत संगत साथ दया कर मेलो शरणागत साधु पंज हम डूब दे पाथर काट ले हो प्रभ तुम दीन दयाल दुख पंज हर उस्तत तारो रिद

नानक जाचे एक दान कर कृपा मोहे देव नाम। बसंत।

पग तारा दें जोग जुगत, नेत्र संतोखे दर्श पेख, रसना गाए गुण अनेक, तृष्णा बूजी गुर प्रसाद, मन आधा ना हर रसे स्वाद, सेवक लागो चरण सेव, आद पुरुष अपरंपर देव, सगल उदाहरण तेरो नाम, नानक पायो इहो निधान, बसंत महला पंजवा, तुम बरदाते दे रहे, जी प्राण में रव रहे, दीने सगले पोजन खान, मोहे निर्गुण एक गुण ना जान।

तरों टेक सर्व कला प्रभु तुम पर बीन अंत न पावे जलह मीन अगम अगम ऊंचे ते ऊंच हम थोरे तुम बहुत मूच जिन तू ते आया से गनी जिन तू पाया से पनी जिन तू सेव्या सुखी से संत

एवड पाग हो है जिस प्राणी सो पाए इह पद निर्वाणी रहाओ दूजी सेवा जीवन बिरखा कछु न होई है पूरन।

नानक जन हर हर त्याए। बसंत महला पंजवा मन तन पीतर लागी प्यास, गुरदयाल पूरी मेरी आस। किल विख काटे साध संग, नाम जप्यो हर नाम रंग। गुर प्रसाद बसंत बना, चरण कमल हृदय उधारे। सदा सदा हर जस सुना रहाओ। समरथ स्वामी कारण करण, मोहे अनाथ प्रभु तेरी शरण। जी जंत तेरे आधार, कर कृपा प्रभु लेहि।

क्या सब जंत खाए अंतर जामी प्रभ दयाल अपने दास को नदर निहाल कर कृपा मुझ देहो दान जप जी वै नानक तेरो नाम बसंत महला पंजवा। राम रंग सब गए पाप राम जपत तक नहीं संताप गोविंद जपत सब मिटे अंधेर हर सिमरत कछना है फेर बसंत हमारे राम रंग संत जना स्यो सदा संग रहाओ संत जनी किया उपदेश जय गोविंद भगत सो तन देश हर भगत हीन उद्यान थान गुर प्रसाद कट कट पछान हर कीर्तन रस भोग रंग मन पाठ करत तू सदा संग निकट पेख प्रभ

जप नानक स्वामी सद हजूर बसंत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा गुर कृपा ते नित चवा प्रभ रखवाले माई बाप जा कै सिमरन नहीं संताप खसम त्याई इक मन इक भाए गुर पूरे की सदा शरणाई साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ अपने जन प्रभ आप रखे दुष्ट दूत सब प्रम थके बिन गुर साचे नहीं जाए दुख देश दुसंतर रहे ताए किरत ओना का मिटस नाहे ओए अपना बीजिया आप खाए जन का रखवाला आप सोए जन को पहुँच ना सकस कोए प्रभ दास रखे कर जतन आप अखंड पूरन जा को प्रताप गुण गोविंद नित रसन गाए नानक जी वह हर चरण ध्याए बसंत महला पंजवा गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूरन काम जप जी वह नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर्षित आवे बिन सत गुरु दी सह बिल लांती साकत फिर आवे जावे रहाओ।

साध संगत प्रभु कियो निवास, हर जप जप होई पूरन आस, जल थल मही अल रव रया, गुर मिल नानक हर हर कया, अष्ट सिद्ध नवनिद एहे, करम प्राप्त जिस नाम देहे, प्रभ जप जप जीवे तेरे दास, गुर मिल नानक कमल पर गास, बसंत महला पंजवा कर पहला, इक तुके इक ओंकार, सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जप पुनिया, प्रभ मेले चिरी विछुनिया, तुम रवो गोविंद रवन जोग, जित रवे है सुख सहज भोग रहाओ, कर कृपा नदर निहालिया, अपना दास आप संभालिया,

नानक प्रभ कृपा भई बसंत महला पंजवा रोग मिटाए प्रभु आप बालक राखे अपने कर थाप सांस सहज गृह सद बसंत गुरपुरे की सरणी आए कल्याण रूप जप हर हर।

विस्तारे हो, प्रभु कात मैल निर्मल करे, गुरपूरे की सरणी परे, आप करें आप करने हारे, कर कृपा नानु।

देख फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागे चरण कमल पागे तुम मिलो प्रभ सभागे हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बास कूले एक रहे सूख कथूले।

दुबदा दूर करो लिवलाए। हर नामे के हो वो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा विछाए। इन विद पासा तालो बीर, गुरमुख नाम जपो दिन।

सी कर जाते। हर आपे खेले आपे देखे, हर आपे रचन रचाया। जन नानक गुरुमुख जो नर खेले, सो जिन बाजी कर आया।

तेरा है भाणा, कहो नानक टह पया द्वारे, रख ले वो मुगद अजाना, बसंत हिंडोल मैला पन्नवा, मूल न बूझे आप न सूझे, परम व्यापी अहं मनी, पिता पार ब्रह्म प्रबधनी।

क्या जानो या पीतर जो राम बसत है साचो तहे पछानो रहाओ। यो जग है संपत सुपने की देख कहाँ ऐडानो। संग तिहार है कछु न चाले ताहे कहाँ लपटानो। उस्तत निंदा दो पर हर हर कीरत उर्यानो। जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो। बसंत महला।

नानक ठाडे चाहे प्रभु द्वार, तेरे नाम संतोखे कृपा धार। बसंत महला पहला मन फूलो परमस आए जाए, हत लुभद लुभानो विकम माए, नह अस्थिर दिसे एक।

तू अपुल ना पूलो कदे ना है, गुर शब्द सुनाए मत आगाहे, तू मोटो ठाकुर शब्द माहे, मन नानक मानिया सच सलाहे, बसंत महला पहला दर्शन की प्यास जिस नर होए, एक तरह से पर हर दोए, दूर दर्द मत अमृत खाए।

किसै न भावो, नानक हूं मैं शब्द जलाया, सतगुरु साचा दर्श दिखाया, बसंत महला पहला, चंचल चीत न पावे पारा, आवत जात न लागे बारा, दुख कणो मरिए करतारा, बिन प्रीतम को करे न सारा, सब उत्तम किस आखो ही ना, हर पगती सच नाम पतीना, रहाओ औखद कर था।

रोग व्यापे कट कट रव रहा प्रभ जापे सुख दुख ही ते गुर शब्द अतीता नानक राम रवै हित चीता बसंत महला पहला हित तुकिया मत पसम अंधूले।

आज बेअंत अपारा सचपति जय करने हारा नानक पूले गुर समझावे एक दिखावे साच टिकावे बसंत महला पहला आपे

तू अकल निरंजन परमहीर, तू आपे करता करण जोग, ने केवल राजन सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम स्वाद, बिन हर गुर प्रीतम जन्म बाद, बसंत हिंडोल में।

कर कर सिफत तुम्हारी, तीरथ सिमरत पुन दान किचला मिले दिहाड़ी, नानक नाम मिले वड़ियाई मेका कड़ी समाली, बसंत हिडोल कर दूजा महला चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद। पाया नगर एक बालक वसिया खिन पल थिर ना रहाई, अनेक उपाव जतन कर थाके बारंबार परमाई, मेरे ठाकुर बालक इकत कर।

आसा आपे जल अपरंपर करता आपे मेल मिलावे नानक गुरमुख सहज मिलाए जो जल जले समावे। बसंत महला पंजवा कर पहला

आओ जनका उदरी हर कह तोत गज इंद्र त्यायो हर कियो मोक विप्र सुदा में दाल दुपंज रे मन तू भी पज गोविंद बदक उदार्यो खम प्रहार उपजा उदरी अंगुष्ट धार बिदर उधार्यो दासत भाए रे मन तू भी हर ध्याए प्रहलाद रखी हर

भगत बिहुना खंड खंड बिन बूजे जम देत दंड गोविंद पजो मेरे सदा मीत साथ शब्द कर सदा प्रीत रहा।

मन उदरण का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे, ईट मीत को सखाना है।

अपार कर कृपा लड़ने हो लाए, नानक दास प्रभु की शरण आए। बसंत की वार महला पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। हर का नाम से आए कै हो वरिया भाई, कर्म लिखन तय पाई है ए रुत सुहाई। वन त्रिन त्रिभुवन मौलिया अमृत फल पाई, मिल साधु सुख उपजे लखी सब छाई। नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न पाई, पंजे बद्दे मां बली कर सच्चा ढोआ। अपने चरण जपायन विच दया खड़ोआ, रोग सोग सब मिट गए नित नवा निरोआ। दिन रे नाम से आयदा फिर पाए न मोआ, जिस ते उपजिया नाम का सोई फिर होआ। कि

अगम अगोचर साहेबो दूसर लवेन लावे सच पूरे गुर उपदेशिया नानक सुनावे बसंत माणी भगतां की कबीर जी कर पहला इको ओंकार सतगुर प्रसाद मौली तरती मौलिया आकाश कट कट मौलिया आत्म प्रगास राजा राम मौलिया

कह देव सब मद माते को न जाग, संग ही चोर कर मुसन लाग रहा, जागे सुख देओ अर अकूर। हनुमंत जागे तर लंकूर, शंकर जागे चरण सेव, कल जागे नामा जय देव, जागत सोवत बहु प्रकार, गुरमुख जागे सोई सार, इस देही के अधिक काम, कह कबीर पज राम नाम।

बैठ पाया, गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा, कह कबीर तेई नर सूचे, साची परी बिचारा। रामानंद जी।

गुर का शब्द काटे कोट करम बसंत बाणी नाम देव जी के इको अंकार सतगुर प्रसाद साहिब संकट वे सेवक पवे चिरंकाल न जीवे दो कुल लजे तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे चरण कमल मेरे हीरे बसे रहाओ जैसे अपने तने प्राणी मरण मांडे तैसे संत जना राम नाम ना छाडे गंगा गया गोदावरी

ऐसे पंकज त्रुट तुहाकती सर सोवन चाली लाडली रहाओ तो भी तोवे बिरह बिराता हर चरण मेरा मन राता पंत नाम दियो रम रहा अपने भगत पर कर दया बसंत बाणी रविदास जी की इको ओंकार सतगुरु प्रसाद तुझे सुजनता कछु नाहे पहरावा देखे उब जाहे गर्भवती का नाही ठाओ तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ तू काए गर्भे बावली जैसे पादो खूब राज तू किस्ते

रविदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जोन काम बसंत कबीर जियो इको ओंकार सतगुर प्रसाद सुर है की जैसी तेरी चाल तेरी पूंछट ऊपर चमक बाल इस घर में है सो

हर के संत जना की हम धूर, मिल सत्संगत परम पद पाया, आत्म राम रहा भरपूर रहाओ। सतगुर संत मिले सांत पाये, दिल विच दुख काटे सब दूर। आत्म जोत पई परफूलत, पुरुष निरंजन देखिया।

हारी कृष्णा जलत ना कबहू बूजे जुए बाजी हारी उठत बैठत हर गुण गावे गुर किंचित कृपाल हारी नानक जिन को नजर भई है तिनकी तै सवारी सारंग महला चौथा हर हर अमृत नाम देहो प्यारे जिन ऊपर गुरमुख मन मानिया तिनके काश सवारे रहाओ जो जन दीन भय गुर आ गए तिनके दुख निवारे अंग दिन भगत करे गुर आ गए गुर के शब्द सवारे हृदय नाम अमृत रस रसना

आप वसै मन आए, गुरु कृपाल पै तम पाया, हर चरणी चित लाए, मत परदास पई हर ध्याया, ज्ञान तत् लिव लाए, अंतर ज्योत प्रगति मन मानिया, हर सहज समाध

पंच जना गुरु वसगत आने तो उन मन नाम लगानी जन नानक हर कृपा धारी हर रामे नाम समानी सारंग महला चौथा जप मन राम।

तिल तिल पल पल औध फुल घाटे, बूझ न सके गवार सो किस करे जे साथ न चाले, त्यो साकत का आचार संत जना के।

जप मन जगन्नाथ जगदीशरो जग जीवनो मन मोहन स्यो प्रीत लागी। मैं हर हर हर टेक सब दिन से सब रात रहाओ। हर की उपमा अनेक

ہر کے نکت نکت ہر نکت ہی بستے تے ہر کے جن سادو ہر پگات تے ہر کے جن

तेह वाजे पंच शब्द वद पाग मथोरा, तिन जन के सब पाप गए, सब दोख गए, सब रोग गए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए, तिन जन के हर मार कदे पंच चोरा, हर राम बोलो हर साधु, हर के जन साधु जगदीश जपो, मन बचन कर्म हर

जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निधान, सब सृष्टता प्रभो मेरे मन हर बोल हर पुरुष अविनाशी रहाओ। हर का नाम अमृत हर हर हरे सो पी है जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मिले जिस सतगुरु सो जन हर हर अमृत।

करत बुराई मानस के छुपाई, साक्षी पूत पमान रहाओ। वैष्णो नाम करत खट कर्मा, अंतर लोभ जुठान, संत सभा की निंदा करते, डूबे सब अज्ञान। करें सोम पाक हिरें पर

निष्बासुर नक्षत्र विनाशी रवसस्यर बेनादा गिर बसदा जल पवन जाएगो एक साध बचन अटलादा अंध विनाशी जेर विनाशी उत्पुज सेत बिनादा।

सगल विनाशी इक साध बचन आगादा आपके आप ही आपे सब आपन खेल दिखादा पायो न जाई कहीं पाकरे।

पद जै गुण गाए आनंद मंगल रूप तहां सदा सुख संपद। जहां श्रवण हर कथा ना सुनिए तह महा प्यान उद्यानद। जहां कीर्तन साध संगत रा

अब मोहे राम परोसो पाए, जो जो शरण पर्यो करुणानिध, ते ते पाए तराए रहाओ, सुख सोयो अर सहज समायो, सहसा गुरहें गवाए, जो चाहत सोई हर कियो, मन बाँचत फल पाए, हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो, श्रवणी कथा सुनाए, चरणी चलो मार्ग ठाकुर के, रसना हर गुण गाए, देखो दृष्ट सर्व मंगल रूप, उल्टी संत कराए, पायो लाल अमोल नाम हर छोर।

आनंद विनोद पेट प्रव दर्शन मन मंगल गुण गावत रहाओ विषम पई पेट विषमादी पूर रहे कृपावत पियो अमृत नाम अमोलक जो चास गूंगा मुस्कावत जैसे पवन बंद कर राखियो बूझ न आवत जावत जा को हृदय प्रगाश।

अवर सब फूले प्रमत न जानिया, एक सुदाखर जा कै हृदय वस्या, इन वेदें तत पछानिया रहाओ, परविरत मार्ग जेका किस हो।

कहो नानक किस पयो प्राप्त, जा कै लेख मथामा सारंग महला पंजवा। अंदिन राम के गुण कहिए, सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध, मन बांचत फल लइए रहाओ। आवो संत प्राण सुख दाते, सिमरन प्रभ अविनाशी, अनाथे नाथ दीन दुख पंजन, पूर रहो खटवासी। गावत सुनत सुनावत सरदा, हर रस पी वड पागे, कल कलेश मिटे सब तंते, राम नाम लिव जागे।

और ब्रह्म त्याय उपदेश हमारी गत करन रहाओ। दुख रोग तय सगल विनाशे जो आवे हर संत शरण आप जपे अवर।

गुर प्रसाद नानक संतोखे, नाम प्रभु जप जप उदरन सारंग महला पंजवा, गायो री मैं गुण निद मंगल गायो, फले संजोग फले दिन अवसर जो गोपाल री जायो रहाओ, संते चरण मोर लो माथा हमरे मस्तक संत।

कैसे कहूँ मोहे जी वेदनाई, दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर, मन ना रहे बहु विद उमकाई रहाओ। चितवन चितवो।

मानस जन्म दुलवाई, गर्भ जोन छोड़ जो निक्सो तौ लागो अनठाही, करें बुराई ठगाई दिन रहन नेफल कर्म कमाही, कान नाही तो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही।

सो मिलिया जो प्रभु मिलाया, जिस मस्तक लेख लिखाई, कौ नानक तिन जन बलिहारी, जो अल्प रहे मन माही। सारंग महला पंजवा, क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिछरत होत मृतका, गृह में रहन न पाई। रहाओ जी ही प्राण को दाता, जाके संग सुहाई, करो कृपा।

श्री रविदास ठाकुर बन आई, जियो पिंड तन तन साधन का, त्यों मन संत रे नाई, संत प्रताप परम सब नाते, नानक मिले गुसाई, सारंग महला पंजवां।

मन कहां लुभाइए आन कहो, ईंत ऊत प्रभु सदा सहाय, जी संग तेरे काम को रहाओ, अमृत नाम प्रे प्रीत मनोहर, यह अगावन पान को, अकाल मूर्त है।

आए मात पिता पाई नानक को सुखदाता हर प्राण साए। सारंग महला पंजवा हर जन सगल उधारे संके पहे पुनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुख हरे। रहाओ मार्ग चले तिनी सुख पाया जिनसो गोष्ठ से तरे बूढ़त कोर अंधकूप में ते साधु संग पार परे। जिनके पाग बड़े हैं पाई तिन साधु संग मुख जुरे तिनकी तूर बांचे नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे। सारंग महला पंजवा हर जन राम राम राम से आए एक पलक सुख साथ समागम कोट बैकुंठ पाए।

मोहन काय आवो करो जो दरिया, मान करो अभिमान बोलो फूल चूक तेरी प्रक्रिया रहाओ, निकट सुनो अर्पे को नाही परम परम दुख परिया।

तो प्रम तो हार जो पड़े हो तो गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया हे सुख बिहानी राते सारंग महला पंजवा अब मोहे लब दियो है हर चेका गुर दयाल पै सुखदाई अंधुले मानक देखा।

जो अल कमला लो भांगे गुण निधान मनमोहन लाल ने सुखदाई सर्वांगे गुरु नानक प्रभु पाहे पठायो मिलो सखा गल लागे सार महला पंजवा अब मोरो ठाकुर शिव मन माना साध कृपाल दयाल।

है इस निमित ना सीमित जाना। तुम ही नायक तुम्हें छत्रपत तुम पूर रहे भगवाना। पावो दान संत सेवा हर नानक सद कुर्माना। सारंग महला पंजवा मेरे मन सीत आये प्रिय रंगा। बिसरो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा। रहाओ हर सेवो हर हृदय बसावो हर पाया सत्संगा। ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा। प्रयो अपना गुर बसर दीना पोगो पोग निसंगा। निरपो पै नानक पौ मिटिया हर पायो पाठंगा। सारंग महला पंजवा हर जियो के दर्शन को कुर्बानी। बचन नाद मेरे श्रवनो पूरे देहा प्रिय अंक समानी। रहाओ सूत्र ते गुर की सुहागन हर पायो सुगुर।

आया हर भगत पंडार खजीना साल महला पंजवा मोहन सब जी तेरे तू तारे छुटे संगार निमक कृपा ते कोट ब्रह्मंड उदारे रहाओ करे अरदास बहुत बेनंती निमक निमक समारे हो कृपाल दीन दुख पंजन हाथ दे निस्तारे क्या ए पूपत बपरे सही है कहो ए किसनो मारे राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हारे सारंग महला पंजवा अब मोहे तन पायो हर नामा पय अचिंत कृष्ण सब बुझी है यो लिखियो लेख मथामा रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी फिर आयो दुहे गिरामा गुर कृपाल सौदा ए जोरियो हप करियो लाल अगामा आन बपार बन जो करिये ते दुख सहामा गोविंद भजन के निरपय व्यापारी हर रास नानक राम नामा सार महला पंजवा मेरे मन निष्ठ लगे प्रे बोला गुर बाँ पकड़ प्रभ सेवा लाए सद दयाल हर टोला रहाओ।

एक निमक उपाय समावै, देख चरित मन मोहन रहाओ, जिस सुने मन होए रहस, अत हृदय मान दुख जोहं, सुख पायो दुख दूर परायो, बन आई प्रभ तोहं, किलविख गए मन निर्मल होई है, गुर का दे माया द्रोहं, कहो नानक मैं सो प्रभ पाया, करण कारण समर्थोहं। सारंग महला पंजवा, नैनो देखो चलत तमाशा, सबहु दूर सबहु ते नेर, अगम अगम कटवासा, रहाओ अपूल ना पूले, लिखो ना चलावे, मता ना करे पचासा, किन में साज संवार बिना है, भगत वचल गुण तासा, अंध कूप में दीपक बलियो, गुर हृदय कियो परगासा, कहो नानक दर्श तेख सुख पा।

आयो अंत बार नाम सखा, जह मात पिता सुत पाई न पहुँचे, कहाँ कहाँ तू रखा रहा हो। अंधकूप गृह में तिन सिमरियो, जिस

गुरमिल ऐसे प्रभु ते आया, कयो कृपाल दयाल दुख पंजन, लगे न ताती बाया रहाओ, जेते सास सास हम लेते, तेते ही गुण गाया, निमख न बिसरे करी न बिसरे, सद संगे जत जाया, हौ बल बल बल बल चरण कमल को, बल बल गुर दर्शाया, कहो नानक काहू परवाह, जो सुख सागर में पाया, सारंग महला पंजवा, मेरे मन शब्द लगो गुर मीठा, खुलियो कर्म पयो

और द्वितीय आकाश बिराते नैन तृप्ता से देख दर्शावा गुरकर तहारे में रह माते। सो नानक मैं

लाड लड़ावे, सदा सदा अनदाई, प्रतपाले बारिश की न्याई, जैसे मात पिताई, तिस बिन निमख नहीं रह सकिए, बिसरना कब हूँ जाई। कहो नानक मिल संत संगत ते, मगन पए लिवलाई, सारंग महला पंजवा, अपना मीत स्वामी गाये, आसना अवर काहू की जय, सुखदाता प्रभ ध्याय रहाओ, सुख मंगल कल्याण जिसे घर, तिस ही शरणी पाये, तिसे त्याग मानुख जे सेवो, तो लाज लोन हो जाये, एक ओट पकरी ठाकुर की, गुर मिल मत बुद्ध पाये, गुण निधान नानक प्रभ मिलिया, सगल चुकी मोहताये, सारंग महला पंजवा, ओट सतानी प्रभ जियो मेरे, दृष्ट ना लिया वो अवर

और खुद मुखदीनो जाए पया गुर पैरे कमन उपमा कहो एक मुख निर्गुण के दाते रह काट सिलक जो अपना कीनो नानक सुख कनेर है सारन महला पंजवा प्रभ सिमरत दुख विनाशी पयो कृपाल जी सुखदाता।

जीवन अविनाशी कहो नानक मन आनंद भया है काटी जम की फांसी सारंग महला पंजवा मेरो मन जत कत सुझ

जीवन पाया बिनती नानक ही सार है। सारंग महला पंजवा मन के पै पौ दूर पर आयो लाल दयाल गुलाल लाडले सहज सहज गुण गायो रहाओ। गुर बचनात समात कृपा से बहुर न कथु उधायो रहत उपाद समाद सुख आसन भगत वचल गृह पायो। नाद विनोद कोड आनंदा सहजे सहज समायो करना आप करावन आपे

आद मध अंत प्रव सोई, कहो नानक सास विचारो सारंग महला पंजवा, बिन प्रभ रह न जाय करी, सर्व सुख ताहू कै पूरन जा।

पैमान अपने पैताना अपने ही पै अर्था किन्ही राज जोबन तन मिलखा किन्ही बाप महतारी सर्व थोक नानक गुर पा।

मिथ्या राज जोबन अर उमरे मीर मलक अर खान मिथ्या कापर सुगंध चतुराई मिथ्या पोजन पान दीन बंदरो दास दासरो संते की सारान मांगन मांगो हुए अचिंता मिल नानक के हर प्राण सारंग महला पंजवा अपनी इतनी कछु न सारी अनेक काज अनेक तावरता उर्जियो आन जंजारी रहाओ ज्योस चार के दिशे संगी उहा नाही जह भारी तिन्स्यों राच मात हित लायो।

आज काल खुले तेरी गांठली सारंग महला पंजवा गुरजियो संग तुम्हारे जानियो कोट जोत ओआ की बात न पूछिए ता दरगे भी मान्यो रहाओ कवन मूल प्राणी का कहिए कवन रूप दृष्टानियो जो

आपे सगले दूत बिदारे ठाकुर अंतर जाम आपे पत राखी सेवक की आपकी ओ बंदान आद जुगाद सेवक की।

संताप मित्र सत्र पेख समत विचार्यो सगल संबाखन जाप तपत बुझी शीतल आघाने सुन अनहद विषम पै विषमाद अनद भया नानक मन साचा पूरन पूरे नाद सारंग महला पंजवा मेरे गुर मोरो सहसा उतारिया किस गुर कह जाइए बलिहारी सदा सदा हो वारिया रहाओ गुर का नाम जपियो दिन राती गुर के चरण मन धारिया।

आन उपाव त्याग जन सगले चरण कमल रिद धारे प्राण आधार मीत साजन प्रभ एक है एकंकार सबते ऊंचे ठाकुर।

मन बाशत फल पाओ सहु नानक लाभ लहा ले चालो सुख से ती कर जाओ सारंग महला पंजवा ठाकुर तुम शरण आई आया।

अनद अनद गुण गाया, बाँ पकड़ कद लीने अपने, गृह अंधकूप ते माया, कहो नानक गुर बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। सारंग महला पंजवा, हर के नाम की गत ठांडी, वेद पुराण सिमरत साधु जन, खोजत खोजत काढ़ी रहाओ। शिव ग्रंच अर इंद्र लोक, ता मैं जल सो फिरिया, सिमर सिमर स्वामी पै शीतल, दुख दर्द प्रम हिरिया, जो जो तरयो पुरातन नवतन।

देश सगल अप्याओ सारंग मेला पंजवा होती नहीं कवन कछ करनी यह ओट पाई मिल संते गोपाल एक की सरणी रहाओ पंच दोख छिदर या तन में दिखे ब्याद की।

प्रभ जी मोहे कवन अनाथ बिचारा, कवन मूल से मानुष करया के ऊपर ताप तुहारा रहा। जी प्राण सर्व के दाते गुण कहे।

जन्म मरण संकट ते छूटे जगदीश भजन सुख ध्यान तेरी शरण पूरन सुख सागर कर कृपा देवो दान सिमर सिमर नानक प्रभु जीवे बिनस जाए अभिमान सारंग महला पंजवा तूरत सोई जे तुर को लागे सोई तुरंतर सोई बसंदर हर

परवाना। सारंग महला पंजवा। हर हर संत जना की जीवन दिखे रस भोग अमृत सुख सागर, राम नाम रस पीवन रहाओ। संचन राम नाम तन रतना, मन तन पीतर सीवन, हर रंग रांग पै

मन तन राम को व्यवहार प्रेम भगत गुण गावत गीजे होहत न संसार रहाओ श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी एहो साधको आचार चरण कमल अस्थित रिद अंतर पूजा प्राण को आधार प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती कृपा अपनी धार नाम निधान उचरो नित रसना नानक सद बलिहार सारंग महला पंजमा हर के नाम हीन मत थोरी सिमरत नाहे श्री कर ठाकुर मिलत अंध दुख कोरी।

सरना है। जप तप संजम कर्म सुख साधन तुलना कछु ऐला है। चरण कमल नानक मन भेद्यो चरण संग समाए। सारंग महला पंजवा मेरा प्रभ संगे अंतर जामी। आगे कुशल पाछे खेम सूखा सिम

जीवत राम के गुण गाए, करो कृपा गोपाल बीठले, बिसरना कभी जाए रहाओ। मन तन तन सब तुमरा स्वामी, आनना दूजी जाए, जो तू राखे तिव ही रहना, तुमरा पेने खाए, साध संगत के बल बल।

पीवत अम्यो मनोहर हर रस जप नानक हर बिस्माद। सारंग महला पंजवा कीने पाप के बहु कोट दिन सरैनी।

पूरन होत न कथो बातें अंत प्रतिहार रहाओ। शांत सुख ना सहज उपजे यह इस व्यवहार, आप पर का कछ न जाने काम करो दें जार। संसार सागर दुख व्यापियो दास ले वो तार, चरण कमल शरण।

प्रभु त्याए रतन जन्म अपार जीतियो बहुर जोन ना पाए पय कृपाल दयाल गोविंद पया साधु संग हर चरण रास।

नो दुतिया पाओ सब लूहराओ त्याग गोपाल और जो करना ते बिखिया के खूह दर्श प्यास मेरा मन मोयो काडी नरक ते तू संत प्रसाद मिलियो सुखदाता बिनसी हो मैं हूँ राम रंग राते दास नानक मौलियो मन तन जूह सारंग महला पंजवा।

हर नानक रतन लयो सारंग महला पंजवा मायरी अरयो प्रेम की खोर दर्शन रुचित प्यास मन सुंदर।

जोर नानक शरण कृपा निध सागर बिनस्यो आन निहोर सारंग महला पंजवा नीकी राम की तुन सोए चरण कमल अनूप स्वामी जपत साधु होए रहाओ चितवता गोपाल दर्शन कलमला कट धोए जन्म मरण विकार अंकुर।

गोविंद गुप्त होए रहो न्यारो, मत अंग मत अहंकार कर कृपा प्रभ संत राखे, चरण कमल आधार कर जोर नानक सर।

लोभ त्यागे गुर गोपाल पय कृपाल लबद अपनी पाई। बिन से परम मोह अंध टूटे माया के बंद पूरन सर्वत्र ठाकुर ने को बेराई। स्वामी सो प्रसन्न भय।

सेवक पै दूर करन कलमल दोख जाले, कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते, राम राम सार भूत नानक तत बिचारे, सारंग महला पंजवा नाम भगत मांग संत त्याग सगल कामी, रहाओ प्रीत लाए हर त्याए गुण।

एक शरण गोविंद चरण, संसार सगल ताप हरण, नाम रूप साध संग, नानक पार गिरामी, सारंग महला पंजवा, गुण लाल गावो गुर देखे, पंचाते एक छूटा, जो साध संग पग रहो रहाओ, दृष्टो कछ संग ना जाए, मान त्याग मोहा, एक हर प्रीत लाए, मिल साध संग सोहा, पायो है गुण निधान, सगल आस पूरी, नानक मन आनंद भये, गुर बिखम गार तोरी, सारंग महला पंजवा।

तास्यों न्यो लगाई। जो दिसे सो सगल विनाशे, जो बादर की चाही। तज अभिमान शरण संतन गो, मुक्त हो है छिन माही। जन नानक भगवंत भजन बिन, सुख सुपने भी नाही। सारंग महला नावा, कहां नर अपनो जन्म गवा।

सौ जन मुक्ता राम भजन चित लावे सारंग महला नावा मन कर कबू ना हर गुण गायो विख्या सख्त रहो निस्बासुर कीनो अपनो भायो रहाओ।

सहज समाध सदा लिव हर्ष्यों, जीवा हर गुण गाई, गुर के शब्द रता बैरागी, निज कर ताड़ी लाई, शुद्ध रस नाम।

कोट कल्प के दुख विनाशन साच दृढ़ाए निवेरा रहाओ। क्रोध निवार जले हो ममता प्रेम सदा नौ रंगी अनपो विसर गए प्रभ जाच्या हर निर्माइल संगी। चंचल मत त्याग पौ पंजन पाया एक शब्द लिव लागी हर रस चाख त्रिखा निवारी हर मेल ले बड़ पागी। अमृत सिंच भय सुबर सर गुरमत साच निहाला मन रत नाम रते में केवल आद जुगा दयाला। मोहन मोइलिया मन मोरा बड़े पाग लिव लागी साच विचार किल विक दुख काटे मन निर्मल अनरागी।

हर रस रते अधिकाई, एक तस्बिन मैं अवर न जाना, सतगुर बूझ बुझाई, अगम अगोचर अनाथ अजोनी, गुरमत एको जानिया, सुबर भरे नाही चित डोले।

जन्म के किल विक पौ पंजन गुरुमुख एको डीठा रहाओ कोट कोटंतर के पाप विनाशन हर साचा मन भाया हर बिन अवर्ण।

आवागौन निवार सच राते, साच शब्द मन भाया, सतगुर सेव सदा सुख पाई है, जिन विच्चों आप गवाया, साचे शब्द सहज तुन उपजे, मन साचे लिव लाई, अगम अगोचर नाम निरंजन, गुरमुख मन वसाई, एक समय सब जग तो वरते, विरला एक पछाणे, शब्द मरे ता सब किछ सूजे, अंधन एको जाने, जिसनो नजर करे सोई जन बूझे, होर कहना कठिन न जाई, नानक नाम रते सदा बैरागी, एक शब्द लिवलाई, सारंग महला तीजा, मन मेरे हर की अकथ कहानी, हर नजर करे सोई जन पाए, गुरमुख विर ले जानी, रहाओ, हर गहर गंभीर गुणी गहीर गुर के शब्द पछानिया बहुविध कर्म करें पाई दूजे बिन शब्द बहुरानिया हर नाम नामे सोई जन निर्मल फिर मैला मू

अनक शेख नव तन नाम लेहे पार ब्रह्म का अंत न तेहे अनक पुरिया अनक तय खंड अनक रूप रंग ब्रह्मंड अनक बना अनक फल मूल आपे सूखम आपे स्थूल अनक जुगाद दिन अर रात अनक परलो

दाता कट कट पूरन है अलपाता कट कट पूरन कर विस्थीरन जल तरंग ज्यों रचन किया हब रस माने भोग कटाने।

अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई थान थनंतर देसा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह न सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोयो।

किए कर कर करता करे करे मनमुख मरिए गुरमुख तरिए नानक नदरी नदर करे पौड़ी मनमुख दूजा परम है दूजे लोभाया कूड कपट कमाम दे कूड़ो अलाया पुत्र कलत्र मोहित है सब दुख समाया जम दर बदे मारिए परमे परमाया मनमुख जन्म गवाया।

नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे। नानक अमृत मने माहे पाये गुर प्रसाद तिन्नी पीता रंग स्यों।

एक आख आख है शब्द पाख है अर्द उर्द दिन रात जे क्यों होए ता क्यों दिसे जाते रूत ना जात सब कारण करता करे कट औकट कट थाप आखन औखा नानका आख ना जापे आख पौड़ी नाई सुनिए मन रहसिए नामी शांति आई नाई सुनिए मन तृप्तिए सब दुख गवाई नाई सुनिए नाम उपजे नामी वड्याई नामे ही सब जात पत नामे गत पाई गुरुमुख नाम ति आई है नानक लिव लाई श्लोक महला पहला झूठ न रागी झूठ न वेदी झूठ न चंद सूरज की पेदी झूठ न अन्नी झूठ न नाई झूठ न मिहो वरे है सब थाई झूठ न तरती झूठ न पानी झूठ न पौने माई समाणी नानक निगुरिया।

पौड़ी नाय मने दुर्मत गई मत प्रवती आया नाव मने हो मैं गई सब रोग गवाया नाय मने नाम उपजे सहजे सुख पाया नाय मने सांत उपजे हर मन वसाया नानक नाम रतन है गुरमुख हर त्याया श्लोक महला पहला और शरीक होवे कोई तेरा तिस अगे तुद आखा तुद अगे तुद सलाही मैं अंधे नाउ सुजाता जेता आखन साही शब्दी पाख्या पाए सुवाई नानक बहुता एहो आखन सब तेरी वड्याई महला।

कूड़ बोल बोल पौकना चूका धर्म विचार जिन जीवन दे आपक नहीं मोया मंदी सोए।

जो उस इच्छे सो तल पाए। ता नानक कही है मूरत पौड़ी, सतगुर अमृत बिरख है अमृत रस फलिया, जिस प्राप्त सोल है गुर शब्दी मिलिया, सतगुर के पाणे जो चले हर से तीर लिया, जमकाल जो न सकई कर चानन बलिया, नानक बख्श मिलायन फिर गर्व न गलिया। श्लोक महला पहला, सच वर्त संतोष।

दर्द चुराया, पुत्र कलत्र न विश्व है, बहु क्रीत लगाया, देख दिया ही माया तो गई, पछताया पछताया, जम दर बदे मा

रूप इकना नाद ना वेद ना गी रस रस तक ना जानंत इकना शुद्ध ना बुद्ध ना अकल सर अखर का प्यो ना लहंत नानक से नर असल खर जे दिन गुण गर्भ कर।

बहुमैल वधाई। नानक जो देवै तुसें ना जाननी, मनमुख दुख पाई। श्लोक महला तीजा, पढ़ पढ़ पंडित मुनि थके, देशंतर पव थके पेख तारी। दूजै पाए नाउ कदे ना।

जो तुर मिले ना बिछड़े हैं कब हूँ ये आप मेले कर तारे अंतर सब दरव्या गुर पाया सगले दुख निवारे हर सुख दाता सदा।

हो गई। नाम वसे मन आए बिन नामे जे होर खाना चित रोग लगे तन खाए नानक रस सब सलाहना आपके ले मिलाए महला तीजा जिया अंदर जियो सब।

शिमा हर गुरमुख नाम दियाए दुख पुख काना सब चुकाए सी मिहु उठा छे बरलाए सब तरत पाई हरियावली अन जमिया बोहल लाए हर अचिंत बुलावे कृपा कर हर आपे पावे थाए हर किसे त्यावो संत जनो जो अंते ले चलाए हर कीत पगत आनंद है सदा सुख वसे मन आए जिना गुरुमुख नाम।

आप छोड़ सरनाए पवे मन ले रजाए। गुरुमुख जम डंड ना लगे हमे विचों जाए, नानक सेवक सोई आखिए जे सत रहे लिवलाए। महला तीजा दात जोत सा

जिस गुरबचनी मन मानिया हर वर नार तई सोहा गण मन तन प्रेम सुखानिया अवगन त्याग तई बैरागन अस्थिर वर सोहा गहरी सोग विजोग तिस कदे ना व्यापे हर प्रभु अपनी कृपा करी आवन जान ही मन में चले पूरे गुर की ओट गही नानक राम नाम।

मनुख माया माया अजगर पार लदे अत पारी मर जन्मे जन्म गवाया मन पावे सब छुआया प्रम प्रम जोन देख बहुत।

का नाम न भाया, रतन पदार्थ पर हर क्या गया, जब को तप ही आया, दिष्टा कीत पे उत ही ते, उत ही मन समाया, अधिक स्वाद रोग अधिकाई।

सुरता पंडित का कानाओ गुण गोविंद ना जानिए माए अंधी था कुछ कह न जाए क्या कर आँख बखानिए माए रहाओ ऊपर बल समान पे आए।

मानसता तल तब मैं सासे सास दे काया तल पाए ताके पाछे कोई न खाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमें नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूट से सा चैन आए मलार महला पहला दुख मोहरा मारन।

आप तृष्णा उगने की दंज नगर करे ता बंदा तीर जो वेखा ले त्यों वेखा वीर ना यो तंग जाएगा ना जाएंगे खंग पौने पानी अग्नि का सन बंद नानक कर्म होवे जति।

कैसा यो संसारा जिसते हुआ तिसे समाना, चूक गया पासारा मलार महला तीजा। जिन्नी हुकम पछाणिया से मेले हो मैं शब्द जलाए, सच्ची भगत करे दिन राती सच रहे लिवलाए। सदा सच हर वेख दे गुर कै शब्द सुभाए, मन रे हुकम मन सुख होए प्रभ पाना अपना भावदा। जिस बच्चे तिस बिघन ना कोए रहाओ, त्रै गुण सबा तात है ना हर भगत ना भाए। गत मुक्त कदे ना हो वही हो मैं कर्म कमाए, साहिब पावे सोथी है कहे किरत फिराए। सतगुरु तोतिए मन मर रहे हर नाम वसे मन।

मेरा हर पद अगम अगोचर है, कीमत कह न जाए, गुरु प्रसादी बुझिए, सब देकार कमाए, नानक नाम सला

एक एक बसे मन स्वामी दूजा और न कोई, एक नाम अमृत है मीठा जग निर्मल सब सोई, नानक नाम प्रभु ते पाया जिनको तुर लिखिया होई, मलार महला तीजा गण गंधर्व नामी सब उदरे गुर का शब्द विचार, हूं मैं मार सब मन वसाया हर राख्या उधार, जिसे बुझाए सोई बूझे।

समझ सुख अंतर सदा निगह के रहाल राव। मन मुक्ता ठंड कदे न चूके दूजे पाए दुख पाए नाम विसार दिखिया मन राते बिरथा जन्म गवाए ए वेला सुर हाथ नावे अंदिन सदा पछताए मर मर जन्मे कदे न बूझे विस्ता मय समाए गुरमुख नाम रते सेव दुरे गुर का शब्द विचार जीवन मुक्त हर नाम।

खतरे आ समाए, नानक नाम बिना कोई किछ नाही, नामे देव लाए मल्हार महला तीजा, हो मैं दिख मन मोया लदया अजगर पारी, गरुड़ शब्द मुख पाया हो मैं दिखर मारी, मन रे हो मैं मोह दुख पारी, इह पाव जले जगत।

मन गिरही के एहु मन उदासी के एहु मन अवरण सरा अविनाशी के एहु मन चंचल के एहु मन बैरागी इस मन को ममता कितों लागी।

यो हुक्म कर श्रेष्ठ उपाय, गुर प्रसादी बूझो भाई, सदा रहो हर की शरणाई। सो पंडित जो तिहा गुणा की पंड उतारे, अन दिन एको नाम बखाने।

हर रस पीवे रसन रसाए कोट मदे कुसै बुझाए आपे बख्शे देव दयाए जो तुर मिलिया सो विछल ना जाई नानक है हर नाम समाई मलार महला तीजा रसना नाम सब कोई कहे सतगुरु सेवे का नाम लहे बंधन तोड़े मुक्त कर गह गुर सबदी अस्थिर कर गह मेरे मन काहे रोष करी जय लाहा कलयुग राम नाम है गुरमत अंग।

हर हर प्रभ कृपा धारी, नैनी हर हर लागी तारी, सतगुरु देख मेरा मन बिगस्यो। जन हर पेट्यो बनवारी रहाओ, जिन ऐसा नाम विसारिया मेरा हर हर, तिसके कुल लागी गारी, हर तिसके कुल प्रसूत ना करियो, तिस विधवा कर मैं तारी, हर हर आन मिलावो गुर साधु, जिस एनस हर उर्ध

गुरपुरै हों मैं पीत तोरी, जन नानक मिले बनवारी। मल्हार महला चौथा, गंगा जमुना गोदावरी। सरस्वती ते करें उद्दम तूर साधु की ताई। किल विच मैल परे परे हमरे विच, हमरी मैल साधु की तूर गवाई। तीरथ असठ मज्जन नाई, सत संगत की तूर परी। उड़ नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ। जाहर नवी तपे पागी रथयानी, केदार था प्यो महसाई। काशी कृष्ण चरावत गाऊ, मिल हर जन शोभा पाई। जितने तीरथ देवी थापे, सब जितने लोचे तूर साधु की ताई। हर का संत मिले।

साधु तूर दे हर पार लंगाई मल्हार महला चौथा किस जन को हर मीठ लगाना जिस हर हर कृपा करे किसकी भूख दुख सब उतरे जो हर गुण हर उतरे जप मन हर हर हर निस्तर गुर के बचन करण सुन ध्यावे अब सागर पार करे रहाओ किस जन के हम हाथ बिहाजे जिस हर हर कृपा करे हर जन को मिलिया सुख पाए सब दुर्मत मेल हरे हर जन को हर भूख लगा।

इतनानी हर हृदय के कपटी नरमित कपट कमाक तिनको क्या कोई देख वाले ओ आप बीज आते ही खाते हर का चिन्ह सोई हर जन का हर आते जन्म आप रखाते तन तन गुरु नानक समदर्शी जिन निंदा उस्तत परित्रांत मलार महला चौथा अगम अगोचर नाम हर उत्तम हर कृपा ते जप लया सत संगत साध पाई वड पागी संग साधु पार पया मेरे मन अन दिन अंध भया।

तिन संगत हर मेलो करमया, तिनका दर्श देख सुख पाया, दुखों में रोग गया। जो अनदिन हृदय नाम ध्यावे, सब जन तिना का सफल भया। वे आप करे सुष्ट सरकारी, सब कुल भी पार पया। तुद आपे आप उपाया सब जग।

गुर प्रसादी अमृत नहीं पिया, तृष्णा भूख न जाय, मन मुख मूल जलत अहंकारी, हों मैं विच दुख पाई, आवत जात बिरथा जन्म गवाया, दुख लागे पछताई, जिस ते उपजे तिसे न चेतें, त्रिग जीवन त्रिग खाई, प्राणी गुरमुख नाम दे आई, हर हर कृपा करे गुर मेले, हर हर नाम समाई रहाओ, मन मुख जन्म भया है बिरथा, आवत जात ल जाई, काम क्रोध डूबे अभिमानी, हों मैं विच जल जाई, तिन सिद्ध न बुद्ध भई मत मदन, लोभ लह दुख पाई, गुर बिहून महा दुख पाया, जम तकरे दिल लाई, हर का नाम अगोचर पाया, गुरमुख सह सुभाई, नाम निधान वस्या घट अंतर।

मिल साध संगत हर तोर रहाओ। हर तन बनजो हर तन संचो, जिस लागत है नहीं चोर। पात्रक मोर बोलत दिन राती, सुन कन हर की कोर। जो बोलत है मृग मीन पंखेरु, सो बिन हर जापत है नहीं और। नानक जन हर कीरत गाई, छूट गयो जम का सब सोर। मलार महला चौथा, राम राम बोल बोल खोजते बड़ भागी। हर का पंथ को बतावे, हौंपा कह पाई लागी रहाओ। हर हमारो मीत सफाई, हम हर स्यों प्रीत लागी। हर हम गावे हर हम बोले, और दुतिया प्रीत हम त्यागी। मन मोहन मोरो प्रीतम राम, हर परमानंद बैरागी। हर देखे जीवत है नानक, एक निमक पलो मुख लागी। राग मल्हार महला पंजवा, चौक दे कर पहला एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद, क्या तू सोचे क्या तू चितवे, क्या तू करे उपाय। ताको कहो

खीर आधार बारक जब होता बिन खीरे रह न जाई सार संभाल माता मुख नीरे तब हो तृप्त अघाई हम बारक पिता प्रभु दाता फूले बारक अनेक लख बरिया अनठौर नाही जय जाता रहाओ चंचल मत बारक बपरे की सर्प अग्न कर मेले माता पिता कंठ लाए राखे अनद सहज तब खेले जिसका पिता तू है मेरे स्वामी इस बारिक भूख कैसी नव निध नाम निधान गृह तेरे मन बाचे सो लैसी पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारिक मुख मांगे सो देना नानक बारिक दर्श प्रभ चाहे मोहि हृदय बसे नित चरना मलार महला पंजवा सगल विधि जुर आहर करया सजियो सगल अंदेशा कार्य सगल अरंभियो करका ठाकुर का भरोसा सुनिए बाजे बाज सुहावी पोर पया मैं प्रेम मुख पेखे गृह मंगल सुहलावी रहाओ मनुआ लाए सवारे थाना पूछो संता जाए खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो पगत करो निर पाए जब प्रेम आए बसे गृह आसन तब हम मंगल गाया मीत साजन मेरे पहे सुहेले प्रभु पूरा गुरु मिलाया सखी सहेली पहे अनंदा गुर कार्य हमरे पूरे कहो नानक वर मिलिया सुख दाता छोड़ न जाई दूरे मलार महला पंजवा राज ते कीट कीट ते सुरपत कर दोख जठर को परते कृपा निध छोड़ आम को पूजे आत्म का सी हरते हर बिसरते दुख दुख मरते अनेक बार प्रमे बहुजोनी एक न काहू तरते।

गगन में जरते नानक शरण चरण कमलन की तुम ना डारो प्रभ करते राग मलार महला पंजवा दुख दे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ मेरे ओए बैरागी त्यागी हूँ एक खिन तिस बिन रह न सको प्रीत हमारी लागी रहाओ उनके संग मोहे प्रवचित आवे संत प्रसाद मोहे जागी सुन उपदेश पय मन निर्मल गुण गाए रंग रांगी एहो मन दे किए संत नीता कृपाल पय बड़ पागी महा सुख पाया बर न साको रेन नानक जन पागी मलहार महला पंजवा माई मोहे प्रीतम देहो मिलाई सगल सहेली सुख पर सूती जे कर लाल बसाई रहाओ।

सुपुरख सुखदाई एक निमक में मेरा सब दुख काटिया नानक सुख रैन बिहाई मलार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिल ना लाओ बरस प्यारे मने सदारे होए आनंद सदा मन चाओ रहाओ।

तत शोभा तले अचारे मल्हार महला पंजवा प्रीतम साचा नाम ध्याए दुख दर्द बिन सह पर सागर गुर की मूरत हृदय बसाए रहाओ दुश्मन हते दुखी सब व्यापे हर शरणाई आया राख नहारे हाथ दे राख्यो नाम पदार्थ पाया कर कृपा किलवित सब काटे नाम निर्मल मन दिया गुण निधान नानक मन वस्या बहुर दुख ना थिया मल्हार महला पंजवा प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे प्रेम भगत अपनो नाम दीजे दयाल अनुग्रह तारे रहाओ सिमरो चरण तुहारे प्रीतम हृदय तुहारी आशा संत जना तह करो बिनंती मन दर्शन की प्यासा बिछड़त मरण जीवन हर मिलते जन को दर्शन दीजे नाम आधार जीवन तन नानक प्रभु मेरे कृपा की जय मल्हार महला पंजवा अब अपने प्रीतम स्यों बने आई राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाओ एक पल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नवे निद पाई उदोत पयो पूरन पावी को पेटे संत सहाय सुख उपजे दुख सगल विनाशे पार ब्रह्म लिवलाई करो संसार कथन पै सागर हर नानक चरण ध्याई मल्हार महला पंजवा कन हर बरस सगल जग छाया तय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहाओ मिटे कलेश त्रिसं सब बूजी पार ब्रह्म ध्याया साध संग जन्म मरण निवारे बहुर न कतु धाया मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिवलाया अंगीकार कियो प्रभ अपने नानक दास शरणाया मल्हार महला पंजवा बिचरत क्यों जीवे ओए जीवन चितें उलास आस मिलवे की चरण कमल रस पीवन रहाओ जिनको प्यास तुम्हारी प्रीतम तिनको अंतर नाही जिनको बिसरे मेरो राम प्यारा से मुए मर जाही मन तन रव रहा जगदीशर देखत सवा हजूरे नानक रव रहो सब अंतर सब रहा पर पूरे मल्हार महला पंजवा हर के भजन कौन कौन न तारे खग तन मीन तन मृग तन ब्राहा तन साधु संग उदारे रहाओ देव कुल दैत कुल जग किन्नर नर सागर उतरे पारे जो जो भजन करे

नाथ दीन दुख पंजन आप लिए लड़ लाई, हर की ओठ जीवे दास तेरे नानक प्रभ शरणाई। मलार महला पंजवा, मन मेरे हर के चरण रवि जय, दर्श प्यास मेरो मन मोयो, हर पंख लगाए मिली जय रहाओ, खोजत खोजत मार्ग पायो, साधु सेव करी जय, तार अनग्रो स्वामी मेरे नाम महारस की जय, त्राहे त्राहे कर सरनी आए, जल को कृपा की जय, कर गह लिहो दास अपने को, नानक अपनों की जय। मलार महला पंजवा, प्रभ को भगत बछल बिरदायो, निंदक मार चरण तल दीने, अपनो जस वरतायो रहा।

जियो मेरे स्वामी प्रमको मेट सुखायो महा आनंद करो दास हर के नानक विश्वास मन आयो राग मल्हार महला पंजवा चौप दे कर दूजा इको अंकार सतगुरु प्रसाद गुरुमुख दीसै ब्रह्म पसार गुरुमुख त्रै गुणिया विस्तार गुरुमुख नाद वेद विचार बिन गुर पूरे कोर अंधार मेरे मन गुर गुर कर सदा सुख पाये गुर उपदेश हर हृदय वस्यो सांस गिरास अपना खसम त्याय।

गुर पेटे ना हुए जोन अवतार, गुर की सेवा सो जन पाए, जासो कर्म लिखिया तुर आए। गुर मेरी जीवन गुर आधार, गुर मेरी वर्तन गुर परवार, गुर मेरा खसम सतगुर शरणाई। नानक गुर पार ब्रह्म जाकी कीम ना पाई, मनार महला पंजवा गुर के चरण हृदय वसाए। कर कृपा प्रभ आप मिलाए, अपने सेवक को ले प्रभ लाए, ताकि कीमत कहीं न जाए। कर कृपा पूरन सुख दाते, तुमरी कृपा से तू चित आवे, आठ पैर तेरे रंग राते रहाओ। गावन सुनन सब तेरा भाना।

सदा सदा जाइए कुर्बान। काल गवाया करते आप सदा सदा मन किसनो जाप। दृष्ट तार राखे सब जंत गुण गावो नित नित भगवंत। एको करता आपे आप हर के भगत जाने प्रताप। नावे की पैज रखदा आया नानक बोले किसका बोलाया। मलार महला पंजवा गुर शरणाई सगल निधान। साची दरगे पाये मान ब्रह्म को दुख दर्द सब जाए। साध संग सब हर गुण गाए। मन मेरे गुर पूरा सालाए। नाम निदान जपो दिन राती। मन चिंदे फल पाए रहाओ। सत गुर जेवड़

सो मन निर्मल जो गुर संग राची गुर पूरा पाए वडवाग काम क्रोध लोभ मनते त्याग कर कृपा गुर चरण निवास नानक की प्रभ सत अरदास राग मलार मैला पंजवा पड़ताल कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरु मनार प्रिय दियार स्यों रंग किया की नोरी सगल सिंगार तज्यो

नानक प्रयो प्रीतम किया मलार महला पंजवा मन कने प्रमय बने उमक तरस चाले प्रभ मिलबे की चाह रहाओ त्रै गुण माई मोह आई कहो बेदन काहे आन उपाव सगर किए नह दुख सा कहलाहे हज शरण साधु नानका मिल गुण गोविंद गाहे मल्हार महला पंजवा त्रै की शोभ सुहावनी नीकी हा हा हु गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाओ तुनत ललित गुणग अनक भांत बहुविध रूप दिखावनी नीकी गिर तर थल जल पवन परपुर कट कट लालन छावनी नीकी साध संग रमैया रस पायो नानक जा कै पावनी नीकी मल्हार महला पंजवा गुर प्रीत प्यारे चरण कमल रिद अंतर धारे रहाओ दर्श सफलियो दर्श पेखियो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे विषम विस्मय विषम भई अब कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारे जन नानक शरण द्वारे मल्हार महला पंजवा बरस सरस आग्या हो है आनंद सगल पाग रहाओ संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग कन कोर प्रीत मोर चित चात्रिक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोहो त्याग माया तो हो मिल संत नानक जागया मल्हार महला पंजवा गुण गोपाल गाओ नीत राम नाम तार चीत रहाओ छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआ के संग हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत पार ब्रह्म पै दयाल बिनस गए बिखे जंजाल साध जना के चरण लाग नानक गावे गोविंद नीत मल्हार महला पंजवा कन गर्जत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन रहाओ हर चरण शरण तरण सागर तुन अनहता रस बैन पथिक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभ दैन।

लाए। शास्त्रिक जल बिन प्रयो प्रयो टेरे, बिल करे बिल लाए। कम हर कोर दसो दिस बरसे, बिन जल प्यास न जाए। मीन निवास उपजै जल ही ते, सुख दुख पूर्व कमाई। खिन तिल रह ना सके पल जल बिन, मरण जीवन तिस ताई। तन वाडी फिर देश निवासी, सच्चे गुर पै शब्द पठाई।

अपना का सवारो आपे सुखदाते गोसाई गुर प्रसाद कर ही फिर पाया कौ नानक तपत बुझाई मलार महला पहला जागत जाग रहे गुर सेवा बिन हर मैं को नाही अनेक जतन कर रहे न पावे आच पाच टर पाही इस तन तन का कहो गर्भ कैसा बिन सतबार न लागे बवरे हो मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहा।

दक्षिण ताई नदी उपकंठ जैसे कर करवर सर्पन कर कर माही उल्टी नदी कहाँ कर करवर सर्पन डसे दूजा मन माही गरुड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी बिख्या गुरमत जारी मंथन हेम पे सच पाया हर की भगत निरारी जेती है तेती तुद जाते तू सर्व जिया दयाला तुमरी शरण परे पत राखो साच मिले गोपाला बादी तंद अंग नहीं सूजे बदिक कर्म कमावे सतगुर मिले ता सूजस बूजस सच मन ज्ञान समावे निर्गुण देह साच बिन काची मैं पूछो गुर अपना नानक सो प्रभु प्रभु दिखावे बिन साचे जग सुपना मलार महला पहला चात्रिक मीन जल ही ते सुख पावे सारिंग सबद सुहाई रैन बबीहा बोलियो मेरी माई रहाओ त्रैस्यो प्रीत न उल्टे कबहू जो तै पावे साई नींद गई हो मैं तन फाकी सच मत हृदय समाई।

गुरु कैसवद नाम आधार, ना जल डूंगर ना ऊंची धार, निज कर वासा ते मगना चालन हार, जित कर वसे तू है बिद जाने भी जो महल न जाते, सतगुर बाजो समझ न होवी सब जग दबिया छापे, करण तलाव करे बिलला तो बिन गुरु नाम न जापे, पल पंकज में नाम छड़ाए जे गुरु सबक सिंजापे, एक मूर्ख अंधे मुग्ध गवार, एक सतगुर के पै नाम आधार।

आए एक शब्द राचे सत समाए चौदिस हुकम वर्ते प्रभु तेरा चौदिस नाम पतालं सब में शब्द वर्ते प्रभु साचा कर्म मिले बयालं जामन मरना दिसे सिर उबो खुदया निद्रा कालं नानक नाम मिले मन भावे साची नगर रसालं मलार महला पहला मरण मुक्त गत सार न जाने कंठे बैठी गुर शब्द पछाने तू कैसे आर फाथी जाल अलख ना जाचे हृदय समाल रहाओ एक जी कै जी आखाही जलत तरती बूढ़ी जलमाही सर्ग जी की ए प्रतपानी जब पकड़ी तब ही पछतानी जब गल फांस

मन मेरे हर हर नाम शीतलाए, सतगुरु ते हर पाई है साचा, हर स्यों रह समाए रहाओ। सतगुरु ते ज्ञान उपजै ता ए संसार जाए, सतगुरु ते हर बुझिए गर्भ जोनी नह पाए।

वेद बाणी जग वर्तदा त्रै गुण करे विचार बिन नावे जम दंड सहै मर्जन में वारो वार सतगुर पेटे मुक्त होए पाए मोख द्वार मन रे सतगुर सेव समाए वड्डे भाग गुर पूरा पाया हर हर नाम ते आए रहाओ हर अपने पाने सृष्ट उपाय हर आपे दे आधार हर अपने भाने मन निर्मल किया हर स्यों लागा प्यार हर के

पत उप जय हर्ष्यो रहा समाये मल्हार महला तीजा अष्टपदी कर दूजा इको अंकार सतगुरु प्रसाद हर हर कृपा करे गुर की कारे लाए दुख पल्लर हर नाम बसाए साची गत साचे चित लाए गुर की बाणी शब्द सुनाए मन मेरे हर हर सेव निधान गुर कृपा ते हर तन पाई है।

चित कट ना मैं नाम निवास, हों मैं भगत करे सब कोए, ना मन पीजे ना सुखोए, कह कह कहन आप जनाए, बिरथी भगत सब जन्म गवाए, से भगत सतगुरु मन भाए, हम दिन नाम रहे लिवलाए।

नानक साचे साच समाए राग मल्हार छंत मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद। प्रीतम प्रेम भगत के दाते अपने जन संग राते, जन संग राते दिन सराते एक निमख मनो ना विसरै। गोपाल गुण निध सदा संगे सर्व गुण जगदीसरै। मन मोह लीना चरण संगे नाम रस जन माते। नानक प्रीतम कृपाल सदहू किने कोट मदे जाते। प्रीतम तेरी गत अगम अपारे महा पतित तुम तारे। पतित पावन भगत वचल कृपा सिंध स्वामिया। संत संगे भजन संगे रहो सदा अंतर जामिया। कोट जन्म परमंत जोनी ते नाम सिमरत तारे। नानक दर्श प्यास हर जियो आप लिहो समारे। हर चरण कमल मन लीना प्रभ जल जन तेरे मीना। जल मीन प्रभ जियो एक तू है पिन आन न जानिए। गह पूजा लेवो नाम देवो तो प्रसादी मानिए। तज साध संग

जिन मन पाओ पाओ होए, नानक पै पाए बाहरी तिन तम सुख न होए। महला तीजा ऊनव ऊनव आया वरसे नीर निपंग, नानक दुख लागा तिन कामणी जिन कंते स्यो मन पंग पौड़ी। दोवे तरफा उपाय इक वर्त्या, वेद बाणी वर्ताए अंदर वाद कत्या। परविरत निर्विरत हाठा दोवे विच तरम फिरे रे बारिया। मन मुख कच्चे कूड़ियार तिनी ने चौदर गै हारिया। गुरमति शब्द सूर है काम क्रोध जिन्नी मारिया। सच्चे अंदर महल शब्द सवारिया।

सब करण पलाह करे पौड़ी। सो हर सदा सरे भी है, जिस तर्क न लागे वार, आदाने आकार।

गुरमुख पक्षों लेखा निबड़े बक्षे सिर पंडार ओथे हाथ ना पड़े कूक ना सुनिए पुकार ओथे सतगुरु बेली होवे।

उलाए, जो जल में कमल अलिपत है, ऐसी बंत बनाए, से सुखिए सदा सोने, जिन विच्चों आप गवाए, तिन सोग विजोग कदे नहीं, जो हर के अंक समाए।

हो जन मुक्त सदा होए पौड़ी। सच्चा वे परवाहो इको तू धनी, तू सब किस आपे आप दूजे किस गणी। मानस कूड़ा गर्भ सच्ची तुदमणी, आवा गौण रचाए उपाई मेदनी। सतगुर सेवे अपना आया किस गणी, जे हो मैं विच्चों जाए ताके ही गणत गणी। मनमुख मोह गुबार ज्यो पुल्ला मंजवानी, कट्टे पाप असंख नामे इक कणी। श्लोक महला तीजा, बाबी हा खसमे का महल न जाने। महल देख अरदास पाए, अपने पाने बहुता बोले, बोलिया थाए न पाए। खसम वड्डा दातार है, जो इच्छे सो फल पाए। बाबी हा क्या बपुड़ा, जग तै की तिख जाए। महला तीजा, बाबी हा किन्नी रैन बोलिया, सहजे सच सुभाए। यो जल मेरा जियो है, जल बिन रह न जाए। गुर शब्दी जल पाई है, विच्चों आप गवाए। नानक जिस बिन चसा न जीवई, सो सतगुरु दिया मिलाए पौड़ी। खंड पताल असंग

कोई इक राजे खान मलूक कहे कहावे कोई इक सवा सदावे संत धन दूजे पट कोई इक दाते इक मंगते सगना सिर सोई बिणना में बाजारिया पीहावल होई पूर्ण खुट्टे नानका सच करे सो होई। श्लोक महला तीजा बाबी हा गुणवंती महल पाया औ गुणवंती दूर अंतर तेरे हर वसे गुरमुख सदा हजूर। कूक पुकार ना हो गई नदरी नदर निहाल नानक नाम रते सहजे मिले शब्द गुरु कै काल। महला तीजा बाबी हा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान जल बिन प्यास न उतरे छुटक जाहे मेरे प्राण। तू सुखदाता बेअंत है गुणदाता निधान नानक गुरमुख बस ले अंत बेली होए भगवान पौड़ी।

यार जिस बक्से सो पाए सी गुर सबदी विचार। श्लोक महला पंजवा। रात न बिहावी सापता जिना विसरै नाओ, राती दिन सुहेलिया नानक हर गुण गाओ। महला पंजवा। रतन जवे हर मान का हब्बे मणि मखन, नानक जो प्रभु पाणिया सच्चे दर सोहन पौड़ी। सच्चा सतगुर शेर सच समालिया, अंत खलोआ आए जे सतगुर अग्गे कालिया। कोई न सके जन काल सच्चा रखवालिया, गुरसा की जोत जगाए दीवा बालिया। मनमुख विण नावे कूड़ियार फिरे बेतालिया, पशु मानस चंप लेते अंदरों कालिया। सबो वरते सच सच्चे सबर निहालिया, नानक नाम निधान है पूरे गुर देखा लिया। श्लोक महला तीजा। बाबी है हुकुम पछाणिया गुर कै सह सुवाए, मेघ वर्षा दया कर गुड़ी छह बरलाए। बाबी है कूक पुकार रह गई सुख वसिया मन आए, नानक सोसा लाई है जे दिन दा सबना जिया रिजक समाए। महला तीजा। चात्रिक तू ना जानही क्या तुद विच तिखा है, कित पीते तिख जाए। दूजे पाए परम्या अमृत जल पल्ले ना पाए, नदर करे जे अपनी ता सतगुर मिले सुवाए। नानक सतगुर ते अमृत जल पाया सहजे रहा समाए पौड़ी। एक मन खंड बैसे जाए सदना दे रही, एक पाला चक्कर पान शीतल जल हे वही। एक पसम चढ़ा में अंग मैलना तो वही, एक जटा बिकट विकराल कुल कर खो वही। एक नगन फिरे दिन रात नींद ना सो वही, एक अग्नि जला में अंग आप विगो वही। गिणना में तन छार क्या कह रो वही, सोहन खसम द्वार जे सतगुरु से वही। श्लोक महला तीजा। बाबी हा अमृत वेले बोलिया तांदर सुनी पुकार, मेघ नो फुरमान होआ वर्षो कृपा कार। हौ तिन कै बलिहार ने जिन्नी सच रखिया उधार, नानक नामे सब हरियावली गुर कै शब्द विचार। महला तीजा। बाबी हा इव तेरी तिखन न उतरे जे सो करे पुकार, नदरी सतगुरु पाईए नदरी उपजे प्यार। नानक साहिब मन वसे विच्चों जाए विकार पौड़ी। एक जैनी उजड़ पाए तुरों खुआया, तिन मुख ना ही नाम ना तीरथ नाया। हथी सिर खुहाए ना पग कराया, कुचल रहे दिन रात शब्द ना पाया। तिन जात ना पक्ष ना कर्म जन्म गवाया, मन जूठे वे जात जूठा खाया। बिन शब्द आचार

तीजा गुरुमुख मल्हार राग जो करहे तिन मन तन शीतल होए गुरु शब्दी एक पछाणिया एको सच्चा सोए मन तन सच्चा सच मन सच्चे सच्ची सोए अंदर सच्ची पगत है सहजे ही पट होए तन जुग में कोर अंधार है मन मुखराव ना कोए सेवड पागी नानका जिन गुरुमुख प्रगट होए महला तीजा इंद वर्षे कर दया लोका मन उपजे चाओ जिसके हुक्म इंद वर्ष दा तिसके सब बलिहारे जाओ गुरुमुख शब्द संभालिए सच्चे के गुण गाओ नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाओ पौड़ी पूरा सतगुर सेव पूरा पाया पूरे कर्म त्याए पूरा शब्द मन वसाया पूरे ज्ञान त्यान मेल चुकाया हर फर तीर्थ जान मनुआ नाया शब्द मरे मन मार तन जने दी माया दर सच्चे सच्चे आर सच्चा आया पूछ ना सके कोई जा खसने भाया नानक सच सलाहे लिखिया पाया श्लोक महला पहला कुल्हा देन दे बावले लेन दे वडे निलज चूहा थड न मावई तिकल बन्ने छज देन दुआई से मरे जिनको देन से जाहे नानक हुक्म न जाकई किथे जाए समाहे

केते मंग मंग जाहे महला पहला। सौ मन हस्ती क्यों गुड़ खावे पंच सह दाना खाए। डके फूके खीरे उड़ावे साहे गया पछताए। अंधी फूक मोई दीवानी खसम मिटी फिर भानी। अब गुल्ला चिड़ी का चुगन गैन चढ़ी बिल लाए। खसमे पावे ओहा चंगी जे करे खुदाए खुदाए। सबका शिव मारे सह मिर्या सब पिछे पे खाए। होए सताना पुरे न मावे साहे गया पछताए। अंधा किसनो बुक सुनावे खसमे मूल न भावे। अक्षो प्रीत करे अक्सिद्धा अकबाली बैठाए। खसमे पावे ओहो चंगा जे करे खुदाए।

दिन काल छिजै काया होए पराल वर्तन वर्तिया सर्व जंजाल पुलिया चुप गया तपताल अंधा चक चक।

मूरख पुख न जाए, दूजे सबको लग विगुता, बिन सतगुरु बूझ न पाए, सतगुरु सेवे सो सुख पाए, जिसनो कृपा करे रजाए। श्लोक महला पहला, शर्म धर्म दोए नानका, जे तन पल्ले पाए, सो तन मित्र न कांडी है, जित सिर चोटा खाए। जिनके पल्ले तन वसे, तिनका नाव फकीर, जिनके हृदय तू वसे, ते नर गुणी गहीर। महला पहला, दुखी दुनी सहेड़ी है, जाए तन लगे।

गया जानिए, कौजल तारण हार शब्द पछानिए, चोर जार जुआर पीड़े खानिए, निंदक लाए तबार मिले हरवानिए, गुरमुख सत समाए सो दरगे जानिए। श्लोक महला दूजा, नाव फकीर है पातशाहो, मूर्ख पंडित नाओ, अंधे का नाव पारखू एवं करे गुआओ, किल्लत का नाव चौधरी पूरी पूरे थाओ, नानक गुरमुख जानिए कल का एहो न्याओ। महला पहला, हरना बाजा कै सुखदारा, एना पर्याना।

पौड़ी आप उपाय मेदनी आप देकर बासार कै दिन परम ना कटी है नाम ना लगे प्यार सतगुरु ते पौ उपजे

अंदर तेल दुबदा कत्या आया उठी खेल फिर उत्या नानक सच्चे मेल सच्चे रत्या।

रास आप छुटे न छूटी है नानक बचन विनाश महला पहला मास मास पर मूर्ख चगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने कौन मास कौन साग कहावे किस में पाप समाने गेंगा मार होम जग किए देवतिया की बाने मास छोड़ बैस नख पकड़े राती मांस खाने फर कर लोकानो दिखलावे ज्ञान ध्यान नहीं सूझे नानक अंधेश्यों क्या कही है कह ना कहे बूझे अंधा सोए जे अंग कमावे तिस हृदय से लोचन नाही मात पिता की रक्त निपन्ने मच्छी मांस ना खाही।

तू है मन भाया पाल चलाए बन कोई ना रखसी जर जरवाना कन चलिया नचसी सतगुर बोत बेर सच्चा रखसी अगन पखे परहार अंदिन पक्षी फासा चुग गए चोग हुक्मी छुटसी करता करे सोहोग कूड़ निखुटसी। श्लोक महला पहला कर्म

तू दरियाओ खुदाया, एक चीज मुझे दे और जहर चीज न भाया। पुराब खाम पूजे हिकमत खुदाया, मन तो आना तू कुदरती आया। सग नानक दीवान मस्ताना नित चले सवाया, आपस दुनिया खुनक नाम खुदाया।

रविया सब ठाई जित तू लाहे सचिया तित को लगे नानक गुण गाए सुध। राग मलार बाणी।

कर कुलाल ब्रह्मा चतुर्मुख दामना जिन विश्व संसार राचीले जा कह कर ईश्वर बावला जगत गुरु तत्सारसा ज्ञान पाखीले पाप पुण्य जा चैदांगिया।

संत जन तर्क नहीं पानन सुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत न होए आनन तर तार अपवित्र।

का नित बनारसी आस पासा अब बिक्र प्रधान ते करे दंडौत तेरे नाम शरणाए रविदास दासा मल्हार हर जपत तेऊ जन पद्म कवलास पत पास समतुल नहीं।

गई हापियो कहो रविदास पयो जल लेखो जोई जोई कीनो सोई सोई देखियो। राग का नवा चौक दे महला चौथा।

अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। मेरा मन साध जना मिल हरिया, हों बल बल बल बल साध जना को मिल संगत पार उतरिया रहा। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी, हम साध जना पग परिया, तन तन साध जिन हर प्रभ जानिया, मिल साधु पतित उधरिया। मनुआ चले चले बहु बहु विद, मिल साधु वसगत करिया, जो जल तंत पसारियो बगत ग्रस, मीना वसगत करिया। हर के संत संत पालनी के, मिल संत जना मल रहिया, हो मैं दुर्ग गया सबनी कर, जो साबुन कातर करिया। मस्तक लीलात लिखिया तुर ठाकुर, गुर सतगुर चरण उर धरिया, सब दालद दुख पंज प्रभ पाया।

किल बिख दैन पए किन अंतर, टूट गए माया के फास। क्या हम किर्म क्या कर्म कमावे, मूर्ख मुग्ध।

शोभा जिन उतारियो हर रस रसाक हर के संत मिले हर मिलिया जैसे गऊ देख बछराक हर के संत जना।

मात पिता बंद पहर साक कानड़ा महला चौथा। मेरे मन हर हर राम नाम जप चीत हर हर वक्त माया गढ़वेड़ी गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत। रहाओ मिथ्या परम परम।

जय राम रविया कट अंतर। अखिर राम रविया रंग प्रीत, हर के संत संत जननी के, जिन मिलिया मन रंग रंगीत। हर रंग लहे ना उतरे कबहू, हर हर जाए मिले हर प्रीत। हम बहु पाप किए अपराधी, गुर काटे कटत कटीत। हर हर नाम दियो मुख औखद, जन नानक पतित पुनीत। कानड़ा महला चौथा, जप मन राम नाम जगन्नाथ। कूमन केर परे बिख बिखिया, सतगुर काड लिए दे हाथ। रहाओ स्वामी अभय निरंजन नरहर, तुम राख ले हो हम पापी पाथ। काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते, कास्ट लो तरे संग साथ। तुम वड पुरख बड अगम अगोचर, हम टूट रहे पाई नहीं हाथ। तू परे परे अपरंपर स्वामी, तू आपन जाने आप जगन्नाथ। अदृष्ट अगोचर नाम त्याए, सत्संगत मिल साधु पाथ। हर हर कथा सुनी मिल संगत, हर हर जप्यो अकथ कथ काथ। हमरे प्रभ जगदीश गुसाई, हम राख ले हो जगन्नाथ। जन नानक दास दास दासन को, प्रभ करो कृपा।

गुण गावे गुरमत हो बलबले हो बलबले जन नानक हर जप पई निहाल निहाल निहाल कानड़ा महला चौथा हर गुण गावो जगदीश एका जी की चै लखबीस जप हर हर शब्द जपीस हर हो किरपीस राव हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा हर जप जपे हर जप जपे जप जापो जगदीश तुमरे जन राम जपे ते उत्तम तिन को हो कुमकुमे कुमकुम जीस हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे सो करे जे तुद पावीस जन नानक अमृत पिया गुरमती तन तन तन तन तन गुरु साबीस कानड़ा महला चौथा पज रामो मन राम जिस रूप नारेख वडाम सब संगत मिल पज राम बड हो पाग मताम रहाओ जित गृह मंदर हर होत जास तित तर अनदो अनद पज राम राम राम राम नाम गुण गावो हर प्रीतम उपदेश गुरु गुर सतगुरा सुख होत हर हरे हर हरे हरे तज राम राम राम सब शिष्ट तार हर तुम किर

पहला चौथा सतगुर चाटो पग चाट जित मिल हर पादर बाट पग हर रस रस हर गाट हर हो लिखे लिलाट रहाओ खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्तार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर पेख न पाइए हर ब्रह्म जोग हर पाइए सत संगति उपदेश गुरु गुरु संत जना खोल खोल कर।

काट कटे काट हर काट कानड़ा मेला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगा दो मत गुरमत हर प्रभ ला दो तुर हो लिखे लीला दो रहाओ बिख माया संत बहुचित विकार सुख पाइये हर पज संत संत संगति मिल सतगुरु गुर साधो ज्यो छोए पारस मनहूर भय कंचन त्यो पतित जन मिल संगति सुध होवत गुरमति सुधा दो ज्यो काष्ट संग लोहा बहुतरता त्यो पापी संग तरे साध साध संगति गुर सतगुरु गुर साधो चार वर्ण चार

जा को सतगुर अपना राखे, सो जन हर रस रसना चाखे, कहो नानक गुर कीनी माया, हालत पलत मुख उजल भया, कानड़ा महला पन्नवा, आराधो तुझे स्वामी अपने, उठत बैठत सोवत जागत, सास सास सास हर जपने।

कल युग में पाया जिन नाओ कानड़ा महला पंजवा कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना अनेक बार कर बंदन संतन पूहा चरण गोविंद जी के बसना रहाओ अनेक पाप कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर द्यावो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत में मन पर बोदा कृष्ण ना बूजी बहु रंग माया नाम लेत सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जब पहे दयाल सहु नानक कौ छूटे जंजाल कानड़ा महला पंजवा ऐसी मांग गोविंद ते पहल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते रहाओ पूजा चरना ठाकुर सरना सोई कुशल जो प्रभु

अज्ञान परम बिन से दुख डेरा, जा कै हृदय बसे गुर पैरा, साध संग रंग प्रभ त्याया, कहु नानक तिन पूरा पाया, कानड़ा महला पंजवा, भगत भगतन हूँ।

तारे अनेक स्वांग का छे पेख तारी जैसो साते सो दृष्टारी कहन कहावन सगल जंजार नानक दास सच करनी सार कानड़ा महला पंजवा तेरो जन हर जत सुनत उमायो।

तुम रो बल तुम संग सुहेले, जो जो कहो सोई सोई करना, तुमरी दया मया सुख पावो, हो कृपाल सा पौजल तरना, अबे दान नाम हर पायो, सिर डार्यो नानक संग चरना। कानड़ा महला पंजवा, साध सरन चरण चित लाया।

सुख पाया तृष्णा सब बुझी है, सांस पाई गुण गाया बिन बूझे पशु की न्याई, प्रम मोहे व्याप्यो माया साध संग जम जेवरी काटी, नानक सहज समाया कानड़ा महला पंजवा, हर के चरण हृदय गाए शीतला सुख शांत मूरत, सिमर सिमर नित त्याय रहाओ सगल आस हो।

कानड़ा महला पंजवा करती जा इको अंकार सतगुरु प्रसाद कतिए संत संग प्रभ ज्ञान पूरन परम ज्योत परमेश्वर सिमरत पाई है।

कानड़ा महला पंजवा साधु हर हरे गुण गाए मन तन तन प्राण प्रभ के सिमरत दुख जाए रहाओ ईत ऊत कहाँ लोबावे एक क्यों मन लाए महा पवित्र संत आसन मिल संग गोविंद ध्याए सगल त्याग शरण आयो नानक लेहो मिलाए कानड़ा महला पंजवा पेख पेख बिगसाओ साजन प्रभ अपना एकांत रहाओ आनंदा सुख सहज मूरत तिस आन नाही भांत सिमरत एक बार हर हर मित कोट कसमल जात गुण रवंत दुख नासे रिद पयंत सांत अमृता रस पी

उदरे हर सिमरत नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निज पतित उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरु नाम दृढ़ायो कानड़ा महला पंजवा तन ओ प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूरन बड़ पागी रहाओ मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी कोर परम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाओ अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूरन रतनागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्तक आन तरयो प्रभ।

नारायण नरपत नमस्कार है। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहितार है रहाओ। कवन कवन कवन गुण कही है, अंत नहीं कछ पार है। लाख लाख लाख कहीं कोरे को है ऐसो विचार है। विषम विषम विषम ही भई है, लाल गुलाल रंगार है। कहो नानक संतन रस आई।

ऊंच नीच सब एक समानो, मुख बकनो मन मान रहाओ। कट कट पूर रहे सुख सागर, पै पंजन मेरे प्राण। मने प्रगास पयो प्रमनास्यो, मंत्र दियो बुरकान। करत रहे कर्तज्ञ करुणा में, अंतर जामी ज्ञान। आठ पहर नानक जस गावे, मांगन को हरदान। कानड़ा महला पंजवा, कहन कहावन को कई केत। ऐसो जन बिरलो है।

कहु नानक जन हर हर हर है, कत आवे कत रमते, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर न जाए, तन मन गलत भय ते संगे, मोनी मोहे रही मोरी माए रहाओ, जय जय पै कहो बिरथा हो अपनी, तेऊ तेऊ गहे रहे अटकाए, अनिक पाप की एक है जाली, ताकी गंठ नहीं छोराए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही सरनाए, काटे अज्ञान परम मोह माया, लियो कंठ लगाए, कानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण आधार है रहाओ, नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवारे, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल विषम नाम हर तारे, अगम पदार्थ लाल अमोला, पयो प्राप्त गुर चरनारे, कहो नानक प्रभु पय कृपाला, मगन पय ही रे दरसारे, कानड़ा महला पंजवा, साजन मीत स्वामी नेरो, देखत सुनत सबन कै संगे, होरे काज बुरु कै फेरो, रहाओ, नाम बिना जे तो लपतायो, कछु नहीं नाही कचेरो, आगे दृष्ट आवत सब प्रगट, इहा मोयो परम अंधेरो, अटक्यो सुत बनता संग माया, देवन हार दतार बिसेरो।

परोसा ठाकुर शरण तुम्हारी आयो रहाओ। जन्म जन्म के महापराचत दर्शन पेट मिटायो, पयो परगास अनद उजियारा सह समाज समायो। कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समरथ अथायो, कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक ले लायो। कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जपती।

संत प्रसाद हर के गुण गाया, गुर पेटत नानक सुख पाया, कानड़ा महला पंजवा, सिमरत नाम मने सुख पाये, साध जना मिल हर जस गाय।

कोकत कपट खपट खल गर्जत मर्जत मीच अनक बरिया रहाओ अहंग मत अनरत कुमित हित प्रीतम देखत परमत लाख गरिया अनित व्यवहार आचार विधहीनत मम मद मात कोप जरिया करुण कृपाल गोपाल दीन बंद नानक उदर शरण परिया कानड़ा महला पंजवा जी प्राण मान दाता हर बिसरते ही आन रहाओ गोविंद त्याग आन लागे अमृतो डार पूम पागे दिखे रस्यों आस्कत मूड़े काहे सुखमान काम क्रोध लोभ व्याप्यो जन्म ही की खान पतित पावन सरण आयो उदर नानक जान कानड़ा महला पंजवा अविलोको राम को मुखार बिंद खोजत खोजत रतन पा

साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद। कानड़ा मेला पंजवा कर पंजवा इको अंकार।

जगत उदाहरण नाम पह तेरे, नव निध नाम निदान हर केरे, हर रंग रंग रंग अनुपेरे, काहे रे मन मोहे मगनेरे, नैनो देख साध दर तेरे, सो पावे जिस लिखत लिले रे, रहाओ सेवो साध संत चरनेरे, बाँचो तूर पवित्र करे रे, अरसठ मज्जन मैल कटे रे, साफ साफ त्यावो मुख नहीं मोरे, किच संग न चाले।

बरना साकू एक तुले रह, दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, मिल नानक देव जगत गुर के रह। कानड़ा महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन पर।

मान मोह त्याग छोड़ो तौ नानक हर जियो पेटना। कानड़ा महला पंजवा रंगा रंग रंगन के रंगा कीट हस्त पूरन सब संगा। रहाओ बरत नेम तीरथ सैत गंगा जल हेवत पूख अर नंगा पूजा चार करत मेलंगा चक्र कर्म तिलक खाटंगा दर्शन पेटे बिन सतसंगा हठ निग्रह अत रहत बिटंगा हौ रोग व्यापै चुके न पंगा काम क्रोध अत कृष्ण जरंगा।

यो तुम्हारे बलबले बलबले बल गई। पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए, प्रभ थान तेरो केहरो जित जंतन कर विचार। अनिक दास कीरत करें तुम्हारी, सोई मिलियो जो पावतो जन नानक ठाकुर।

कणिक मंदर पाठ सेज सकी मोह नाही इन स्यों तात मुक्त लाल अनक भोग बिन नाम नानक हाथ रूखो भोजन पूम सैन।

जो संत वेद कहत पंथ गाखरो मोह मगन अहंकार राव जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप नाम जपत सो जन उदरे जिसे उदारो आप बिनस जाए।

मन मोही पंच दोही उर्ज निकट बत्यो ताकि शरण साधुआ दूत संग निवार रहाओ। कोट जन्म जोन प्रम्यो हार पर्यो द्वार कृपा गोविंद पई मिल्यो नाम आधार दुर्लभ जन्म सफल नानक पाव उतार पार। कानड़ा महला पंजवा कर यारवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद सहज सुभाए आपने आए कछु ना जानो कछु दिखाए प्रभ मिल्यो सुख बाले पोले रहाओ। संजोग मिलाए साध संगाए कथु ना जाए करें बसाए गुण निधान प्रगट्यो ए चोले चरण लुभाए आन सजाए थान सनाए सर्व समाए रसक रसक नानक गुण बोले। कानड़ा महला पंजवा गोविंद ठाकुर मिलन दुराई परमित रूप अगम अगोचर रहो सर्व समाई रहाओ। कहन पवन नाही पायो पायो अनेक उकत चतुराई जतन जतन अनेक उपावरे तो मिलियो जो कृपाई प्रभु दयार कृपार कृपा निद जन नानक संतरे नाई। कानड़ा महला पन्नवा माई सिमरत राम राम राम।

मृत मृत निकट निकट सदा है, हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड़, बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई, कानड़ा अष्टपदिया महला चौथा कर पहला इको अंकार। सतगुरु प्रसाद जप मन राम नाम सुख पावे गो, ज्यों ज्यों जपै

अज्ञान लाए सवालिया, गुर ज्ञान लाए जगावे गो। नानक पाणे अपने ज्यो पावे तिवे चलावे गो। कानड़ा महला चौथा, जप मन हर हर नाम तरावे गो। जो जो जपे सोई गत पावे, ज्यो त्रू प्रहलाद समावे गो। रहाओ।

मिल सतगुरु नाम से आवे गो। जन्म जन्म की हो मैं मल लागी, मिल संगत मल लह जावे गो। ज्यो लोहा तरयो संग कास्ट लग, शब्द गुरु हर पावे गो। संगत संत मिलो सत्संगत, मिल संगत हर रस आवे गो। बिन संगत कर्म करे अभिमानी, कड पानी चीकड़ पावे गो। भगत जना के हर रखवारे, जन हर रस मीठ लगावे गो। खिन खिन नाम दे वडियाई, सतगुरु उपदेश समावे गो। भगत जना को सदा निव रही।

ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावे गो जो जो भगत होए सो पूजो परमन परम चुकावे गो जात न जात देख मत परमो सुख जनक पगी।

देख ना गए हर जपत्या अंत ना पावे गो। तू अथाओ अत अगम अगम है मत गुरमत मन ठहरावे गो। जिन तू जप्यो तेई जननी के हर जप्यो कौ सुख पावे गो। बिदरदासी सुत छोक छोरा कृष्ण अंक गल लावे गो। जल ते ओ

मन गुरमत चाल चलावे गो ज्यो मैं गल मस्त दी जय तल कुंडे गुर अंकस शब्द दृढ़ावे गो रहाओ चल तो चले चले दह दह दिस गुर राखे हर

गुर गरुड़ शब्द मुख पावे गो माया पुयंग तिस नीड़ नावे दिख चार चार लिव लावे गो स्वान लोभ नगर में सबला गुरखिन में मार कडावे गो सत संतोख धर्म आन राखे हर नगर

सतगुर महापुरख है पारस, जो लागै सो फल पावै गो। ज्यो गुर उपदेश तरे प्रहलादा, गुर सेवक पैज रखावै गो। सतगुर बचन बचन है नीको, गुर बचनी अमृत पावै गो। ज्यो अमरीत अमरा पद पाए, सतगुर मुख बचन त्यावै गो। सतगुर शरण शरण मन पाई, सुदा सुदा कर त्यावै गो। दयाल दीन पए है सतगुर, हर मार्ग पंथ दिखावै गो। सतगुर शरण

हर हर हर हर हर सर सेवे तीन दरगे मान दिवावे गो गुरमत गुरमत गुरमत त्यावे हर गल मिल मेल मिलावे गो गुरमुख नाद वेद है गुरमुख गुर परचय नाम दियावे गो हर हर रूप हर रूपो होवे हर जन को पूज करावे गो साकत नर सत

बिनवंत नानक शरण स्वामी, बड़ भाग दर्शन पाए, मिल साधु नित पजय नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवे हर अम्यो पीवे, जन्म मरना पा गए, सत्संग पाई है हर से आई है, बहुत दुख ना लागे, कर दया दाते पुरख विदाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन पूर बांचे, हर दर सहज।

गोविंद गाये नित ध्याये। परवान सोई आया जप ताप संजम हर हर निरंजन। गोविंद तन संग चाले बिनवंत नानक कर दया दीजै। हर रतन बांधो पाले मंगल चार चोज आनंदा कर कृपा मिले परमान।

गोविंद गोविंद गुरमत ध्याये सादर गै पाये मान। गोविंद गोविंद गोविंद जप मुख उजला प्रधान, नानक गुरु गोविंद हर जित मिल हर पाया ना।

सतसंगत सतगुरु तन तनो तन तन तनो जित मिल हर बुलग बुलोगिया सब कहो मुखो हर हर हरे हर हर हरे हर बोलत सब पाप लहो गिया। श्लोक महला चौथा हर हर हर हर नाम है गुरुमुख पावे कोय हौं मैं ममता नाथ होए दुर्मत कड्डे धोए नानक अमदिन गुण उचरे जिनको तुर लिखिया होए। महला चौथा हर आपे आप दयाल हर आपे करे सो होए हर आपे आप वरतदा हर जेवड अवरना कोए जो हर प्रभ पावे सो थिए जो हर प्रभ करे सो होए कीमत किने न पाया बेअंत प्रभु हर सोए नानक गुरमुख हर सा लाहिया तन मन शीतल होए। पौड़ी सब जोत तेरी जग जीवना तू कट कट हर रंग रंगना सब त्यावे तुद मेरे प्रीतमा तू सत सत पुरख निरंजना एक दाता सब जगत पिखारिया हर जाते सब मंग मंगना सेवक ठाकर सब तू है गुरमती हर चंग।

रंग परंग सिस सब साजी, बहु बहु विद पांच उपावनी, सब तेरी जोत ज्योति विच वरते, गुरमती सुदै लावणी, जिन हो है दयाल तिन सतगुर मेले, मुख गुरमुख हर समझावनी, सब बोलो राम रमो श्री राम रमो, जित दालद दुख भुख सब ले जावनी। श्लोक महला चौथा, हर हर अमृत नाम रस, हर अमृत हर उर्धार, विच संगत हर प्रभु वर्तदा, बुज्जो शब्द विचार, मन हर हर नाम से आया, दिख हो मैं कड्डी मार, जिन हर हर नाम न चेत्यो, तिन जुए जन्म सब हार, गुर तुठे हर चेता।

महला चौथा हर कीरत उत्तम नाम है विचकल जुग करनी सार मत गुरमत कीरत पाई है हर नामा हर उरहार वड पागी जिन हर त्याया तिन सौंपया हर पंडार बिन नावे जे कर्म कमावणे नित हो मैं होए खुआर जल हस्ती मलना वाली है फिर भी फिर पावे चार हर मेलो सतगुरु दया कर मन वसै एकंकार जिन गुरमुख सुन हर

गुरुमति हर निरंकारा, सब चवो मुखो जगन्नाथ, जगन्नाथ जग जीवनो जित पव जल पार उतारा। श्लोक महला चौथा, हमरी जेबा एक प्रभ, हर के गुण अगम अथाहा, हम क्यों कर जपे आणिया, हर तुम बड अगम अगाहा। हर देहो प्रभु मत ऊतमा, गुर सत गुर के पग पाहा, सत संगत हर मेर

हर करो कृपा जग जीवना, गुरु सतगुरु मेल दयाल। गुरु सेवा हर हम पाया, हर हुआ हर कृपाल। सब आ

सदा सदा सते जन नानक दास दसोना। श्लोक महला चौथा। हमरे हर जग जीवना, हर जप्यो हर गुरु मंत्र, हर अगम अगोचर अगम हर, हर मिलिया आए अचिंत। हर आपे कट कट वर्तदा, हर आपे आप बेअंत, हर आपे सब रस भोगदा, हर आपे कवला कंत, हर आपे सिखिया पाईदा, सब सिद्ध उपाई जी जंत। हर देवो दान दयाल प्रभ, हर मांगे हर जन संत, जन नानक के प्रभ आए मिल, हम गावे हर गुण चंत। महला चौथा। हर प्रभ सज्जन नाम, हर मैं मन तन नाम शरीर, सब आशा गुरमुख पूरिया, जन नानक सुन हर तीर पौड़ी। हर उत्तम हरिया नाम है, हर पुरख निरंजन मौला, जो जप दे हर हर दिन सरात, तिन सेवे चरण नित कौला, नित सार संभाले सब जी जंत, हर वक्त है निकट सब जौला। सो बुझे जिस आप बुझाए सी, जिस सतगुर पुरख प्रभ कौला, सब गावो गुण गोविंद हरे, गोविंद हरे गोविंद हरे, गुण गावत गुणी समौला। श्लोक महला चौथा। सुतिया हर प्रभ चेत मन, हर सहज समाज समाए, जन नान

पंचे शब्द वजे मत गुरमत बड़ पागी अनहद वजिया आनंद मूल राम सब देखिया गुर सब जी गोविंद गजिया आद जुगाद वेस हर एको मत गुरमत हर प्रभ पजिया हर देवो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लज्जिया सब तन कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा कज्जिया। श्लोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर भरे वाहन जिना सतगुरु मन्या जन नानक वड पाग लहन। महला चौथा हर हर नाम असंखार हर के गुण कथन न जाहे हर हर अगम अगाध हर जन कित विद मिले मिलाहे हर हर जस जपत जपंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लहो लड़ लाए। पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर होए सो वर्णिय किस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सत गुर चटसाल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सतगुरु जित मिल हर लेखा लिखा। श्लोक मैला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिए सतगुर भाए हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन

हर हर नाम निदान है गुरमुख पाया जाए। जिन सुर मस्तक लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए। तन मन शीतल होया सांत वती मन आए। नानक हर हर चौंदिया सब दालद दुख ले जाए। पौड़ी हों वारिया तिनको सदा सदा। जिना सतगुर मेरा प्यारा देखिया तिनको मिलिया मेरा सतगुरु। जिनको तुर मस्तक लेखिया हर अगम दियाया गुरमति। तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया गुर बचन से आया जिना अगम हर। ते ठाकुर सेवक रल एकिया सब कहो मुखो नर नर हरे। नर नर हरे नर नर हरे हर लाहा हर भगत विशेखिया। श्लोक महला चौथा। राम नाम रम रव रहे रम रामो राम रमीत। कट कट आत्म राम है।

हर स्वामी हर प्रवचन मिले जिन लिखिया सुर हर प्रीत जन नानक नाम से आया गुरु बचन जप्यो मन चीत महला चौथा हर प्रभ सज्जन लोड़ लो पाग वसै वड पाग गुरु पूरे देखा लिया नानक हर लिवलाग पौड़ी तन तन सुहावी सफल करी।

मेरा हर प्रभ सुगड़ सुजाने, हर मेल दिखाए आप हर, गुरबचनी नाम समाने, तिन विट्टो नानक वारिया, जो जप दे हर निर्वाणी। श्लोक महला चौथा, हर प्रभ रत्ते लोयना, ज्ञान अंजन गुरुदे, मैं प्रभ सज्जन पाया, जन नानक सहज मिले।

सतगुरु मिले नाम उपजै तृष्णा पुख सब जाए नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाए पौड़ी तुद आपे जगत उपाय कै तुद आपे वसगत कीता एक मनमुख कर हारायन एक नामेल गुरु तिना जीता हर उत्तम हर प्रभ नाम है गुरु बचन सभा गै लीता दुख दालद सबो लह गया जानाओ गुरु हर दीता सब सेवो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो जिन जगत उपाए सबो वस कीता श्लोक महला चौथा मन अंतर होमे रोग है परम फूले मन मुख दुर्जना नानक रोग बजाए मिल सतगुर साधु सज्जना महला चौथा मन तन ताम सगारवा जा देखा हर नैने नानक सो प्रभ मैं मिले हो जीवा सद सुने पौड़ी जगन्नाथ जगदीशर करते।

जो करे सो होई, मात पिता पुत प्रात मीत, किस बिन नहीं कोई, कट कट अंतर रव रहा, जप्यो जन कोई, सगल जपो गोपाल गुण, प्रगट सब लोई, श्लोक महला चौथा, गुरुमुख मिले से सज्जना, हर प्रभ पाया रंग, जन नानक नाम सलाए तू, लुड लुड दर गए

खुद राज कानड़ा बाणी नाम देव जीओ की इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। ऐसो राम राय अंतर जामी जैसे दर्पण माहे बदन परवानी रहाओ बस कटा कर

रामा राम राम मैं अंत न पाया, हम बार प्रत पारे तुमरे, तू बड़ पुरुष पिता मेरा माया रहाओ। हर के नाम असंख अगम है, अगम अगम हर राया।

जन को कृपा करो मधुसूदन। हर देवो नाम जपाया मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है। जन नानक गुरुमुख पाया कल्याण महला चौथा। हर जन गुण गावत हसिया हर हर भगत बनी मत गुरमत। तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहा गुर के पग सिमरो दिन राती। मन हर हर हर बसिया हर हर हर कीरत जग सारी। सस चंदन जग सस्या हर जन हर हर हर निवलाई। सब साकत खोज पया ज्यो किरत संजोग चलियो। नर निंदक पग नागन छो जलिया। जन के तुम हर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखिया। कहां भया दैत करी बकीली सब कर कर चर परिया। जे तेजी जंत प्रभ किए सब काले मुख ग्रसिया। हर जन हर हर हर प्रभ राखे जन नानक शरण पया। कल्याण महला चौथा। मेरे मन जप जप जगन्नाथे गुरु उपदेश हर नाम ते आयो। सब किल बिख दुख लाथे रहाओ। रसना एक जस दाए न साके बहु की जय बहु रसनते। बार बार खिन पल सब गावे गुण कह ना सके प्रभु।

कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभु का, कहो तिन को क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्प आरापो, कोई मिले प्रभु मिलते, हर के गुण बहुत बहुत बहुत होबा, हम कुछ कर कर बरनते, हमरी मत वसगत प्रभु सुमरे, जन नानक के प्रभु समरथे, कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप हर गुण अतः सुन थई, धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई, रहाओ, सो हर हर नाम से आवे हर जन, जिस बद भाग मथई, जह दरगे प्रभ लेखा मांगे, तह छुटे नाम से आए थई, हमरे दोख बहुत जन्म जन्म।

हर सेवा से काल जोए न साके, चरनी आए पवे हर जाने। जाको राख ले मेरा स्वामी, ताको सुमत दे पहकाने। ताको कोई अपर न साके, जाकी भगत मेरा प्रभु माने। हर के चोज विदान देख जाने, जो खोटा खरा इक निमक पछाने। ताते जन को आनंद भया है, रिद्ध शुद्ध मिले खोटे पछताने। तुम हर दासे समरथ स्वामी, इक मांगो तुझ पासो हर दाने। जन नानक को हर कृपा कर दीजे, सद बसे हृदय मोहे हर चराने।

जगदीशर चरण शरण जो आए ते जन पवनित पार परे भगत जना की तेज हर रास है जन नानक आप हर के।

जाचिक नाम जाचे जाचे सर्वतार सर्व के नायक सुख समूह के दाते रहाओ खेती खेती मांगर मांगे पावनिया सो पाये सफल सफल सफल दर्शरे परस परस गुण गाये नानक तत् तत् सो मिलिये हीर हीर विदाये कल्याण महला पंजवा मेरे लालन की शोभा सदनव तन मन रंगी शोभा रहाओ ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा भगत दान जस मंगी जोग ज्ञान ध्यान सेख ना गए सगल जपे तरंगी कहो नानक संतन बलिहार है जो प्रभु के सदसंगी कल्याण महला।

योग जुगत ज्ञान पुगत सुरत शब्द तट देते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन विद ताकी कहां करो तर्क त्यान ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कैसे जरो रहाओ विसन महेश सिद्ध मुन इंद्रा कै दर शरण परो काहू पह राज काहू पह सुरगा कोट मदे मुक्त कहो कहो नानक नाम रस पाये साधु चरण गहो कल्याण महला पंजवा प्राण पथ दयाल पुरख प्रभ सखे गर्भ जोन कल काल जाल दुख विनाशन हर रखे।

आसरो गोविंद नानक आसरो कल्याण महला पंजवां मन तन जापिए भगवान गुरपुरे सो प्रसन्न भये सदा सुख कल्याण रहाओ सर्व कार्य सिद्ध भये गाए गुण गोपाल मिल साध संगत प्रभु।

सुरत मत चतुराई शोभा रूप रंग तन मान सर्व सुख आनंद नानक जप राम नाम कल्याण कल्याण महला पंजवा हर चरण सरन कल्याण करन प्रभ नाम पतित पावनो रहाओ साध संग जपनि संग जम काल तिसना खावनो मुक्त जुगत अनेक सुख हर भगत लवे ना लावनो प्रभ दर्श लुभत दास नानक बहुड़ जोन ना तावनो कल्याण महला चौथा अष्टपदिया इको अंकार सतगुरु प्रसाद रामा राम रामो

जय। हर हर हर हर हर जन उत्तम क्या उपमा तिन दी जय। राम नाम सुल और

हम निर्गुणी मनूर अत सीखे, मेरे सतगुरु पारस की जय रहाओ। सुरग मुक्त बैकुंठ सब बांछे, नित आशा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगे, मिल दर्शन तृप्त मन दी जय। माया मोह सबल है भारी, मोह कालक दाग लगी जय। मेरे ठाकुर के

जन हर भगवान दिखी जाए, साकत सूत बहु गुरु जी भरिया, क्यों कर तान तनी जाए, संत सूत किस मिकते नाही, साकत संग न की जाए, सतगुरु साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवि जाए, अंतर रतन जवे हर मानक, गुर कृपा ते ली जाए, मेरा ठाकुर वड़ा वड़ा है स्वामी।

कृपा कृपा कर साध मिलावो जग सम्मन कौथम दी जय बसदा तले तले सब ऊपर मिल साधु चरण रुली जय अप उत्तम।

साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रह ना सकी जय। जो जल मीन जलन जल प्रीत है खिन जल बिन फूट मरी जय। माँ अपाग अपाग है जिनके तिन साधु तूर न पी जय। तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझे दंड तरम राय का दी जय। सब तीर्थ बरत जग पुन किए हिवे गाल गाल तन छीजे। अतुल्ला तोल राम नाम है गुरमत को पुजे ना तोल तुली जय। तब गुण ब्रह्म ब्रह्म तू

मन तम अर्थ करो सब आ गए रस गुरमत ज्ञान दृढ़ी जय रहा ब्रह्म नाम गुण साफ करोवर नित चुन चुन पूज करी जय आत्म दियो दियो है आत्म रस लागे पूज करी जय विवेक बुद्ध सब जग में निर्मल।

नाम बिना नचते नर देखो तिन पस पस नाक वडी जाए साकत नर अंकारी कही है बिन नाम त्रिग जीवी जाए जब लग सांस सांस मन अंतर तत बेगल शरण परी जाए नानक कृपा कृपा कर धारो मैं साधु चरण पखी जाए कल्याण महला चौथा रामा मैं साधु चरण धुवी जाए किल बिखो दहन होए खिन अंतर मेरे ठाकुर कृपा की जय रहाओ मंगत जन दीन करे दर ठाडे अत तरसन को दान दी जय त्राहे त्राहे शरण प्रभ आए मोको गुरमत नाम दृढ़ी जय काम क्रोध नगर में सबला नित उठ उठ जूझ करी जय अंगीकार करो रख ले वो गुरु पूरा कार्ड कटी जय अंतर अगन

सूरज किरण गवया सर्ब ठाई, सब कट कट राम रवि जय। साधु साध मिले रस पावे, तप निज पर बैठिया पी जय। जन को प्रीत लगी गुर सेती, जो चकवी देख सुरी जय। निरखत निरखत रैन सब निरखी, मुख का दे अमृत पी जय। सात स्वान

साधु साध शरण मिल संगत, जित हर अस्पार कभी जाए, पर उपकार बोले बहु गुनिया, मुख संत भगत हर दी जाए। तू अगम दयाल दया पत दाता, सब दया तार रख ली जाए, सर्व जी जग जीवन एको, नानक प्रतपाल करी जाए। कल्याण महला चौथा, रामा हम दासन दास करी जाए, जब लग सास होए मन अंतर, साधु तूर कवी जय रहाओ। शंकर नारद शेख नाग मुन, तूर साधु की लोची जय, पवन पवन पवित्र हो है सब, जय साधु चरण धरी जय। तज लाज अंकार सब तजिए, मिल साधु संग रही जय। कर्म राय की कान चुकावे, दिख दुबदा कार्ड कटी जाए, परम सुख के बहु उब सुख कही।

करी जय। जेवड भाग होए अपनी का ता गुरमत नाम दृढ़ी जय। सब माया मोह बिकम जग करिए सहजे हर रस पी जय। माया माया के जो अधिकारी विच माया पचै तची जय। अज्ञान अंधेर महापंथ बिखड़ा अहंकार पार लग ली जय। नानक राम रम रम रम रम रामे ते गत की जय। सतगुर मिले ता नाम दृढ़ाए राम नामे रले मिली जय। छक्का पहला

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद राज करवाती विपास महला पहला चौक दे कर पहला नाए तेरे तरना नाए पत पूज नाओ तेरा गहना मत मकसूद नाए तेरे नाओ मन्ने सब कोए बिन नामे पत कब हो न होए अवर सियाणत सगली पाज जय बख्शे तै पूरा।

सोजन जान साची दरगे पावे मान कहना सुनना अकथ कर जाए कफनी बदनी नानक जल जाए प्रवासी महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अष्ट तीरथ संग गहे गुरु उपदेश जवाहर मानक सेवे सिख सो खोज लहे गुरु समान तीरथ नहीं कोए सर संतोख पास गुरु होए रहाओ गुर दरियाओ सदा जल निर्मल मिलिया दुर्मत मैल हरे सतगुरु पाए पूरा नावन पशु करे तो देव करे रत्ता सच नाम तल ही अल सो गुर परमल कही है जाकी वास बनास पत सौर है पास चरण लिव रही है गुरमुख जी प्राण उपजे गुरमुख शिव कर जाई है गुरमुख नानक सच समाई है गुरमुख निज पद पाई है प्रभाती महला पहला गुर पर सादी विद्या विचार है पर कर पावे मान आपा मध्य आप प्रगासिया पाया अमृत नाम करता तू मेरा जजमान एक दखना हो पै पै मांगो देह अपना नाम रहाओ पंच तस्कर तावत राखे चूका मन अभिमान दिष्ट विकारी दुर्मत भागी ऐसा ब्रह्म ज्ञान जत सत चावल दया कनक कर प्राप्त पाती धान दूध कर्म संतोष कियो कर ऐसा मांगो दान खिमा तीरज कर गऊ लवेरी सहजे बछड़ा खीर पिए सिफत कर्म का कपड़ा मांगो हर गुण नानक रवत रहे प्रभाती महला पहला आवत किने आवाख्या जावत क्यों राख्या जाए जिससे हुआ सोई पर जाने जा उस ही माए समाए तू है वाहो तेरी रजाए जो किछ करे सोई पर होए बा अवर न करना जाए रहाओ जैसे हर हट की माला टिंड लगत है एक सखनी होर फेर परियत है तैसो ही एव खेल खत्म का ज्यो उसकी वड्याई सुरती के मार्ग चल के उल्टी नजर परगासी गासी

एहो रहा निर्वाण, जिसते होआ सोई कर मान्या, नानक गिरही उदासी सो करवाण। प्रभाती महला पहला, दिष्ट बिकारी बंधन बांधे, हों तिस कैबल जाई। पाप पुन की सार न जाने, फूला फिरे अजाई। बोलो सच नाम करतार, सुन बहुर ना आवन।

परवान ताको समझावन जाये जे को भूला होई आते खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई नाव पर भाते सब त्याये छोड़ो दुनी परीता प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता परवाती महला पहला मन माया मन ताया मन पंखी आकाश तत्पर शब्द निवारिया मगर उठा साबास जा तू राखे राख ले साबत हो वै रास ऐसा नाम रतन निध मेरे गुरमत दे लगो पग तेरे रहाओ मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गावार मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार कट कट एक वखाणी है कहो न देखिया जाए फोटो पूठो रालिए बिन नावे पच जाए जा तू मिले ता मिल रहा जा तेरी होए रजाए जात जन्म ने पूछिए सब कर ले हो बताए सा जात सा पत है जे कर्म कमाए जन्म मरण दुख काटिए नानक छूट सुनाए प्रभाती महला पहला जागत बिगसे मूठो अंधा गलफाही सिर मारे तंदा आशा आवे मनसा जाए पुरजी ताणी किछ ना बसाए जागस जीवन जागन हारा सुख सागर अमृत भंडारा रहा कहो ना बूझे अंग ना सूझे।

बगावत करी कराहे मोर, अंतर वसे चूके मैं मोर, किस से भी दूजा नहीं होर। गुर का शब्द महारस मीठा, ऐसा अमृत अंतर दीठा, जिन चाख्या पूरा पद होए, नानक प्राप्यो तन सुख होए। परवाती महला पहला, अंतर देख शब्द मन मान्या, और न रंगन हारा, एनस जिया देख संभाले, तिस ही की सरकारा। मेरा प्रभु रांग कणो अत रूड़ो, दीन दयाल प्रीतम मनमोहन, अत रस लाल सगूड़ो। रहाओ ऊपर कूप गगन तनिहारी, अमृत पीवन हारा, जिसकी रचना सो विद जाने, गुरमुख ज्ञान विचारा। पसरी किरण रस कमल बिगासे, सस्कर सूर समाया, काल बिंदु से मन सामन मारी, गुर प्रसाद प्रभु पाया। अति रस रंग चलू ले राती, दूजा रंग ना कोई, नानक रसम रसाए राते, रब रहा प्रभु सोई। परवाती महला पहला, बारे में रावल खप जावे, चहो छह में सन्यासी, योगी का पड़िया सिर खूथे, बिन शब्द गल फासी, शब्द रते पूरे बैरागी, औ हथ हस्त में पीछिया जा।

दुख पाए शब्द मिले से सूचा चारी साची दरगह माने हम दिन नाम रतन लिव लागे जुग जुग साच समाने सगले कर्म कर्म सुख संजम जप तप तीरथ शब्द वसे नानक सतगुरु मिले मिलाया दुख पराचित काल नसे करवाती महला पहला संता की रेण साध जन संगत हर कीरत कर तारी कहां करे बपुरा जन बरते गुरमुख हृदय मुरारी जल जाओ जीवन नाम बिना हर जप जाप जपो जप माली गुरमुख आवे साध मना रहाओ गुर उपदेश साथ सुख जाको क्या किस उपमा कही है लाल जवेहर रत्न पदार्थ खोजत गुरमुख लही है चीने ज्ञान त्यान तम साचो एक शब्द लिवलावे निरालंब निरहार नहीं केवल निरपौता लीलावे सायर सपत करे जल निर्मल उल्टी नाम चरावे बाहर जा तो ठाक रहावे गुरमुख से समावे सो गिर ही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछानिया नानक कहे अवर नहीं दूजा सात शब्द मन मानिया राज करवाती महला तीजा चौपदे इको अंकार सतगुर प्रसाद गुरमुख बिरला कोई बूझे सब दे रहा समाय नाम रते सदा सुख पावे साथ रहे लिवलाई हर हर नाम जपो जन भाई गुर प्रसाद मन अस्थिर होवे हम दिन हर रस रहा अघाई रहा हम दिन पगत करो दिन राती इस जुग का लाहा भाई सवा जन निर्मल मैल न लागे सच नाम सितलाई सुख सिगार सतगुरु दिखाया नाम वड्डी वड्याई अकुट पंडार करे कदे तोट ना आवे सदा हर सेवो भाई आपे करता जिसनो देवे तिस वसे मन आई नानक नाम ते आए सदा तू सतगुरु दिया दिखाई करवाती महला तीजा निर्गुणी आरे को बस ले स्वामी आपे ले हो मिलाई तू बेअंत तेरा अंत ना पाया सब दे दिहो बुझाई हर जियो तुद विटो बल जाई तन मन अर्पी तुद आगे राखो सदा रहा शरणाई रहाओ अपने पाने विच सदा रख स्वामी हर नामो दे वड्याई पूरे गुरते पाना जापे हम दिन सहज समाई तेरे पाने भगत जे तुद भावे आपे बख्श मिलाई तेरे पाने सदा सुख पाया गुर कृष्णा अग्न बुझाई जो तू करे सो होवे करते अवर न करना जाई नानक नावे जेवड अवर न दाता पूरे गुर ते पाई करवाती महला तीजा गुरमुख हर साल आया जिन्ना तीन साल आहे हर जाता विचों परम गया है दूजा गुर के शब्द पछाता हर जियो तू मेरा इक सोई तुद जपी तुद ऐसा लाही गत मत तुझते होई रहाओ गुरमुख सालान से साध पाएन।

ਆਪਣਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੈ ਦਾਤਾ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚ ਪਾਏ ਕਰਵਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਰ ਜਿਉ ਤਿਨ ਤੂ ਰਾਖਣ ਜੋਗ ਤੁਧ ਜੇਵਟ ਮੈਂ ਅਵਰਨਾ ਸੂਜੈ ਨਾ ਸੋ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਗ ਹਰ ਜਿਉ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਜਿਉ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਰਹਾਓ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਰ ਜਿਉ ਤਿਨ ਕੀ ਕਰੈ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਾਖੋ ਹਰ ਜਿਉ ਕੋਇ ਨਾ ਸਕੈ ਜਮਕਾਲ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਸੱਚੀ ਹਰ ਜਿਉ ਨਾ ਉਹ ਕਟੈ ਨਾ ਜਾਏ ਜੋ ਹਰ ਛੋੜ ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਲਾਗੈ ਉਹ ਜੰਮੈ ਤੈ ਮਰ ਜਾਏ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਰ ਜਿਉ ਤਿਨਾ ਦੁਖ ਭੂਖ ਕਿਛ ਨਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਏ ਸਦਾ ਤੂ ਸੱਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਪ੍ਰਵਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਜਿਉ ਸਦਾ ਧਿਆਓ ਜਬ ਲਗ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ ਚੂਕਾ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ ਸਫਲ ਜਨਮ ਤਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੇਰਾ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਜੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਰਸਤੀ ਜੈ ਰਹਾਓ ਮੂਲ ਪਛਾਣਨ ਤਿਨ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਹਉ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤ ਖੋਈ ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਏਕੋ ਸਚ ਵਰਤੈ ਵਿਰਲਾ ਬੂਜੈ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਤ ਵਖਾ ਮੈਂ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਿਚ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਮਾਨੈ ਸਭ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਅਤਨੇ ਵਿਟੋ ਜਿਤ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣੈ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨ ਸੇਵਿਆ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਤੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਆਪੇ ਭਾਂਤ ਬਣਾਏ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਸਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ ਪ੍ਰਭ ਖੇਲ ਕੀਆ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਸਰਬ ਜੀਆ ਨੂੰ ਰਿਜਕ ਦੀਆ ਕਲੀ ਕਾਲ ਮੈਂ ਰਵਿਆ ਰਾਮ ਕਟ ਕਟ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਾ ਗੁਪਤਾ ਨਾਮ ਵਰਤੈ ਵਿਚ ਕਲ ਯੁਗ ਕਟ ਕਟ ਹਰ ਪਰ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਤਿਨਾ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਜੋ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਪਗ ਪਾਇਆ ਇੰਦਰੀ ਪੰਚ ਪੰਚੇ ਵਸ ਆਣੇ ਖਿਮਾ ਸੰਤੋਖ ਗੁਰਮਤ ਪਾਵੇ ਸੋ ਤਨ ਤਨ ਹਰ ਜਨ ਵਡ ਪੂਰਾ ਜੋ ਕਹਿ ਬੈਰਾਗ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੋਹ ਫੇਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰ ਕਾ ਕਹਿਆ ਨਾ ਚਿਤ ਧਰੈ ਕਰ ਆਚਾਰ ਬਹੁ ਸੰਤੋਸ਼ਨ ਚੈ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਨਰਕ ਪੜੈ ਏਕੋ ਸ਼ਬਦ ਏਕੋ ਪ੍ਰਭ ਵਰਤੈ ਸਭ ਏਕਸਤੇ ਉਤਪਤ ਚਲੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਜਾਏ ਰਲੈ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਆਪਣਾ ਸਾ ਲਾਏ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਮੁਖ ਮਸਤਕ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਹਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਹਰ ਦੇ ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਲੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਮਾਏ ਵਸਾਏ ਦੁਖ ਅਨੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਏ ਆਪੇ ਸਾਚਾ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਲਾਏ ਪਿਆਰ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਆਧਾਰ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸੱਚਾ ਨਨਾਏ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਸੋਈ ਭਗਤ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੈ ਸਭ ਕੁਰਬਾਣਾ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਸਕ ਰਸਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਗੁਰਮਤ ਲਿਵ ਉਨ ਮਨ ਨਾਮ ਲਗਾਨ
अमृत रस पिया गुर शब्दी, हम नाम मिटो कुर्बान। हमरे जग जीवन हर प्राण, हर ऊतम रिद अंतर भायो, गुरु मंत्र दियो हर कान रहाओ। आवो संत मिलो मेरे भाई, मिल हर हर नाम बखान। कित विद क्यों पाये प्रभु अपना, मोको करो उपदेश हर बान। सत संगत में हर हर वसिया, मिल संगत हर गुण जान। वड्डे पाग सत संगत पाई, गुर सतगुर परस भगवान। गुण गावे प्रभु अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान। जन नानक को गुर कृपा भारी, हर नाम दियो खिन गान। अरवाती महला चौथा, उगवे सूर गुरु मुखर बोले, सब रैन संभाले हर गाल। हमरे प्रभु हम लोच लगाई, हम करें प्रभु हर पाल। मेरा मन साधु तूर जवाल, हर हर नाम दृढ़ायो गुरु मीठा। गुर पद चारे हम बाल रहाओ, साकत को दिन रैन अंधारी। मुल्फा थे माया जाल, खिन पल हर प्रभ हृदय न वस्यो। रिन बादे बहु विदबाल, सत्संगत मिल मत बुद पाई। हौ छूटे ममता जाल, हर नामा हर मीठ लगाना। गुर की ये शब्द निहाल, हम बारिक गुर अगम गुसाई। गुर कर कृपा प्रतपाल, दिख पौ जल डुबदे काढ लियो प्रभ। गुरु नानक बाल गोपाल, प्रभाती महला चौथा। एक खिन हर प्रभ कृपा धारी, गुण गाए रस प्रतीक। गावत सुनत बहु कहे मुक्ते, जिना गुरमुख खिन हर पीक। मेरे मन हर हर राम नाम रसतीक, गुरमुख नाम शीतल जल पाया। हर हर नाम पिया रस जीक रहाओ, जिन हर हृदय प्रीत लगानी। तिना मस्तक उजल टीक, हर जन शोभा सब जग ऊपर। ज्यो विच उडवा सस टीक, जिन हर हृदय नाम न वस्यो। तिन सब कारज फीक, जैसे सिगार करे देह मानुख। नाम बिना नकटे नकीक, कट कट गुनैया रमत राम राए। सब वर्ते सब मैं एक, जन नानक को हर कृपा धारी। गुर बचन ते आयो करी नीक, प्रभाती महला चौथा। अगम दयाल कृपा प्रभधारी, मुख हर हर नाम हम कहे। पतित पावन हर नाम ध्यायो, सब किलबिक पाप लहे। जप मन राम नाम रव रहे, दीन दयाल दुख पंजन गायो। गुरमत नाम सदार्थ लहे रहाओ, पाया नगर नगर हर बसयो। मत गुरमत हर हर सहे, शरीर सरोवर नाम हर प्रगत्यो। कर मंदर हर प्रभ लहे, जो नर परम परम उद्याने। ते साकत मूड मोहे, जो मृग ना भी बसे बास बसना। त्रम त्रम्यो चार गहे, तुम वड अगम अगाध बोध प्रभ। मत देवो हर प्रभ लहे, जन नानक को गुर हाथ सिर करयो। हर राम नाम रव रहे, प्रभाती महला चौथा। मन लागी प्रीत राम नाम हर, हर जप्यो हर प्रभु वडपा। सतगुरु बचन सुखाने हीरे, हर तारी हर प्रभु कृपा। मेरे मन पज राम नाम हर निमखफा। हर हर दान दियो गुरु पूरे, हर नामा मन तन बसा रहाओ। काया नगर वस्यो कर मंदर, जप शोभा गुरमुख करपफा। हलत पलत जन पै सुहेले, मुख उजल गुरमुख तरफा। अनपौ हर हर हर लिव लागी, हर उर्धार्यो गुर निमखफा। कोट कोट के दोख सब जन के, हर दूर किए एक पलफा।
तुमरे जन तुम ही ते जाने, तब जान्यो जन से मुखा, हर हर आप करो हर जन में, जन नानक हर प्रभ इक्फा। सर्वाती मैला चौथा, गुर सत गुर नाम दृढ़ायो हर हर, हम मोए जीवे हर जपिबा, तन तन गुरु गुर सत गुर पूरा, दिख दुख दे बाह दे कडबा, जप मन राम नाम हर भाबा, उपजम तो उपाय न पाइए कतहु, गुरपूरे हर प्रभ लाबा। रहाओ राम नाम रस राम रसायन, रस पिया गुरमत रसदा, लो मनूर कंचन मिल संगत, हर उर्धार्यो गुर हरवा। हौ मैं बिखिया नित लोभ लुवाने, उत्कलत मोह लुभबा, तिन पग संत न सेवे कबहू, ते मन मुख पूंगर परदा। तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो, हम करे हार तुम शरणवा, ज्यो जानो त्यो राखो स्वामी, जन नानक दास तुम नवा। सत्ता पहला प्रभाती, विपास करताल महला चौथा, इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। जप मन हर हर नाम निधान, हर दरगे पावे मान, जिन जपिया ते पार प्राण। रहाओ सुन मन हर हर नाम कर ध्यान, सुन मन हर कीरत अठ न जान, सुन मन गुरुमुख पावे मान, जप मन परमेश्वर प्रधान, छिन खोवे पाप कुटान, मिल नानक हर भगवान। प्रभाती महला पंजवा, विपास इको ओंकार सतगुर प्रसाद। मन हर किया तन सब साजिया, पंच तत् रच जोत निवाजिया, सहजा तरत बर्तन को पानी, निमख न विसारो सेवो सारंग पानी। मन सतगुर सेव होए परम गते, हरख सोगते रहे निरारा, का तू पावे प्राण पते। रहा कापड़ पोग रस अनक पुंचाए, मात पिता कुटंब सगल बनाए, रिजक समाहे जल थल मीत, सोहर सेवो नीता नीत, कहां सखाई जै कोई न होवे, कोट अपराध एक खिन में धोवे, बात करे नहीं पछोतावे, एका बक्स फिर बहुर ना बुलावे, किरत संजोगी पाया भाल, साध संगत में बसे गोपाल, गुरमिल आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहो मुरार। करवाती महला पंजवा, प्रभ की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन के पंडार, गुण गावे प्रभ दर्श प्यार। तुमरी पगत प्रभ तुम्हें जनाई, काट जेवरी जन लिए छुड़ाई। रहा जो जन राता प्रभ के रंग, तिन सुख पाया प्रभ के संग, जिस रस राया सोई जाने, देख देख मन में हैराने, सो सुखिया सब ते उत्तम सोए, जा के हृदय वसिया प्रभ सोए, सोई नेचर आवे न जाए, हम दिन प्रभ के हर गुण गाए, ताको करो सगल नमस्कार, जाके मन पूरन निरंकार, कर कृपा मोय ठाकुर देवा, नानक उदरे जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन होए आनंद, हाथ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कल मल जाहे, इस गुर की हम चरनी पाहे। सुमत देवो संत प्यारे, सिमरो नाम मोहे निस्तारे। राव जिन गुर कहया मार्ग सीधा, सगल त्याग नाम हर गीदा, तिस गुर कै सदा बल जाइए, हर सिमरन जिस गुर ते पाइए। बूढ़त प्राणी जिन गुरे तराया,
जिस पर साध मोह है नहीं माया, हलत पलत जिन गुरे सवारिया, इस गुर ऊपर सदा हो वारिया, महामुक्ते किया ज्ञानी, गुर पूरे की अकट तवानी, पार ब्रह्म नानक गुरुदेव, वडे पाग पाये हर सेव, प्रभाती महला तन्यवा, सगले दुख मिटे सुख दिए, अपना नाम जपाया, कर कृपा अपनी सेवा लाए, सगला दुर्त मिटाया, हम बारिक शरण प्रभ दयाल, अवगण काट किए प्रभ अपने, राख लिए मेरे गुरु गोपाल, राव पाप पाप बिन से किन भीतर, तहे कृपाल गुसाई, सास सास पार गम अरादी, अपने सतगुर के बल जाई, अगम अगोचर बियंत स्वामी, ताका अंत ना पाये, लाहा खाट हो ये तनवंता, अपना प्रभु ध्याये, आठ पैर पार ब्रह्म त्याई, सदा सदा गुण गाया, कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ, पार ब्रह्म गुर पाया, प्रभाती महला पंजवा, सिमरत नाम किल बिकसग नासे, सच नाम गुर दीनी रासे, प्रभ की दरगे शोभा वंते, सेवक सेव सदा सोहंते, हर हर नाम जपो मेरे भाई, सगले रोग दोष सब बिनसे।

पाए भगत हर सो मन माना। सुन सज्जन संत मीत सुहेले, नाम रतन हर अगै अतोले। सदा सदा प्रभ गुण निध गाय, कहो नानक वड पागी पाई है। प्रभाती महला पंजवा, से तनवंत सोई सच साहा। हर की दरगह नाम विसाहा, हर हर नाम जपो मन मीत। गुरपुरा पाई है वड पागी।

पार ब्रह्म प्रभु सुगुण सुजान गुरपुरा पाये वडबागे दर्शन को जाये पुरबान रहाओ किलगित में ते शब्द संतोख नाम आराधन हो आजोग साध संग हो आ प्रगास चरण कमल मन माए निवास जिनकी आकिन लिया राख प्रभु पूरा अनाथ का नाथ जिसे निवाजे कृपा धार पूरन कर्मता के आचार गुण गावे नित नित नित नवे लख चौरासी जोन न भवे इहा उहा चरण पुजारे मुख उजल साचे दरबारे जिस मस्तक गुर तरिया हाथ कोट मदे को विरला दास जल तल मैयल पेखे परपूर नानक उदरस तिस जन की दूर प्रभाती मैला पंजवा कुर्बान जाई गुर पूरे अपने जिस प्रसाद हर हर जप जपने।

गुर गुर करत सदा सुख पाया, दीन दयाल पहल तुरपाला, अपना नाम आप जपाया रहाओ। संत संगत मिल पया प्रगास, हर हर जपत पूरन भैयास, सर्व कल्याण सुख मन बूठे, हर गुण गाए गुरु नानक तूठे।

राम राम राम राम जाप, कल कलेश लोभ मोह बिन सुजाए अहंताप। रहाओ आप त्याग संत चरण लाग, मन पवित्र जाहे पाप। नानक बालक कछु न जाने, राखन को प्रभु माई बाप। प्रभाती महला पंजवा, चरण कमल शरण टेक। ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, सर्व ऊपर तू ही एक। रहाओ प्राण आधार दुख बिगार, दैनहार बुद्ध विवेक। नमस्कार रखनहार, मन आराध प्रभु मेक। संत ऋण करो मज्जन, नानक पावे सुख अनेक।

हम कर कपट महा दुख पाए, सतगुरु को कैसो जी पाए, सच्चे नाम रहे लिवलाए, सच्चे शब्द सच कमावे, सच्ची बाणी हर गुण गावे, निज कर वास अमर।

बिन सतगुर के ते कोई न जानी, सगल सरोवर जोत समानी, अनद रूप वितों कुर्बानी, पाओ पगत गुरमति पाए, हों मैं विच्चों सबद जलाए, तावत राथें ठाक रहाए, सच्चा नाम मन वसाए, जिस्म बिनोद रहे परमादी, गुरमत

जीवन मुक्त जा शब्द सुनाए, सच्ची रहत सच्चा सुख पाए, सुख दाता दुख नेता हारा, अवर न सूजस भी जी कारा, तन मन तन हर आज्ञा राख्या, नानक कहे महारस चाख्या, प्रभाती महला पहला, निवली करम पुलंगम पाथी, रेचक पूरक कुंभ करे, बिन सतगुर किछ सोजी नाही, पर में पूला बूढ़ मरे, अंधा परया पर पर कोवे, अंतर की मलक दे ना लहे, नाम बिना फोकट सब कर्मा, जो बाजीगर परम पुले, खट कर्म नाम निरंजन सोई, तू गुण सागर

बाद ओ परम पूले मरो न कोई सतगुरु श्री सदा सुखोई बिन सतगुरु मुक्त किने न पाई आवे जाए मरे

क्यों पयाल जाए क्यों चलिए जे बल रूप पछाने राजा जनमेजा दे मती ब्रज व्यास पराया तिनका जग अठारह काए कीर्तना चले चलाया गणत न गनी हुकम पछाना बोली पाए सुवाए जो किस वरते तुरे सवाही सब तेरी वडियाई गुरमुख अलिपत लेप कदे न लागे सदा रहे शरणाई मनमुख मुगद आगे चेते नाही दुख लागे पछताई आपे करे कराए करता जिन ए रचना रचिए हर अभिमान न जाए जियो अभिमानी पै पचिए फुलन विच किया सब कोई करता आप न

अंकर झूठा क्यों सुच होए, सब दी तो वह विरला कोए, गुरमुख कोई सच कमावे, आवन जाना था कहावे।

हर जस कर्म तरम पत पूजा, काम क्रोध अग्नि में पूजा, हर रस चाख्या तो मन पीजा, प्रणवत नानक अवर न दूजा, प्रभासी महला पहला, राम नाम

शीतल गुरु बूझ बुझाई, प्रभ निवाजे किन कीमत पाई, कहो नानक गुरु बूझ बुझाई, नाम बिना गत किने न पाई, प्रभाती महला पहला।

आई, बिन सत बार ना लागे काई रहाओ। मन मुख को दुख दर्द भी आपस, मन मुख दुख ना जाई, सुख दुख दाता गुरमुख जाता मेल ले शरणाई। मन मुख ते अब पगत ना होवस, हौ मैं पचे दीवाने इहो मनु आखिन ऊब प्याली। जब लग शब्द ना जाने, भूख प्यासा जग पया, तिपत नहीं बिन सतगुरु पाए। सहज सहज मिले सुख पाइए, दरगह पैदा जाए, दरगह दाना बिना एक आपे। निर्मल गुरु की बाणी आपे, सुरता सच विचारस आपे, बूझे पद निर्माणी। जल तरंग अग्नि पवने पुन।

जातवरम से सह अपीता ममता लोभ चुकाया नाम रते तीर्थ से निर्मल दुखों में मैल चुकाया नानक तिनके चरण पखाले

ज्ञान रतन प्रगट होए, मन मुख मूल न जाननी, मानस हर मंदर न होए, हर मंदर हर जियो साजिया, रखिया हुकुम सवार, तुर लेख लिखिया सो कमावना, कोई ना मेकन हार, सबद चीन सुख पाया, सच्चै नाए प्यार, हर मंदर सब देशो होना, कंचन तोट अपार, हर मंदर एहो जगत है, गुरबिन कोरंतार, दूजा पाओ कर पूज दे, मन मुख अंग गवार, जिथे लेखा मंगिए, तिथे दे जात ना जाए, सात रते से उबरे, दुखिए दूजे भाए, हर मंदर में नाम निधा

पवित्र पावन सुजन निर्मल हर के नाम समाए, हर मंदिर हरता हाथ है रखिया शब्द सवार। इस विच सौदा एक नाम गुरमुख लैन सवार, हर मंदिर में मन लोहत है मोया दूजे भाए। पारस पे पै कंचन भया कीमत कही न जाए, हर मंदिर में हर वसे सर्व निरंतर सोए। नानक गुरमुख बन जिए सच्चा सौदा होए, प्रभाती महला की जा तै पाए जागे सुजन जागरण करें। हो मैं मेल उतार सदा जागे कर।

गुरमुख सहज तुन उपजे, दुखों में विच्चों जाए, हर नामा हर मन वसे, सहजे हर गुण गाए, गुरमुख की मुख सोने, हर राख्या उर्धार, एते ओते सुख गणा,

सुहोग विपास प्रभाती मैला पन्यवा अष्टपदिया इको अंकार सतगुरु प्रसाद। मात पिता पाई सुत बनता चूगे चोग आनंद स्यों जुगता उर्ज परयो मन मी

लाए तू ठाकुर इहो गृह सब तेरा कहो नानक गुर किया निबेरा प्रभाती महला पंजवा मन में क्रोध

अंतर कपट फिरे बेताला, वर्मी मारी साप न मुआ, प्रभु सब कुछ जाने जिन तू किया, तू वरताप गेरी के बस्तरा, अपदा का मारिया दे के नस्ता, देश छोड़ पर देश धाया, पंच चंडाल ना ले।

छोड़ बद नजर पर नारी वेश ना पाये मह दुखियारी बोले नाही हो बैठा मोनी अंतर कल्प पवाई है जोनी अन तेरे ता दुख देही सहता हुकुम ना बूझे व्याप्या ममता बिन सतगुर किने न पाई परम गते पूछो सगल वेद सिमरते मन मुख कर्म करे अजाई जो बालू कर ठौरा ठाई जिसनो पै गोविंद दयाला गुर का बचन तिन बांधियो पाला कोट मदे कोई संत दिखाया।

होवे पाग का दर्शन पाइए आप तरह सब कुटुंब तराइए रहाओ दूजा प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किलद सब काटे धर्म राय के कागर पाते साध संगत मिल हर रस पाया पार ब्रह्म रिद माए समाया राम रमत हर हर सुख पाया।

जन्म जन्म का टूटा गांडा जब कब संजम नाम समा लिया, अपने ठाकुर नगर निहा लिया, मंगल सुख कल्याण तिथाई। जय सेवक गोपाल गुसाई, प्रभु सो प्रसन्न तय गोपाल, जन्म जन्म के मिटे विताल, होम जग उर्द तप।

भरपूर मात पिता हर प्रीतम मेरा मीठा जन भरवासा तेरा कर गय लीने अपने दास जप जीवे नानक गुणतास विपास करवा।

जो जन जान बजे पुरखोत्तम काची अवगत बाणी नामा कहे जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी परवाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत ना जानिया

हृदय अंतर कर तलकाती ठग दुष्ट बगा लिव लागा देख बैसनो प्राण मुख भागा कल भगवत बंद चिरामं क्रूर दुष्ट रता निष्बादं रहाओ।

तिल पूजस चक्र गणेशं निस्जागस पगत परवेशं पग नाचस चित्त अकर्मं एलं पट नाच अधर्मं मृग आसन तुलसी माला कर उजल तिलक कपाला हृदय कूर कंठ रुद्राथं रे लंपट कृष्ण अवाथं जिन आत्म तत्व न चीनिया सब फोकट धर्म अवीनिया कहो बेणी गुरुमुख त्यावे बिन सतगुरु बाप न पावे।

राम भज जन्म सिरात है, कहो कहा बार बार समझत नह क्यों गवार, बिनसत नह लगे बार पूरे समगात है रहाओ। सगल परम डार दे गोविंद को नाम ले,

आत है। जय जावंती मैला नावा। रे मन कौन गत होए है तेरी, ए जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान।

का विनोद सुत कतंच भात मीट हित बंध कतंच मोह कुटुंबत कतंच चपल मोहनी रूपं ते खंते त्यागं करोत रहं।

धने दयाल एक भगवान पुरखे नानक सर्व जीत पाल के अनित्य वित्तं अनित्य चित्तं अनित्य आशा बहुविध प्रकारं अनित्य हेतं अहं भं अहं बंधं भरं।

अंधकार सिमरत प्रकाशन गुण रमत अग खंडने ऋद बसंत बैधीत दूते कर्म करत महानिर्मले जन में मरण रहंत श्रोता

बते विपरीत बुद्धिं मारत लोकै नानक चिरंकाल दुख भोगते।

अजाभोदंत कंद मूलं बसंते समीप कुल हरे तत्र गते संसारिणान सोग हर्षं व्यापते छलं छिद्रं कोट विघ्नं।

गुसाई दृश्य रूपेण सिमरण सर्वत्र जीवन लब्धं संत संगेण नानक स्वस्थ मार्ग हर भक्तन मस्तं भगनंत शैलं कर्दमं तरंत पपीलक

प्याल खरे विखम स्थान मन मोह मदर महा असाद पंच तस्करे हित मोह भय भर।

बादन आवर्त एते सुत अक्षणे गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोन मतन बलवंत बलात्।

मजारुगर दुर्गंधा नानके अथ गर्भेण अज्ञानड़ो परमाणु पर जंत आकाश है।

तदेन चित्तो जाता अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग कितो। अपजसन मिटंत सत पुत्र सिमर तवर गए।

जग में चेत्यो जान के जग में रहो समाए जिन हर का नाम न चेत्यो बादे जन्मे आए। कबीर आशा करिए राम की अवरे आस निराश नरक परे।

लागी मंदर द्वार से अब क्या काढ़िया जाए। कबीर कारण सो भयो जो कीनो करतार तिस दिन दूसर को।

काल पाछे कछु न होए बा जो सिर पर आवे काल। कबीर ऐसा जंत इक देखिया जैसी तोई लाख, दिसे चंचल बहुगुना मत हीना ना पाक। कबीर मेरी बुद्ध को जम ना कर।

परे हर सिमरी है ऐसा सिमरो नित अमरा पुरबासा करो हर गया बहोरे बित कबीर सेवा को दोए भले

कबीर राम रतन मुख को तेरी पारख आगे खोले कोई आए मिले दो गाती ले दो महंगे मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं पाल्यो कटक कुटुंब संदेही ने मर गयो बाहर पई न बंब। कबीर आखी केरे मात के पल पल गई बिहाए

जीवन के पंछी चले दिसावरी बिरखा सुकल कलंक। कबीर साधु संग परापति लिखिया होए लीलात, मुकुट पदार्थ पाये खाक न अवगत काट। कबीर एक करी आदि करी आदि हूँ ते आदे भगत।

खेलत खेलत हाल करे जो कुछ होए ता होए कबीर जो तुहे खाद तिरंगी ताके से तू खेले काठी सरसों।

हल डूंगर पवे होवन अज करी दे कूजड़ा सै को माखी ओम राती वड्डियां सुख उठन पास सिज दिना दा जीरिया दिना विदानी आस सरीदा जे में होंदा वारिया नित्ता आयरिया खेड़ा जले

कंध कुहारा सिर कड़ा वन के पर लोहारे खरीदा हो लोड़ी सो अपना तू लोड़ है अंगियार खरीदा इतना आटा।

फरीदा खालक खलक में खलक वसे रब माही मंदा किसनो आखी है जा किस दिन कोई नाही फरीदा जे देह नाला कपया जे गल कपे दुख पवन ना इकी मामले सहा ना इकी दुख चबन चलन रतन से सुनियर बह गए हेरे मिट्टी पाके जानी चल गए फरीदा बुरे दा पला कर गुस्सा मन न हंडा।

नौबत वजी सुबह क्यों चलन का प्रसाद फरीदा रात पूरी वंडी है सुतिया मिले न खाओ जिना नैन निंद्रावले तिना मिलन को आओ

छोड़ा सिसरक बने तीर फरीदा कच्चे कांडे रखिए किचर ताई नीर फरीदा मैल

मामल आखी से था बंदगी चलन अज के कल खरीदा मोतैदा बन्ना एवें दिसे ज्यों दरिया वैता अगे दोजक तपिया सुनिए हूल पवे कहा इतना नू सब सोजी आई इक फिर देवे करवा।

रब न छोड़न पास फरीदा रुत फिरी वन कंबिया सप चढ़े चढ़ता है सारे कुंडा टूंडिया रहन किताऊ नाही फरीदा पार पटोला सज कर कंबलड़ी पहरे ओ जिनी वेसी सौ मिले तेरी वेस करे ओ महला तीजा काय पटोला पारती कंबलड़ी पहरे नानक कर।

पावने जिना विसारे नाओ कैसे दुख कनेरिया अगे थौर न छाओ फरीदा पिछल रात ना जाग्यो जीवन दरो मोयो ए जे तैं रब विसारिया ता रब ना विसरियो ए महला पंजवा फरीदा कंत रंगावला वड्डा ने मुहताज।

क्या चले नाले इक जा बंदे नाल हैं कितना सुतिया दे उठाल तू देंदी ए सुहाग तू तो तन काई कोरे जिन्ना नाव सुहागनी तिन्ना छाप न होर सबर मंज कमान।

सिर तल उत्तर पाए। मैं जानिया वधंस है पाने की पासंग, जो जाना बग बपुरा जन्म न पेड़ी अंग। क्या हंस क्या बगुला जाको नदर करे जे किस पास।

तो कमल को अखर कहाँ गुणे कमल को मणिया मनते कमल को वे सोहा करी जित वस आवे तंते निमन को अखर खवन गुणे जो बा मणिया मनते।

निपाणा अणहोंदे आप वंडाए को ऐसा भगत सदाए एक सिक्का ना गालाए सबना मैं सच्चा तनी याओ न कही ठाए मानक सब अमोल वे सबना मन

आन नहीं तुम भते हर अंत नहीं पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दर तुले ब्रह्म संसार एक दिन क्या बखाने हाके बल बल बल बल सद बल हार अमृत प्रवास हर अतुल भंडार भर परे ही ते परे अपर अपार पर आपनो भावन कर मंत्र न दूसरो धर उप तो कर लो एक निमक तो घर आन नई समसर उजियारो निर्मल कोट पर छते जाए नाम लिए हर हर जन नानक भगत दल कुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हाके बल बल बल बल सद बल हार।

जन नानक भगदर तुल ब्रह्म समसर ए जी क्या बसन है हाके बल बल बल बल।

निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी हर्षवंत आनंद रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं।

धन धन ते धन जने जे कृपाल हर हर भयो हर गुरु नानक जिन परसो से जन्म मरण दो ते रहो सत सत हर सत सत सत सत भणिए दूसर आन न आवर पुरख पुरातन सुनिए अमृत हर को नाम लेत मन सब

हर तारन तरन समरथ सवैद कुल समूह उदाहरण सो चित चेत अचेत जान सत संगते भरम अंधेर मोयो कत भो मूरत घड़ी सापल सिमरन राम नाम रखना संगलो होतो काज अलग सुख बंधन कोट जन्म कहां दुख भाव सिखा संत नाम भजनान के राम रंग आत्म स्योरो रंच करे खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार भरी खान पान सोधे सुख भुंचत संकट काट विपत हरी मात का भाई अर बंधते बूझन के सब सोज परे बरमान होवत दिन प्रतिनित आवत निक

नानक काट भरम भरी। रे मनमूस बिलावे गर्वत कर्तव करत महाम भुना। संपत धौल धूल संग झूलत माया मगन भरमत घुगना। सुत बन का साजन सुख बंदते तासु मो बड़ो सुघना। बोयो भीत अहं मम अंकुर दीपक औध करत अधना। मृत मंजार पसार मुख निरखते भुंचत भुगत भूख भुखना। सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नाम के जगे जानत सुपना। देहे न देहे

विधेय मन दर्स मग पावत जरो न जात रहो जन धूर लग नींद न साकस बोर चले हर पंथ मगे नानक रोग दुख अगमो छिदे हर नाम खग उदम कर लागे लौ भाती बिचरे अन शास्त्र बौ खटुआ भस्म लगाए तीरथ बौ भ्रमते सुखम दे बंधे बहु जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावते जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका अनक भात फाटे कर खटुआ सोये मले तले ते एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख दयाय वरदाता संत सहार सदा दिखयाता

कारण चार खट दर्शन ब्रह्मागत समरंथ गुणाम गावे गुण शेष सहस जेदा रस आद अंत ले।

भगत दीन गुण रही सहज आत्म रंग माणे, योग ध्यान गुरु ज्ञान बिना प्रभ और न जाने। सुखदेव परिखत गुण रहे गौतम रिख जस गायो, कब कल सुजस ना।

सतसंगत सहज सारे जागे ले गुर बिचारे निमरे भूत सजीव परम प्यारे कौ तीरथ कल सहारे सतत दीप मझारे लेना जगत गुर पर मुरारे तै तो दर्यो नाम अपारे बिमल जास बिखारे साधक सिद्ध

लैणा जगत गुरु पर समुरार। दृष्ट धरत तम हरन दहन अघ पाप परासन। सबद सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन। लोभ मोवस करण शरण जाचिक प्रतपालन। आत्मरत संग्रहण कहन अब

गरल नाश कन न थियो अम्यो अंतरगत पियो रुद बिना सजागयो अलग कल धरी जुगंतर सतगुरु सहज समाद रहो सामान निरंतर उदारो चित दारद हरन तिखंते कलमल प्रसन्न सब रंग सहज कल उचरे जस जमतो लेने रसने नाम औखद नाम आधार अर नाम समा

नाम परस जन पायो सत प्रगट हो रवलो। दर्शन परसे गुरु कै अब सठ मजन हो, सच तीर्थ सच स्नान और भोजन भाव सच, सदा सच भाषंत सो है सच पायो गुरु सबर, सच नाम सुगंती बो है जिस सच संयम वर्त सच।

अण हमें दृष्ट शुभ करे हरे अघ पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वश करे सदै बल सदा सुख मन वसै दुख सन

की जय। को एक ओंकार सद्गुरु प्रसाद सोए पुरुष वरसाचा जाता एक नाम असल संसार जुम भगत भव

तीरत रव तिर कर संसारे साथ सरोवर मवल सरा। उत्तर दक्षिण पुग अर पश्चिम जय जयकार जपंत नरा। हर नाम रसन गुरुमुख बर।

सतनाम गुरु गंभीर गुरु मत सत कर संगत दरिया सोई नाम अचल भगत भाव तारन अमरदास गुरु को पुरिया नाम कित संसार किरण रहो सुतर साथे उत्तर दक्षिण पूब देश पश्चिम जस भाके जन्म तयो सके अत जित नाम हर दे निवासे सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन आशा से भलो प्रसिद्ध तेजो तनु कल जोड़ कर ध्यायो सोई नाम भगत वच भव जल हरन गुर अमरदास तय पायो नाम ध्यावे देव कैपीश अर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मंड धारे जय नाम समाधयो हरक सोग समतर सहारे नाम शिरोमण सर्वमयी भगत रह निवधार सोई नाम परार्थ अमर गुरु तुस दियो करकार सत सूरो शील बलवंत सत भाय संगत सघन गुरु मत निर्वैर लिया जिस धीरज धुर धवल

सुख पायो अमर गुर की खोजो। नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाय मुख मिष्ट बाणी। धन सतगुण सेवे जिस पसाए गत

चरण तपर सकत चरण गुर अमर पवल हथ तपर सकत हथ लगे गुर अमर पे जी तपर सकत जी गुर अमर भरजे

सरवणी गुर अमर सुन जय सत सोहियो जित ही बसे गुरु अमरदास निज जगत पिते सत्यत सो सुर जालक भणे जो सुर ने गुर अमर निते ते नर दुख

से नर उठत बिथते सुख लेते नर संसार में अभय पट रिद में बिते सत्यत ते नर जालत भणी गुर अमरदास सो पर समझे तई पढ़ियो एक मन धर्यो एक कर एक पछाण्यो नैन बैन मोह इते एक भोए थाए न जानियो सुपन एक पर तख एक इकस में नीनो ईस एक अर पंज सिदे नै तीस न थीनो इको जे लाख लखो अलख है एक एक कर वन्यो गुरु अमरदास जालक भणे तू एक लोणे एक मन्यो जे मत गई जय देव जे मत नामे समाणी जे मत लोचन चित

गुर अमर रास निज भगत है, देख दर्श पावो मुकते। गुर अमर दास परसिए कहुं पाछ बिनासे। गुर

सनाओ ज्ञान है आसन करो धर्म धनक कर गयो भगत शील है सर लड़ो धन गौहर अटल मन सबक गुरु ने जाग लो काम क्रोध लोभ मोह अपत

सतगुरु सेव परम पद पायो अविनाशी अवगत ध्यायो। किस भूखे दारिद्र न चमते कल सहारता।

नाम निरंजन उर धरया। हर नाम रसक गोविंद गुण गाहते, चाहत तत समत सरे, कब कल ठकर हर दासने, गुरु राम दास सर अबर भरे। छूटत प्रवाह अमेव अमरात, अमृत सरोवर सद भरया। ते पीरे संत करे मन मज्जन, उबजनो सेवा करिया। तिन भव निवार अनभय पद दीना, शब्द मात्र ते उधर धरे। कौन कर्ण शकुन हर दास तने, गुरु राम दास सर अवर भरे। सतगुरु मत गूढ़ बिमल सत संगते, आत्म रंग चलूल भया। जागा मन कवल सहज परगासा, अभय निरंजन घरे लहा। सतगुरु दयाल हर नाम दिलाया, इस पर साधवस पंच करे। कल कल ठाकुर हर दास तने, गुरु राम दास सर अभर भरे। अनुभव अनुमान अकल लिव लागे, पारस भेटिया सहज घरे। सतगुर प्रसाद परम पद पाया, भगत भाए भंडार भरे। मेटिया जन मंत्र मरण भव, भागा चित लागा संतोष सरे। कब कल ठकुर हर दास तने, गुरु राम दास सर अबर भरे। अबर भरे पायो अपार अंतर धारियो, दुख भंजन आत्म प्रबोध, मन तक

भरत परवासी तुम पुबली न होते सतगुर शब्द अथाओ अम्यो धारा रसगुत्ते मत माता।

सतगुरु नाम एक लेव मन जप दृष्ट जन दुख पास पौकत हो जियो तारण करण छिन मात्र जाको दृष्ट धारे सब हृदय विचारे काम क्रोध खोवे जियो जीवन शब्द दाता अगम

पावे। गुरमुख ध्यान दुर्मत मैल धोवे जियो। सतगुण नाम एक लिव मन जते, जिन जन दुख पाप को

साध मुन जन सुर नर जाती सबद सार एक लेव लाई है। सुन जाने को तेरा अपारे निर्भव निरंकारे अकथ कथन हारे तुझे बुझाई है। भर्म

नाम सो अपार सार दीनो गुरुद धरे नल तो पारस परस कच कंचना हुए चंदना सुबास जास सिमरत अन करे जाके

गुरु गुरु ऐनस जाते दास भट बेनत कहे जो गुरु नाम रिद में धरे सो जन्म मरण दो ते रहे गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे गुर कर सच बिचारे गुर करे मन मेरे गुर कर शब्द सुपन अघन कटे सब तेरे गुर नैन भैन गुर गुर करो गुरु सत कब नल कै जिन गुरु न देखो न कियो ते अकथ संसार में गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारण तरण समर्थ कलयुग सुनत समाद शब्द जिसके रे सुन दुखन नाश सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान बस्त तैने रे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाए परे रे जो हर बुध हृदय सिद्ध चाहती गुरु गुरे गुर कर मन मेरे गुरु मुख देख गरु सुख पायो होती जो प्यास प्यो सेवन की बंसत सिद्ध को विद मिलायो पूरन भवन ठौर बसोरसे बासन सुजो दंस धायो गोविंद वाल गोविंद पुरी समझलन तीर विवास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख दे गुरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अघन हरो निसबासुर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत भांडरो भन दास तो आस जगत गुरु की पारस भेत परस करो रामदास गुरु हर

ज्ञानियों शब्द हर हर जते नाम नवनिध आते रसन ऐनित रसे सत कर जानियों सुनु प्रेम रंग पाइए गुरमुखे ध्याइए अनमार्ग तजो भजो हर ज्ञानियों वचन गुरु रिद धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानियो जो तो सब सुख इत उत

गुरु जप सत कर अगम गुण जान निधान हर मन धरो ध्यान ऐस करो बचन गुरु हृदय धर सुन गुरु जल बिमल अथा मजन करो संत गुरु सिख करो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निर्भव जपे प्रेम गुरु शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुगद मन भ्रम तजो नाम गुरु मुख भजो गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु जप सत कर।

गुरु मिलत मुन जन रे तरे नार दाद सन काद हर गुरु मुखे तरे एक नाम लग तजो रस अन

परमानंद गुरुमुख कयन पर तख दे पार ब्रह्म स्वामी आदि रूप पोखण भरण सतगुरु गुरु से।

जग जन्म मरण भगाए आई ही ए परतीत ही ए आई जिन जन के

अवलोका ब्रह्म भरम सुब छुटका, अवलोका ब्रह्म भरम सब छुटका, दिव दृष्ट कारण करण सतगुरु गुरु से।

करें प्रभात शुद्ध मन गुरु पूजा दिद सहित करन। कंचन तन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपे ध्यान धरन। जग जीवन जगन्नाथ जल थल मेरिया पूर्व विद वरनं। सतगुरु गुरु सेव

तिन तरियो समुद्र रुद्र खिन एक में जल हर बिंब जुगत जग रचा। कुंडली सुरजी सत संगते परमानंद गुरु मुख मचा। श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन

ओ बले छलन सबल मलन भंग फलन कान कुर करंत बजी डंक चढ़ दल रविंद नियो राम रवण दुर्त दमन सकल भवन कुशल करण सर्व भूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जरम करम मच्छ कच हो बराय।

सच जान मंत्र एह नित बासुर कल्याण लहे परम गत दियो काम क्रोद लोभ मोह जन जन संसार धो हमें का फल काट साध संग रत जियो देह गे ते सने चित बिलास जगत एओ चरण कमल सदा सेओ दृढ़ता कर मत जियो नाम सार ही धार तजनिकार मन

ही पाता गुरमुख संगत सबे विचारो। वाओ वाओ का बड़ा तमाशा किया खेल बड़ मेल तमाशा। वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन पयाल पूर रहा अमृत ते मीठे जाके बचना। माने ब्रह्मा

सत्संगत से ती मन खचना किया खेल बड़मेर समासा वाहे गुरु तेरी सब रचना अगम अनंत अनाद।

गुर समरथ गय किरिया धूप बुध सुमत समारन को उन धम दूजा फैरंत सदा अग पुंज तुरंग निवारन को मथुरा जन जान कहीं जय साज तू और कर।

पूरन सब संग प्रगट तिन आदर। गहर गंभीर अथायत वन सुबर सदा सब विद रतनागर। संत मराल करे संतु हल तिन जम प्रास मिट्यो दुख का।

ध्यान धरे फिरत सगल जुग कभू को पावे आत्म परदास को। वेद बाणी सहत ग्रंथ जस गावे जाको शिव मुन जैना सजात कबिलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप गदा झूठ भेद किए फिरत उदास को। सोतम सतगुण सुख भाए।

तेज पुंसै लोक प्रजा से देखत दर्श भटत भ्रम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत लुभते अल्प मोज कुसुम सुबासे विद्यमान गुर आप थ

जाके बसीस धर्यो गुर हथे। तीन भवन भरपूर रहो सोई, अपन सरस क्यों ना जगत कोई। आपन आप ही उपायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे, असुरे नर गण गंधर्व को जंत फिरे। अविनाशी अचल अजौनी, संभो पुरखो तुम अपार परे। करण कारण समरथ सदा।

आयो। सतगुरु नानक भगत करे एक मन तन, मन धन गोविंद दियो। अंगद अनंत मूरत निज धारी, अगम ज्ञान रस रस हियो। गुरु अमरदास।

तन हर परम पद पायो। नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा उब भगत हर के जुगन, अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा और कबीर भणन, तिनको अवतार।

मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिटियो जो तिणन। बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिटियो जो खिणन। कर्म कर तो दर्श परस पारस बल भट जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तैं हर परम पद पायो। जैसे तु सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन। जय सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जय सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे। जय सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नव निद पावे। सोई रामदास गुण बल भण मिल सन।

ज्ञान प्रगत पुजारो दुख दरिद्र अंधियार को नाशे। कब कीरत जो संत चरण मुण लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास। ज्यो अंगद अंग संग नानक गुर तिम गुरु अमरदास कै गुरु रामदास। जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निस बासुर हर चरण निवास। सांते संगत

जै तिखत अत होए रहस मन सोई। संत सहार गुरु रामदास, नानक नाम निरंजन जानु कीनी भगत प्रेम निवलाई। सांते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन सबद सुरद।

गुर अर्जन घर गुरु रामदास भगत उतर आयो बलधागी उन मानियो

दम भर सहता भय बंजन पर पीर निवारण कल संहार तोए जस भगता कुल सौदी गुरु रामदास तन धर्म भुजा अर्जन हर भगता।

گر ارجن کل چرائے تے جن تے کلس دے پائے سورٹھے گر ارجن

कहे मथुरा अमृत मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन सिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धर्यो आद पुरख पर तथे लिखो अक्षर मस्तक धुरे प्रगट ज्योत जगमगे तेज भूमंडल छायो पारसे परसे परस परस

दुख प्रगट होए। दुख विसारण शब्द है जो मन वसाए कोए, गुर कृपा से मन वसै कर्म प्राप्त होए। नानक हो करते खप मोए, कूहन लख असंख, सतगुर मिले सोबरे साचे शब्द अलंख। जिना सतगुर इक मन सेविया, तिन जन लागो पाए, गुर शब्दी हर मन वसै माया की पुख जाए। से जन निर्मल उजले जे गुरमुख नाम समाए, नानक होर पाप साहिया कूड़िया नाम रते पाप साह। जो पुरख है कर पगति नार है अत लोचे पगति पाए, बौरस सालने सवार दी खट रस मीठे पाए। क्यों बाणी पगत सलां दे हर नामे चित लाए, मन तन तन आगे राखिया सिर वेचिया गुर आगे जाए। पै पगती पगत बहु लोच दे।

0: नाम रतन प्रकाशिया मन तन निर्मल होए। नाम हीन नक्शे फिरे बिन नाम बह रोए, नानक जो तुर करते लिखिया सो मेट न सके कोए। गुरमुखा हर तन खटिया गुर के शब्द विचार, नाम पदार्थ पाया तुत परे भंडार। हर गुण बाणी उचरे अंत न पारा वार, नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार।
1: गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़या दसवें आकाश, तिथे ऊंग न पुख है हर अमृत नाम सुखवास। नानक दुख सुख व्यापत नहीं जिथे आत्म राम प्रगास। काम क्रोध का चोलना सब गल आए पाए, एक उपजे एक बिनस जाए हुक्मे आवे जाए। जम्मन मरण न चुकई रंग लगा दूजे भाए, बंधन बंद भवायन करना कछु न जाए। जिनको कृपा धारियन तिना

मोह हेत है अंत बेली को न सिखाए, सतगुर सेवे सो सुख पाए, नाम वसै मन आए, नानक से वड्डे वड पागी जे गुरमुख नाम समाए। मनमुख नाम न चेतनी, बिन नामे दुख रोए, आत्मा राम न

मनमुख बोले अंगले तिसमें अग्नि का वास, बाणी सुरत न बुझनी शब्द न करें प्रगास, ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुरु वचन ना करें विश्वास, ज्ञानिया अंदर गुरु शब्द है नित हर लिव सदा विकास, हर ज्ञानिया की रख

बिख का मारण हर नाम है, गुर गरुड़ शब्द मुख पाए। जिनको पूरब लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आए, मिल सतगुर निर्मल होया बिख हो मैं गया बिलाए। गुरमुखा के मुख उजले हर दरगे शोभा पाए, जन नानक सदा कुर्बान तिन जो चाले सतगुरु भाए। सतगुरु पुरख निर्वैर है नित हृदय हर लिवलाए, निर्वैर नाल वैर रचाएदा अपने कर लूकी लाए। अंतर क्रोध अहंकार है अंदिन जले सदा दुख पाए, कूड़ बोल बोल नित पौंक दे बिख खा दे दूजे भाए। बिख माया कारण परम दे फिर कर कर पत गवाए, बेसवा के रे पूत ज्यो पिता नाम तिस जाए। हर हर नाम न चेतनी करते आप खुआए, हर गुरुमुख कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए। जन

सतगुर सेवन अपना गुर शब्दी विचार, सतगुर का पाना मन लैन हर नाम रखे उरदार, एथे ओथे मनियन हर नाम लगे वापार, गुरमुख शब्द सियाप दे तित साचे दरबार, सच्चा सौदा खर्च सच अंतर प्रेम प्यार।

जन की टेक हर नाम हर बिन नामे ठवर न ठाओ गुरमती नाव मन वसै सहजे सहज समाओ वडपागी नाम ते आया एहन सलागा पाओ जन नानक मंगै तूर तिन हौ सतगुरु बाणे जाओ लख चौरासी मेदनी तिसना जलती करे पुकार ए मोह माया सब पसरिया नाल चले नांती वार बिन हर शांत ना आवे किस आगे करी पुकार वड पागी सतगुरु पाया बूझिया ब्रह्म विचार तिसना अग्न सब बुझ गई जन नानक हर उरदार असी खत्ते बहुत कमाम दे अंत ना पारा वार हर कृपा करके बख्श ले हो हौ पापी वड गुनहगार हर जियो लेखे वार ना आवे तू बख्श मिलावन हार गुर तुठे हर प्रभ मेलिया सब किल कट विकार जिना हर हर नाम ते आया जन नानक तिन जयकार विछड़ विछड़ जो मिले सतगुर के पै पाए जन्म मरण नहीं चल भये गुरमुख नाम ते आए गुर साधु संगत मिले हीरे रतन लवन नानक लाल अमोल का गुरमुख खोज लहन मनमुख नाम ना चेत्यो तिग जीवन तिगवास जिसना जित्ता खाना पहनना सो मन ना वस्यो गुणतास ए मन शब्द ना पेदियो क्यों होवे करवास मन मुखिया दोहागनी आवन जान मोयास गुरमुख नाम सुहाग है मस्तक मणि लिखियास हर हर नाम उरधारिया हर हृदय कमल प्रगास सतगुर सेवन आपना हो सद बलिहारी तास नानक तिन मुख उजले जिन अंतर नाम प्रगास शब्द मरे सोई जन सिजै बिन शब्द मुक्त न होई पेख करें बहु कर्म विगुते पाए दूजे परज विगोई नानक बिन सतगुरु नाव ना पाई है जेसो लोचे कोई हर का नाव अत वड ऊंचा ऊंची हु ऊंचा होई अपड़ कोई न सके जे सो लोचे कोई मुख संजम हच्छा ना हो वही कर पेख पवे सब कोई गुर की पौड़ी जाए चढ़े कर्म प्राप्त होई अंतर आए वसे गुर शब्द विचार है कोई नानक शब्द मरे मन मानिए साचे साची सोए माया मोह दुख सागर है बिख दुत्तर तरे आना जाए मेरा मेरा कर दे पच मोए हौ मैं करत विहाय मन मुखा उरवार न पार है अद विच रहे लपटाए जो तुर लिखिया सो कमावना करना कछु न जाए गुरमती ज्ञान रतन मन वसे सब देखिया ब्रह्म सुवाए नानक सतगुर बोझ वड पागी चढ़े ते पौजल पार लंगाए बिन सतगुर दाता को नहीं जो हर नाम दे आधार गुर कृपा ते नाव मन वसे सदा रहे उरधार तिसना बुझे तिपत होए हर कै नाए प्यार नानक गुरमुख पाईए हर अपनी कृपा धार बिन शब्द जगत बर लिया कहना कछु न जाए हर रखे से उबरे शब्द रहे लिव लाए नानक करता सब कित जानदा जिन रखी बनत बनाए होम जग सब तीर्था पढ़ पंडित थके पुराण बिख माया मोह न मिटई विच होमे आवन जान सतगुर मिले मल उतरी हर जपिया पुरख सुजान जिना हर हर प्रभ सेविया जन नानक सतगुर बाण माया मोह बहु चित्व दे बहु आशा लोभ विकार मन मुख अस्थिर नाथी है मर बिन जाए खिनवार वड पाग होवे सतगुर मिले होमे तजै विकार हर नामा जब सुख पाया जन नानक शब्द विचार बिन सतगुरु भगत न हो वही नाम

चाहे हाथ ना पाए, मन मुख छेती संकरे, मोह कालक दाग लगाए, मोह काले तिन लोभियां जासन जन्म गवाए, सत संगत हर मेल प्रभ हर नाम वसे मने आए, जन्म मरण की मल उतरे जन नानक हर गुण गाए, तुर हर प्रभ कर तै लिखिया सो मेटना ना जाए, जियो पिंड सब तिसदा प्रतपाल करे हर राए, चुगल निंदक भुखे रुल मोए ए ना हाथ ना किफाऊ पाए, बाहर पखंड सब कर्म करे मन हृदय कपट कमाए।

मन आवन जान ना सुजई ना सुजै दरबार माया मोह पलेटिया अंतर अज्ञान गुवार तब नर्स पा जा गया सिर डंड लगा भोपार गुरमुखा करा उपर हर चेतिया से पायन मोख द्वार नानक आप ओह उदरे सब कुटंब तरे परवार शब्द मरे सो मुआ जापे गुर प्रसादी हर रस्त्रा पे हर दरगे गुर शब्द जापे बिन शब्द मुआ है सब कोए मन मुख मुआ अपना जन्म खोए हर नाम न चेते अंत दुख रोए नानक करता करे सो होए गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिना अंतर सुरत ज्ञान सदा सदा हर गुण रवे अंतर सहज ज्ञान ओए सदा आनंद विवेक रहे दुख सुख एक समान तिना नगरी इको आया सब आत्म राम पहचान मन मुख बालक बिरद समान है जिना अंतर हर सुरत नाही विच हो मैं कर्म कमाव दे सब धर्म राय कह जाही गुरमुख अच्छे निर्मले गुर कै शब्द सुवाए ओना मैल पतंग ना लग गई जे चलन सतगुरु भाए मन मुख झूठ ना उतरे जे सो तोवन पाए नानक गुरमुख मेले।

नानक गुरमुख मन स्यों लुजै, जिना सतगुर पुरख न सेवियो शब्द न कीतो विचार। ओए मानस जून ना आखियन पशु टोर गावार, ओना अंतर ज्ञान ना ज्ञान है हरसो प्रीत ना प्यार। मन मुख मोए विकार में मर जमे वारो वार, जीव दियानो मिले सो जीव दे हर जग जीवन उद्धार। नानक गुरमुख सोहणे सिख सच्चे दरबार, हर मंदर हर साजिया हर वसै जिस नाल, गुरमती हर पाया माया मोह पर जाल। हर मंदर वस अनेक है नव निज नाम समाल, तन भगवंती नानका जिना गुरमुख लद्दा हर पाल। वड पागी गढ़ मंदर खोजिया हर हिरदय पाया नाल, मन मुख दे दिस फिर रहे अत तिसना लोभ विकार। माया मोह न चुकई मर जमे वारो वार, सतगुर सेव सुख पाया अत तिसना तज विकार। जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द विचार, हर हर नाम से आए मन हर दरगे पावे मान। किलविक पाप सब कटिए हों मैं चुके गुमान, गुरमुख कमल विकसिया सब आत्म ब्रह्म पहचान। हर हर कृपा तार प्रभ जन नानक जप हर नाम, तनासरी तनवंती जानिए पाई जा सतगुर की कार कमाए। तन मन सौंपे जी सो भाई लय हुक्म फिराओ, जय बैसावे बैसे भाई जय पे जय ते जाओ। एवड तन होर को नहीं भाई जेवड सच्चा नाओ, सदा सच्चे के गुण गावा भाई सदा सच्चे के संग रहाओ। पैनन गुण चंगियाईया भाई अपनी पथ के साथ आपे खाए, तिसका क्या सालाई है भाई दर्शन को बल जाए। सतगुर विच वडिया वडियाईया भाई कर्म मिले ता पाए, इक हुकम मन ना जाननी भाई दूजे भाई फिराए। संगत तोई ना मिले भाई बैसन मिले ना थाओ, नानक हुकम तिना मनाए सी भाई जिना तुरे कमाया नाओ। तिन विटो हो वारिया भाई तिन को सद बलिहारे जाओ, से दाड़िया सचिया जे गुर चरनी लगन, अंदिन सेवन गुर आपना अंदिन अनदरहन। नानक से मोह सोहने सच्चे दर दिसन, मुख सच्चे सच दाड़िया सच बोले सच कमाए। सच्चा शब्द मन वस्या सतगुर माहे समाहे, सच्ची राशि सच तन उत्तम पदवी पाहे। सच सुने सच मन लैन सच्ची कार कमाहे, सच्ची दरगे बैसना सच्चे माहे समाए। नानक बिन सतगुर सच ना पाईए मन मुख भूले जाए। बाबी हा प्रयो प्रयो करे जल निज प्रेम प्यार, गुर मिले शीतल जल पाया सब दूर।

अंतर विवेक विचार नानक सतगुरु मिले प्रभ पाई है सब दुख निवारण हार। मन मुख सेवा जो करे दूजे पाए चित लाए उत्कलत कुटुंब है माया मोह वधाए दरगह लेखा मंगी है कोई अंक ना सकी छाए बिन नाम है सब दुख है दुखदाई मोह माए नानक गुरमुख नदरी आया मोह माया विछड़ सब जाए गुरमुख हुक्म मन्ने सह केरा हुक्मे ही सुख पाए हुक्मो सेवे हुक्म अरादे हुक्मे समय समाए हुक्म वर्त नेम सुच संजम मन चिंदिया फल पाए सदा सुहागन जे हुक्मे बूझे सतगुर सेवे लिव लाए नानक कृपा करे जिन ऊपर तिना हुक्मे लहे मिलाए मन मुख हुक्म ना बुझे बपड़ी नित हो मैं कर्म कमाए वर्त नेम सुच संजम पूजा पाखंड परम न जाए अंकरों कुसुद माया मोह बेदे जो हस्ती छार उड़ाए जिन उपाय तिसे न चेते बिन चेते क्यों सुख पाए नानक परपंच किया तुर करते पूर्व लिखिया कमाए गुरुमुख प्रतीत पई मन मानिया अंदिन सेवा कर समाए अंतर सतगुरु गुरु सब पूजे सतगुरु का दर्श देखे सब आए मनिए सतगुरु परम विचारी जित मिले तिसना पुख सब जाए हौ सदा सदा बलिहारी गुर अपने जो प्रभ सच्चा दे मिलाए नानक कर्म पाया तिन सच्चा जो गुर चरणी लगे आए जिन प्रिया सोने हो से सज्जन मैं नाल अंतर बाहर हौ फिरा पी हृदय रखा समाल जिना इक मन इक चित ध्याया सतगुरु सो चित लाए तिनकी दुख पुख हौ मैं वड्डा रोग गया निर्दोख पए लिव लाए गुण गावे गुण उचरे गुण मैं स्वय समाए नानक गुरु पूरे ते पाया सहज मिलिया प्रव्याए मन मुख माया मोह है नाम न लगे प्यार कूर कमावे कूर संग्रह कूर करे आहार दिख माया तन संच मरे अंत होए सब चार कर्म तर्म सुच संजम करे अंतर लोभ विकार नानक मन मुख जे कमावे सो थाए न पवे दरगह होए कुवार सब ना रागा विच सो भला भाई जित वस्या मन आए राग नाद सब सच है कीमत कही न जाए रागे नादे बहारा इन्नी हुक्म न बूझिया जाए नानक हुक्मे बूझे तिना रास होए सतगुर ते सो जी पाए सब किस किससे होया ज्यों तिसे धीर जाए सतगुरु विच अमृत नाम है अमृत कहे कहाए गुरमती नाम निर्मलो निर्मल नाम से आए अमृत बाणी तत् है गुरमुख वसै मन आए हृदय कमल प्रगासिया ज्योति ज्योत मिलाए नानक सतगुरु दिन को मेलियन जिन तुर मस्तक पाग लिखाए अंदर तिसना अग है मन मुख पुख न जाए मोह कुटुंब सब कूर है कूड़ रहा लपटाए अन दिन चिंता चिंतवे चिंता बद्दा जाए जम्मन मरण न चुकई हो मैं कर्म कमाए गुर सरनाई उबरे नानक ले छड़ाए सतगुरु पुरख हर त्याय दा सतसंगत सतगुरु भाए सतसंगत सतगुरु सेव दे हर मेले गुर मिलाए यो पौजल जगत संसार है गुर बोहित नाम तराए गुर सिखी पाना मन्या गुर पूरा पार लंगाए गुर सिखा की हर तूड़ दे हम पापी भी गत पाए गुरु मस्तक हर प्रम लिखिया गुरु नानक मिलिया आए जम कंकर मार बिदारियन हर दरगह ले छाए गुर सिखा नो साबास है हर तुठा मेल मिलाए गुर पूरे हर नाम दिलाया जिन विच्चों परम चुकाया राम नाम हर कीर्त गाए कर चानन मग देखाया हौ मैं मार एक लिव लागी अंतर नाम बसाया गुरमती जम जोहे न सके सच्चे नाए समाया सब आपे आप वरते करता जो पावे सो नाए लाया जन नानक नाउ ले ता जीवे बिन नामे खिन मर जाया मन अंतर हौ मैं रोग परम पूले हौ मैं साकत दुर्जना नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जना गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन रात हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लबई सब देखिया जगत में टोले गुर सतगुरु नाम दृढ़ाया मन अंत न काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गुल बोले श्लोक महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

نانک اے بد ہر پجو اک من ہوئے اک چت تیرت برت آ

तिसका सब आधारो। जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। के वस्त जी नह जाई नित नित रख उधारो। तम संसार चरण लग करिए।

रागमाला राग एक संग पंच बरंगन संग अलापे आठो नंदन प्रथम राग पैर होवे कर ही पंच रागनी संग उचर ही प्रथम पैर ही बिलावली पुनिया की गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए पैरों की पांचों नारी पंचम हरख दिशा सुनावे।

दुतिया माल कौशक आलापे संग रागनी पांचों थापे गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सिहुती उचारी तनासरी ए पांचों गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशक उभारा खौखट औ पौरा नद गाये अष्टमाल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंचना

सुख पाइए है। इक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाइए है। हुक्म है अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई नानक।

महादूर कथना कथी न आवे टोट कत कत कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे तक पाहे जुगा।

सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। तीर्थ नावा जे तिस पावा बिन पाने के नाए करी। जेती सिरठ उपाई वेखा बिन कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर माणिक जेक गुर की सिख सुनी। गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए। नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाउ रखाई कै जस कीरत जागले। जे तिस नदर ना आवे ता वात ना पुछे के कीता अंदर कीट कर दोषी दोष तरे। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई ना सुझे जे तिस गुण कोई करे। सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया तत् धवल आकाश।

वेद नानक भगता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नास सुनिए सत संतोख ज्ञान सुनिए अठ सठ का इशनान सुनिए पढ़ पढ़ पावह मान सुनिए लागे सहज ध्यान नानक भगता।

हाथ हुए असगा, नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नास, मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए, कागज कलम ना लिखन हार, मन्ने का वह कर्म विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने सुत हुए मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मुहि चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पथ स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने

संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार तब लै उपर कीता पार धरती होर परै होर होर तिस ते भारत।

आओ कुदरत कवण कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावे साई पली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पख सार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कवण कहां विचार।

असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल भख खाहे।

अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर भार होए, अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग बखान, जिन एह लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमाए।

एक वार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हाथ पैर तन दे पानी तो

गत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोय बिन गुण कीते भगत ना होय स्वास्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कमण सुवेला वखत कमण कमण थित कमण वार कमण से रुती माह कमण जित होवा आकार वेर न पाइया पंडती

आगास ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहन एक वात सहस अठारह कहन कतेबा आसुलू एक तात लेखा हुए ता लिखिए लेखे हुए वनास नानक वड्डा आखी।

पवह समुंद ना जानिए है समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल ना होमनी जे तिस मनो ना विसर है अंत न सिफती कहन ना अंत अंत न करने देन ना अंत अंत ना वेखण सुनन ना अंत अंत ना जापे क्या मन मंत अंत ना जापे कीता आकार अंत न जापे पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहेब ऊंचा थाऊं।

आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना कमाए केते मंगह जोद अपार केतियां गणत नहीं वीचार।

देवतियां दर नाली गावे हैं सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारी गावन जति सती संतोखी गावे हैं वीर करारी गावन पंडित पंडर खीसर जुग जुग वेदा नाले गावे हैं मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रतन उपाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावे हैं जोध महाबल सूरा।

आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत अदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध संजोग वजोग दोए कार चलावह लेखे आवह भाग आदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै।

आद अनिल अनाद अनाहक जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए पंडार जो किश पाया सो एकावार कर कर वे कह सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश सया आदेश आद अनिल।

जाय। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आख हो कर्म। केते पवन पानी वह संतर, केते कान महेश, केते बर में काड़त करिय है।

नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथे नाद बलोद कोड आनंद सर्म खंड की वाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे

पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुदर तेरा केहा सो कर केहा जित बह सर्व संभाले वाज

ब्राह्मण तुदनो पंडित पढ़ रखीस जुग जुग वेदा नाले गामन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मच्छ पाए आले गामन तुदनो रतन उपाए तेरे अठ सठ तीरथ नाले गामन तुदनो जोध महाबल सूरा गामन तुदनो खानी चारे गामन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सेई तुदनो गावन जो तुद पावन रत्ती।

सोई सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन अपाई कर कर देखे कीता है अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पातशाह सहा पात साहिब नानक।

सिखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्तासह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया।

सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ, जनन पिता लोक सुत बनता, हुए न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर, काहे मन पौ करिया, उडे उड़ आवे सह कोसा, तिस पासे बचरे शरिया, तिन कवन खलावे कवन चगावे, मन मह सिमरन करिया, सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सद

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुध जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा हर त्यावो।

या सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला इत सरवरड है पहले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया पंकज मोह पग नहीं चाले। हम देखा तह डुबी अले मन एक ना चेत समूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा। ना हों जती सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा।

ज्यों होवै साहिब स्यों मेल, कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिया नानक से दे आवन। राग आसा महला पहला, शे कर शे गुर शे अपदेश, गुर गुर एको वेश अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए, सो कर राख वडाई तोए रहाओ, विश्वे चसियां कड़ियां पहरां, थित्ती वारी माह होआ, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेस, राग तनासरी महला पहला, गगन में थाल, रब चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो पवन चवरो करे, सगल बनराए फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए, भव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाउ, सहस तव नैन नन नैन है तुहि कहो, सहस मूर्त नना एक तोही, सहस पद बिमल नन एक, पद गंद बिन सहस तव गंद इव चलत मोही, सब मह जोत जोत है सोए, किस दै चानन सब मह चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए, जोत इस भावै सो आरती होए, हर चरण कमल मकरंद लोभत मनो।

रहाउ। साखत हर रस साधना जानिया, इन अंतर हो मैं कंडाही। ज्यो ज्यो चल है चुभै दुख पावे, जमकाल सह सिर डंडाही। हर जन हर हर नाम सुमानी, दुख जन्म मरण भव खंडाही। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाही। हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डाही। जन नानक नाम।

करियो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए प्यावे इहो रस अकथ कथा तिन जानी जा को आए सोई बिहाजो हर गुरु।

लिखे भूलन भूलन लिखे खाना खाओ लिखे वाट चलाइया लिखे सुन वे खाओ लिखे सहा लवाई है पढ़े के पुछन जाओ बाबा माया रचना तो अंधे नाम बसारिया ना तिस एह ना ओहो रहाओ जीवन मरना जाए कै इथे खाजे काल जिथे बह समझाई है।

पास जित बोले पत पाई सो बोलिया परवान फिक्का बोल विगुचना सुन मूर्ख मन अजान जो तिस भावे है से भले होर के कहन बखान तिन मत तिन पत तिन धन पल्ले जिन हिरदै रहिया समाए तिन का क्या सा लाहना।

जित सेवै सुख पाई तेरी दरगाह चले मान रहाव सच सरा गुड़ बाहरा जिस विच सच्चा नाम सुन है वखाण है जेतड़ी हों तिन बलिहार जाऊं ता मन खीवा जानिए जा महली पाए थाऊं नाऊ नीर चंगे आईया

कहाउ घर मंदिर खुशी नाम की नदर तेरी परवार हुक्म सोई तुद भावसी होर आखण बहुत अपार नान।

सारी है। डर गया क्या हुई श्री राग महला पहला, गुणवंती गुण वीथर अवगुणवंती चूर, जे लोड़ है वर कामणी नह मिली है फिर कूर, ना बेड़ी ना कुल्हड़ा ना पाई है फिर दूर, मेरे ठाकुर पूरे तख्त अडोल, गुरमुख पूरा जे करे पाइए साच अतोल, रहाउ प्रभ हर मंदर सोहना तिस मेहमान कलाल, मोती हीरा निर्मला कंचन कोटरी साल, बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो गुर हर ध्यान निहाल, गुर पौड़ी बेड़ी गुरु गुर तुलहा हर नाम, गुर सर सागर बोहितो गुर तीरथ दरियाओ, जे तिस भावे उजली सत सर नामन जाओ, पूरो पूरो आखिए पूरे तख्त निवास, पूरे थान सुहावन पूरे आस निरास, नानक पूरा जे मिले क्यों घाट है गुणतास, श्री राग महला पहला आव भैणी गल मिले अंक सहेलड़िया, मिलके करह कहानिया समरत कंतकिया, साचे साहिब सब गुण अवगण सब असहा, करता सबको तेरे जोर एक शब्द बिचारी है, जा तू ता क्या होर रहाओ, जाए पुछो सुहागणी

धात मिलै फुन धात कौ सिफती सिफत समाय लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ सच मिलै संतोखियां हर जप एक पाई पाई रे संत जना की रेण संत सभा गुर पाई है मुक्त पदार्थ तेन रहाओ ऊचो थान सुहावना ऊपर महल मुरार सच करनी दे पाई है दर कर महल प्यार गुरमुख मन समझाई है आत्म राम विचार त्रिविध कर्म कमाई है आस अंदेसा होए क्यों गुरबिन त्रिकुटी छुट सी सहज मिले सुख होए निज कार महल पछाणिए नदर करे मल धोए बिन गुर मैल ना उतरे बिन हर क्यों घर वास एको शब्द विचारिए अवर त्यागे आस नानक देख दिखाई है।

सच मिले गुरमत पल्ले पाए सो नर जमे ना मरे ना आवे ना जाए नानक दर प्रधान सो दरगाह पैंदा जाए श्री राग महल पहला तन जल बल माटी भया मन माया मोहे मनूर औगण फिर लागू भये कूरव जावे तूर बिन शब्द परमाई है दुबदा डोबे पूर मन रे शब्द तरहो चित लाए जिन गुरमुख नाम ना बूझिया मर जन्मे आवे जाए रहाउ तन सूचा सो आखी है जिसमें साचा नाउ भय सच राती देहोरी जेहवा सच सुआउ सच्ची नदर निहाली है

जल पाछै हरियो अंगूर जिसते उपजै तिसते बिनसै घट घट सच भरपूर आपे मेल मलावही साचै महल हदूर साहे साहे तुझ संभला कदे ना वसारियों ज्यों ज्यों साहब मन वसै गुरमुख अमृत पियो मन तन तेरा तू धनी गर्भ निवार समेव जिन एहो जगत उपाया त्रिभवन कर आकार गुरमुख चानन जानिए मनमुख मुग्ध गुबार घट घट जोत निरंतरी।

गुरमुख नाम सलाहिया हौ मैं निवरी पाही रहाउ। सुन सुन गंडन गंडिया लिख पढ़ बुझह पार। तृष्णा अहनिस अगली हौ मैं रोग विकार। ओह वे परवाहु अतोलवा गुरमुख कीमत सार। लख सियाणप जे करी लख सियों प्रीत मिलाप। बिन संगत साधना त्रापिया।

दिन सरात गुरमुख हर धन जान सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान नित अहनस हर प्रभ सेविया सतगुर दिया नाम कूकर कूड़ कमाई है गुर निंदा पचै पचान परमे पूला दुख कणु जम मार करै खुलहान मनमुख सुख ना पाई है गुरमुख सुख सुभान ऐथै धंध पटाई है सच लिखत परवान हर सज्जन गुर सेवदा गुर करनी पर

मूर्ख जिस हर मन वसै तिस मेले गुर संयोग काया कामन जी करी भोगे भोगण हार इस स्यों नेहो ना की जई जो दिसै चलन हार गुरमुख रवह सुहागणी सो प्रभ सेज पतार चारे अगन निवार मर गुरमुख हर जल पाए अंतर कमल परगासिया अमृत भरिया अगाए नानक सतगुर मीत कर।

हर हीरा गुर माहे सत संगत सत गुर पाई अहनस शब्द सलाहे रहाओ सच वखर धन रास लै पाई है गुर प्रगास ज्यो अगन मरै जल पाए त्यों तृष्णा दासन दास जम जंदार न लगई त्यों भौजल तरै तरास गुरमुख कूड़ न पावई सच रते सच पाए साकत सच न

गुर मिल पाओ जल लंगिया दरगाह पात परवान नानक ते मुख उजले धुन उपजै शब्द निशान श्री राग महला पहला वणज करहो वण जा रिहो वखर लिहो संभाल तैसी वस्त वसाही है जैसी निबह नाल अगे साहू सुजान है लैसी वस्त संभाल भाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर लै चलो सहो देखै पति आए रहाओ जिन्ना रास ना सच है क्यों किन्ना सुख होए खोटै वणज वणजै मन तन खोटा होए ठाही पाथे मिर्ग ज्यों दुख घणो नेतरोए खोटे पोतै ना पवै तिन हर गुर दर्श ना होए खोटे जात ना पत है खोट ना सी जस कोए खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए नानक मन समझाई है गुर कै शब्द साला राम नाम रंग रतिया पार ना भरम तिना हर जप लाहा अगला निरपव हर मन माह श्री राग महला पहला कर दूजा तन जोबन अर फुलड़ा नाठी अड़े दिन चार पबन केरे पत जियो ढल टुल जुम्मन हार रंग मान लै प्यारिया जा जोबन नौहला दिन थोरड़े थके भया पुराना चोला रहाओ।

राव रहया भरपूर रहाओ आपे माछी मछली आपे पानी जाल आपे जाल मणकड़ा आपे अंदर लाल आपे बहु बिदरंगला सखिए मेरा लाल नेत्र वै सुहागनी देख हमारा हाल।

दुष्ट किरखा करे हिन तज आत्मै हुए त्याई जप तप संयम होहे जब राखे कमल बिगसै मद आश्रमाई बीस सप्ताह रो बासरो संग्रह तीन खोड़ा नित काल सारे दस अठार में अपरंपरो चीनै कह नानक इव एक तारे गिरिराग महला पहला कर तीजा अमल कर तरती बीज शब्दो कार सच

कोरह ना परिये पाई। सोई काजी जिन आप तजिया, एक नाम किया आधारू, है पी होसी जाए न जासी, सच्चा सिरजनहारू। पांच वक्त

असी बोल वगाड़ वगाड़ है बोल, तू नदरी अंदर तोलह तोल, जह करनी तह पूरी मत, करनी बाजो घटे घट, प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए।

निदान अंतर हर रस रव रहिया चूका मन अभमान हृदय कमल पर गासिया लागा सहज त्यान मन निर्मल हर रव रहिया पाया दरगह मान सतगुर सेवन अपना ते विरले संसार हौ मैं ममता मार के हर राखिया उरतार हौ तिनके बलिहार ने जिन्ना नामे लगा प्यार ते सुखिये चौ जुगी जिन्ना नाम अखुट अपार गुर मिले नाम पाईए चूके मोह प्यास हर सेती मन रव रहिया घर ही माहे उदास जिन्ना हर का साध आया हौ तिन बलिहार जास नानक नदरी पाई।

आस सच संयम करनी सो करे गुरमुख होए परगास रहाओ। गुर कै शब्द मन जीतिया गत मुक्त करे मह पाए हर का नाम त्याई है सत संगत मेल मिलाए। जे लख इस्तरियां भोग करह नव खंड राज कमाए बिन सत गुर सुख

सब मह एक वर्तदा एको रहिया समाई जिसनो आप दयाल हुई सो गुरमुख नाम समाई पढ़ पढ़ पंडित जोत की वाद करह विचार मत बुद्ध भवी ना बुझई अंतर लोभ विकार लख चौरासी भरम दे भ्रम भ्रम हुए खुआर पूर्व लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार।

पारस परसे है पारस हुए ज्योति ज्योत समाई जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुर मिलिया आई मन भुखा भुखा मत करह मत तू करह पुकार लख चौरासी जिन सिरी सब सह दे आधार निरप

समाए तिनका जन्म सफल है जो चल है सतगुरु पाई कुल उधार है अपना धन जड़ेंदी माए हर हर नाम त्याई है जिसनो कृपा करे रजाए जिन्नी गुरमुख नाम त्याया विचो हो आप गवाए वे अंदर हो बाहर हो निर्मले सच्चे सच समाए नानक आए से परवान है जिन गुरमति हर त्याय श्री राग महला तीजा हर भगता हर तन रास है गुरपूछ कर है वापार हर नाम सलाहन सदा सदा वखर हर नाम आधार गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया हर भगता अतुट भंडार भाई रे इस मन को समझाए हे मन आलस क्या करे गुरमुख नाम त्याई रहाव हर भगत हर का प्यार है जे गुरमुख करे विचार पाखंड भगत ना होवे दुबदा बोल खुआर सो जन रलाया ना रले जिस अंतर विवेक विचार सो सेवक हर आखी है जो हर राख है उरतार मन तन सौंपे आगे धरे हो मैं विचो मार तन गुरमुख सो

पार, गुरमुख जप तप संजमी, हर कै नाम प्यार। गुरमुख सदा त्याई है, एक नाम करतार। नानक नाम त्याई है, सबना जिया का आधार। श्री राग महला तीजा, मनमुख मोहे व्यापिया। बैराग उदासी ना होए, शब्द ना चीने सदा दुख। हर दरगह पत खोए, हों मैं गुरमुख खोइए। नाम रते सुख होए, मेरे मन एहन सपूर रही नित आसा। सतगुर सेव मोह परजले, कर ही माहे उदासा रहाओ। गुरमुख कर्म कमावे बिगसै, हर बैराग आनंद। अन दिन भगत करे दिन राती, हों मैं मारनी चंद। वड्डे भाग सत संगत पाई, हर पाया सहज आनंद। सो साधु बैरागी सोई, हिरदय नाम वसाए। अंतर लाग न तामस मूले, विचों आप गवाई। नाम निधान सतगुरु दिखालिया, हर रस पिया अगाए। जिन किने पाया साध संगती, पूरे भाग बैराग। मनमुख फिर है ना जान है सतगुर, हों मैं अंदर लाग। नानक शब्द रते हर नाम रंगाए, बिन भय के ही लाग। श्री राग महला तीजा, कर ही सौदा पाई है। अंतर सब वथ होए, खिन खिन नाम संभाली है। गुरमुख पावे कोई, नाम निधान अखुट है। वडभाग प्राप्त होए, मेरे मन तज निंदा हों मैं अहंकार। हर जीव सदा त्याए तू, गुरमुख एक अंकार रहाओ। गुरमुखा के मुख उजले, गुर शब्दी विचार। हलत पलत सुख पाएंदे, जप जप हृदय मुरार। घर ही विच महल पाया, गुर शब्दी विचार। सतगुरु तेजो मोह फेर है, मथे तिन काले। अन दिन दुख कमाव दे, नित जो हे जम जाले। सुपने सुख ना देखनी, बहु चिंता पर जाले। सबना का दाता एक है, आपे बख्श करे। कहना किशु ना जावई, जिस पावे तिस दे। नानक गुरमुख पाई है, आपे जाने सोए। श्री राग महला तीजा, सच्चा साहिब सेवी है। सच वडियाई दे, गुर प्रसादी मन वसै। हों मैं दूर करे।

संता संगत मिल रहे, जप राम नाम सुख पाए रहाउ। गुरमुख सदा सुहागणी, पिर राखिया उर तार, मिठा बोलह निव चलह सेजै रवे पतार। शोभावंती सुहागणी, जिन गुर का हित अपार, पूरे भाग सतगुर मिले, जा भागै का उदौ होए। अंतर हो दुख भ्रम कटिए, सुख प्राप्त होए, गुर कै भाणै जो चले, दुख ना पावे कोई। गुर के पाणे विच अमृत है, सहजे पावे कोई। जिन्ना प्राप्त तिन पिया, हों मैं विचों खोए। नानक गुरमुख नाम ते आई है, सच मिलावा होए। श्री राग महला तीजा, जां फिर जाने अपना, तन मन अगै धरे, सुहागणी कर्म।

ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਗਤ ਨਾ ਪਾਈਐ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਇ ਰਹਾਉ।

कराई देख कुटंब मोहे लवाना चलदियां नाल ना जाई सतगुर सेव गुण निदान पाया तिस दी कीम ना पाई हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा अंते होए सखाई अपने मन चित कह कहाई बिन गुर आप ना जाई हर जीव दाता भगत वच्छल है कर कृपा मन वसाई नानक सोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वडियाई श्री राग महला तीजा धन जननी जिन जाया धन पिता प्रधान सतगुर सेव सुख पाया विचों गया गुमान दर सेवन संत जन खड़े पायन गुणी निदान मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए गुर का शब्द मन वसै मन तन निर्मल हो।

मेरे गुरमुख बूझे कोए बिन बूझे कर्म कमावणे जन्म पदार्थ खोए रहाओ जिन्नी चाखिया तिन्नी साध पाया बिन चाखे भरम भुलाए अमृत साचा नाम है कहना कछु ना जाए पीवत हूं प्रवान भया पूरा शब्द समाए आपे दे ता पाई है।

बार सतगुरु पुरख ना मन्नियो शब्द ना लगो प्यार इशनान दान जेता करह दूजे भाई खुआर हर जियो अपनी कृपा करे ता लागे नाम प्यार नानक नाम संभाल तू गुर कै हित अपार श्री राग महला तीजा किस हों सेवी क्या जप करी सतगुर पूछो जाय सतगुर का भाणा मन लई विचों आप गवाय एहा सेवा चाकरी नाम वसै मन आय नामै ही ते सुख पाई है सच्चै शब्द सुहाय मन मेरे अन दिन जाग हर चेत अपनी खेती रख लै कूंज पड़ेगी खेत रहाओ मन कियां इच्छा पूरियां शब्द रहया भरपूर भै पाए भगत करहें दिन राती हर जीव वेखै सदा हदूर सच्चा शब्द सदा मन राता भ्रम गया शरीरों दूर निर्मल साहिब पाया साचा गुणी गहीर जो जागे से उबरे सूते गए मोहाए सच्चा शब्द ना पछाणियो सुपना गया विहाय सुनिए घर का पाहुणा ज्यों आया त्यों जाय मनमुख जन्म बिरथा गया क्या मुँह देसी जाय सब किसी आपे आप है हम मैं विच कहन ना जाय गुर कै शब्द पछाणिए दुख हों मैं विचों गवाय सतगुर सेवन अपना हों तिनकै नागों पाय नानक दर सच्चै सच्यार है हों तिन बलिहारै जाओ श्री राग महला तीजा जे वेला वक्त विचारी है ता कित वेला भगत होए।

मन तन शीतल साच सियो सास न बिरथा कोई मेरे मन हर का नाम त्याए साची भगत।

अगली मनवा रज्जा सहज सुभाय गुर का शब्द अमृत है जित पीता तिख जाय इहो मन साचा सच रत्ता सच्चे रहया समाय आखण वेखण बोलना शब्दे रहया समाय बाणी वजी चहु जुगी सचो सच सुनाय हम मैं मेरा रह गया सच्चा लया मलाय तिनको महल हदूर है जो सच रहे लिवलाय नदरी नाम ते आई है विन कर्मा पाया ना जाय पूरे भाग सत संगत लह सतगुर भेटै जिसे आय अन दिन नामे रत्या दुख बिखिया विचों जाय नानक शब्द मलावड़ा नामे नाम समाय श्री राग महला तीजा अपना पौ तिन पायुन जिन गुर का शब्द बीचार सत संगति सदा मिल रही सच्चे के गुण सार दुबधा मैल चुकाइयन हर राखिया उर तार।

शब्द सवारन हार रहाव सत्य शब्द मन मोहया प्रभ आपे लय मलाय अनदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाय ज्योति हूं प्रभ जापदा बिन सतगुर बूझ ना पाय जिनको पूर्व लिखिया सतगुर पेटिया तिने आय बिन नावे सब डुमणी दूजे पाए खवाय तिस बिन घड़ी ना जीवंदी दुखी रहन विहाय परम पुलाना अंदोला फिर आवे जाय नदर करे।

तिना आनंद सदा सुख है जिन्ना सच नाम आधार गुर शब्दी सच पाया दुख निवारण हार सदा सदा साचे गुण गावे है साचे नाही प्यार कृपा करके अपनी दितोन भगत भंडार मन रे सदा आनंद गुण गाए सच्ची बाणी हर पाई है हर सिउ रह समाय रहाउ सच्ची भगती मन लाल थिया रत्ता सहज सुभाय गुर शब्दी मन मोहया कहना कछु ना जाय जिहवा रत्ती शब्द सच्चे अमृत पीवे रस।

भाई अन दिन रावह पिरे अपना सहजी सच समाई रहाउ शब्द रतियां सुहागणी सच्चा शब्द शिंगार हर वार पाइन घर अपने गुर कै हित प्यार सेज सुहावी हर रंग रवे भगत भरे भंडार सो प्रभ प्रीतम मन वसै जे सब सह दे आधार फिर सालाह ने अपना तिनकै हों सद बल।

सोई। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होई। नानक नाम संभाल तू, जित सेवे है सुख होई। श्री राग महला तीजा, जग होमै मैल दुख पाया। मल लागी दूजे पाए, मल होमै धोती किवै न उतरै। जे सो तीर्थ नहाए, बहु

का निर्मल हुए मन मुख हर हर कर थके मैल ना सकी धोए रहाउ मन मैल है भगत ना होवे नाम ना पाया जाए मन मुख मैले मैले मोए जासन पत गुआए गुर प्रसादी मन वसे मल हऊ मैं जाए समाए ज्यों अंधेरा दीपक बाली है त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाए हम किया हम करहेंगे हम मूर्ख गावार करने वाला विसरिया दूजे पाए प्यार माया जेवड़ दुख नहीं सब भव थके संसार गुरमती सुख पाई है सच नाम उरतार जिसनो मेले सो मिले हम तिस बलिहार जाऊं ए मन

नानक नाम ना विसरै सच्ची माही समां। श्री राग महला चौथा कर पहला, मैं मन तन बिरहो अत अगला। क्यों प्रीतम मिलै घर आए, जा देखा प्रभ अपना। प्रभ देखिए दुख जाए, जाए पुछा तिन सजना। प्रभ कित बिद मिलै मलाए, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना कोय। हम मूर्ख मुग्ध शरणागति, कर कृपा मेले हर सोए। रहाउ सतगुरु दाता हर नाम का, प्रभ आप मलावे सोए। सतगुर हर प्रभ बुझिया, गुर जेवड अवर ना कोय। हौ गुर सरनाई टह पवा, कर दया मेले प्रभ सोए। मन हठ किने ना पाया, कर अपाव थके सब कोय। सहस सियाणप कर रहे, मन कोरै रंग ना होए। कूड़ कपट किने ना

गुरमुख सज्जन गुण कारिया मिल सज्जन हर गुण गाय हीरा हीर मिल भेदया रंग चलूलै नाय मेरे गोविंदा गुण गावा तृप्त मन होए अंतर प्यास हर नाम की गुर तुस मलावै सोए रहाओ मन रंगो वडभागी हो गुर तुठा करे पसाओ गुर नाम दरडाए रंग स्यो हौ सतगुर कै बल जाओ बिन सतगुर हर नाम ना लभई लख कोटि कर्म कमाओ बिन भागा सतगुर ना मिलै कर बैठिया निकट नित पास अंतर अज्ञान दुख भरम है विच पड़दा दूर पई आस बिन सतगुर भेटे कंचन ना थीऐ मनमुख लोहो बूढ़ा बेड़ी पास सतगुर बोहत हर नाव है इत बिद चढ़िया जाय सतगुर कै पाणै जो चलै विच बोहित बैठा आए तन तन वड भागी नानका जिन्ना सतगुर लए मलाय श्री राग महला चौथा हौ पंथ दसाई नित खड़ी कोई प्रभ दसे तिन जाऊं जिन्नी मेरा प्यारा रावया

मेल मलाई। हो सतगुर बिट्टो वारिया जिन हर प्रभ दिया दिखाई रहाओ। हुए नमाणी तह पवा पूरे सतगुर पास निमाणिया गुरमान है। गुर सतगुर करे सबास हों गुर सालाहे न रजू। मैं मेले हर प्रभ पास सतगुरु नो सब को लोचदा। जेता जगत सब कोए बिन भागा दर्शन ना थी। भागहीन बहर होए जो हर प्रभ पाणा सो थिया। तुर लिखिया ना मेटै कोए आपे सतगुर आप हर आपे मेल मलाए। आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए। सब जग जीवन जग आप है नानक जल जल है समाए। श्री राग महला चौथा रस अमृत नाम रस अत भला। कित बिद मिले रस खाए जाए पुछो सुहागणी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभ आए। ओए वे परवाह ना बोलनी हो मल मल धुआ तिन पाए। भाई रे मिल सज्जन हर गुण सार। सज्जन सतगुर पुरख है दुख कड्ढे हों मैं मार रहाओ। गुरमुखियां सुहागणी तिन दया पई मन आई। सतगुर वचन रतन है जो मन्ने सो हर रस खाए। से वड़ भागी वड़ जानी है जिन हर रस खादा गुर पाए। एहो हर रस वण तिन सबत है भागहीन नहीं खाए। बिन सतगुर पल्लै ना पवे मन मुख रहे बिललाए। ओए सतगुर आगे ना निमह ओना अंतर क्रोध बलाए। हर हर हर रस आप है आपे हर रस होए। आप दया कर देवसी गुरमुख अमृत चोए। सब तन मन हरिया होया नानक हर वस्या मन सोए। श्री राग महला चौथा दिनस चढ़ै फिर आथवे रैन सबाई जाए। आव कटै नर ना बुझै नित मूसा लाज टुकाए। गुड़ मिठा माया पसरिया मनमुख लग माखी पचै पचाए। भाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए। पुत कलत मोह बिख है अंत बेली कोई ना होए रहाओ। गुरमत हर लिव उबरे अलिपत रहे सरनाए। उन्नी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए। गुरमुख दरगाह मनी है हर आप लए गल लाए। गुरमुखा नू पंथ प्रगटा दर ठाक ना कोई पाए। हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लिव लाए। अनहद धुनी दर वज दे दर सच्चै सोभा पाए। जिन्नी गुरमुख नाम सलाहया तिन्ना सब को कह सबास। तिनकी संगत दे प्रभ मैं जाचक की अरदास। नानक भाग वड्डे तिन्ना गुरमुखा जिन अंतर नाम परगास। श्री राग महला पंजवां कर पहला क्या तू रत्ता देख कै पुत्र कलत्र शिंगार। रस भोग है खुशियां करह मान है रंग अपार। बहुत करह परमाइसी वरत है हुए अपार। करता चेतना आवई मन मुख अंध गुवार। मेरे मन सुख दाता हर सोए गुर प्रसादी पाई। कर्म प्राप्त होए रहाओ। कपड़ भोग लपटाया सोयना रूपा खाक। हैवर गैवर बहु रंगे किए रथ अथाक। किस ही चेतना पावहि बिसरिया सब साक। सिरजनहार पुलाया विण नावै ना पाक। लेंदा बद दुआए तू माया करह एकत। जिसनो तू पतिया एंदा सो सन तुझै अनित। अहंकार करह अहंकारिया व्यापिया मन की मत। इन प्रभ आप भुलाया
ना तिस जात ना पात।

लिखिया लेख तिन पुरख बधाते दुख सहसा मिट गया रहाव जेते थान थनंतरा तेते भावे आया तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परिया हुक्म चलाए निसंग होए वरतै अफरिया सब को वस गत कर लयोन बिन नावे खाक रलिया कोट ते तीस सेवका सिद्ध साधक दर खरिया ग्रंबारी वड साहबी सब नानक सुपन थिया श्री राग महला पंजवां भलके उठ पपोलिया बिन बुझे मुगद अजान सो प्रव चित ना आयु छूटैगी बेबान सतगुर सेती चित लाए सदा सदा रंग मान प्राणी तू आया लाह लैन लगा कितक फकड़ी सब मुकदी चली रैन रहाउ कुदम करे पस पंखी।

साचे देव हो अपना नाम। श्री राग महला पंजवा नाम त्याए सो सुखी इस मुख उजल होए पूरे गुरते पाईए प्रगट सबनी लोए साध संगत कै घर वसै एको सच्चा सोए मेरे मन हर हर नाम त्याए नाम सह

माया का रंग सब फिक्का जातु बिनस निदान जा कै हृदय हर वसै सो पूरा प्रदान साधु की हो रेण का अपना आप त्याग अपार सियाणप सगल छड गुर की चरणी लाग तिसह प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होए भाग तिसह प्राप्त पाई हो जिस देव प्रभ आप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिनसै हम मैं ताप नानक कौ गुर भेटिया बिनसे सगल संताप श्री राग महला पंजवा एक पछाणु जी का इको रखन हार इकस का मन आसरा इको प्राण आधार तिस सरनाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार मन मेरे सगल उपाव त्याग गुर पूरा

मात पिता एकस की मन टेक है, जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनोह ना विसरै, जिन सब किस वस कीता घर इको बाहर इको थान तनंतर आप, जी जंत सब जिन किए आठ पहर तिस जाप, एकस सेती रत्या ना हुवी सोग संताप, पार ब्रह्म प्रभ एक है दूजा नाही कोय, जियो पिंड सब तिसका जो तिस भावै सो होय, गुरपूरै पूरा भया जप नानक सच्चा सोए, श्री राग महला पंजवा जिन्ना सतगुर सिंह चित लाया, से पूरे प्रधान जिनको आप दयाल होए, किन उपजै मन ज्ञान, जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम, मन मेरे एको नाम त्याए, सर्व सुखा सुख उपजह दरगाह पैंदा जाए, रहाऊ जन्म मरण का पाऊ गया पाऊ भगत गोपाल, साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल, जन्म मरण की मल कटी है गुरदर्शन देख निहाल, थान सनंतर रव रहया पार ब्रह्म प्रभ सोए, सबना दाता एक है दूजा नाही कोई, किस सरनाई छुट्टी है कीता लोड़े सो होए, जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिनकी शोभा निर्मली प्रगट पई जहान, जिन्नी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान, श्री राग महला पंजवा मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसिया मन आई, अंतर ज्योत परगासिया एक सस्यों लिवलाई, मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखिया पाए, गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचै नाय, मेरे मन गुर शब्दी सुख होए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोई रहाओ, मन किया इच्छा पूरिया पाया नाम निदान, अंतर जामी सदा संग करने हार पछान, गुर प्रसादी मुख उजला जप नाम दान इशनान, काम क्रोध लोभ बिनसिया तजिया सब अभमान, पाया लाहा लाभ नाम पूर्ण होए काम, कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम, आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरवान, सच महल घर पाया गुर का शब्द पछान, भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार, हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार, आठ पहर गुणसार दी रत्ती रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार, श्री राग महला पंजवा पूरा सतगुरु जे मिले पाईए शब्द निदान, कर कृपा प्रभ अपनी जपिए अमृत नाम, जन्म मरण दुख काटिए लागे सहज ध्यान, मेरे मन प्रभ सरनाई पाए हर बिन दूजा को नहीं, एको नाम त्याए रहाओ, कीमत कहन ना जाइए सागर गुणी अथाह, वडभागी मिल संगती सच्चा शब्द वसाह, कर सेवा सुख सागर है सिर शाह पातशाह, चरण कमल का आसरा दूजा नाही ठाव, मैं धर तेरी पार ब्रह्म तेरे तान रहाव, नीमाणिया प्रभ मान तू तेरे संग समाओ, हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद, जी प्राण तन धन रखे कर कृपा राखी जिंद, नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद, श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच सियो, मरै ना आवै जाय ना वे छोड़िया विछड़ै,
सब मह रहे आसमाई, दीन दर्द दुख भंजना, सेवक कै सत पाए, अचरज रूप निरंजनु गुर मेलाया माए, भाई रे मीत करहो प्रभ सोए, माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोए, रहाउ दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार, सखा सहाई अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार, बालक बिरध ना जानिए निश्चल तिस दरबार, जो मंगिए सोई पाईए निधारा आधार, जिस पेखत किल विख रह मन तन होवे शांत, एक मन एक त्याई है मन की लाहे प्रांत, गुण निदान नवतन सदा पूर्ण जाकी दात, सदा सदा आराधी है दिन विसरो नहीं रात, जिनको पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद, तन मन तन अर्पी सबो सगल वारिय एह जिंद, देखै सुनै हदूर सद कट कट ब्रह्म रविंद, किरत कणा नु पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद, श्री राग महला पंजवां मन तन धन जिन प्रभ दिया, रखिया सहज सवार सर्ब कला कर थापिया अंतर ज्योत अपार, सदा सदा प्रभ सिमरिय अंतर रख उरतार, मेरे मन हर बिन अवर ना कोए, प्रभ सरनाई सदा रहो दुख ना व्यापै कोए, रहाउ रतन पदार्थ मानका सोयना रूपा खाक, मात पिता सुत बंध पा कूड़े सबे साक, जिनकी तात सह ना जानी मन मुख पास न पाक, अंतर बाहर रव रहया तिसनो जाने दूर, तृष्णा लागी रच रहया अंतर हौ मैं कूर, भगती नाम विहूनिया आवह वंजह पूर, राख लेहो प्रभ करनहार जी जंत कर दया, बिन प्रभ कोई ना रखनहार महा बिकट जम भया, नानक नाम ना विसरौ कर अपनी हर मया, श्री राग महला पंजवा मेरा तन अर धन मेरा राज रूप मैं देस, सुत दारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेस, हर नाम हृदय ना वसई कार्य कितै ना लेख, मेरे मन हर हर नाम त्याए कर संगत नित साधकी गुर चरणी चित लाए, रहाउ नाम निधान त्याई है मस्तक होए भाग, कार्य सब सुवारी है गुर की चरणी लाग, हौ मैं रोग भ्रम कटी है ना आवे ना जाग, कर संगत तू साधकी अठ सठ तीर्थ नाओ, जियो प्राण मन तन हरि साचा इहो सुआउ, एथे मिलह वडाइया दरगह पावह थाउ, करे कराए आप प्रभ सब किस तिस ही हाथ, मारिया पे जीवाल दा अंतर बाहर साथ, नानक प्रभ सरनागती सर्ब कटा के नाथ, श्री राग महला पंजवा सरन पए प्रभ आपने गुरु हुआ कृपाल, सतगुर कै अपदेसे बिनसे सर्ब जंजा।

प्रभ अपनी एक निमख ना मनो वसार रहाउ गुण गोविंद नित गावी है अवगुण कटन हार बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे बिस्थार सहजे सिफती रत्या भवजल उतरे पार तीर्थ वर्त लख संजमा।

अस बिन सच्चे सब कूड़ है, अंते हुए बनास रहाउ। साहिब मेरा निर्मला तिस बिन रहन ना जाए, मेरे मन तन भुख अति अगली, कोई आन मलावे माई। चारे कुंडा भालिया सह बिन अवर ना जाए, तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार। सतगुरु दाता नाम का पूरा जिस भंडार, सदा

सदा सदा आराधी है। एहा मत वसेख मन तन मिठा तिस लगे, जिस मस्तक नानक लेख। श्री राग महला पंजवां, संत जन हो।

निहाल कर्म प्राप्त तिस हुए जिसनो हुए दयाल मेरे मन गुरजे वड्यावर ना कोए दूजा थाओ ना को सुजे गुर मेले सच सोए रहाव सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए गुर चरनी जिन मन लगा सेवड भागी माए गुरदाता समरथ गुर गुर सब मह रहया समाई गुर परमेश्वर पार ब्रह्म गुर डुबदा लई तराय कित मुख गुर सालाही है कर्म कारण समरथ से मथे निचल रहे जिन गुर धारिया हथ गुर अमृत नाम पी आलिया जन्म मरण का पथ गुर परमेश्वर सेविया पै भंजन दुख लथ सतगुर गहर गंभीर है सुख सागर अग खंड जिन गुर सेविया अपना जमदूत ना लागे डंड गुर नाल तुल ना लगे खोज दिथा ब्रह्मांड नाम निधान सतगुर दिया।

हर जन हर लिव उदरी नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवां कर दूजा गोयल आया गोयली क्या

किसह त्यागु मन मेरे सर्ब को आधार। गुर के चरण मन मह त्याई छोड़ सगल सियाणपां साच शब्द लिवलाए रहाउ दुख कलेश ना पाओ।

आधारै पाप सगली जाहि हौ तिनकै बलिहारनै जे गुर की पैरी पाहि साध संगत मन वसै साच हर का नाऊ सेवड भागी नानका जिन्ना मन एहो पाओ श्री राग महला पंजवां संच हर धन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार जिन तो साज सवारिया हर सिमर होए उदार जप मन नाम एक अपार प्राण मन तन जिनह दिया हृदय का आधार रहाओ काम क्रोध अहंकार माते व्याप्या संसार पौ संत सरणी लाग चरणी मिटै दुख अंधार

जिस दे प्रभ निरंकार जो दिसे सो सगल तू है पसरे आपासार कहो नानक गुर भरम काटिया सगल।

मान अपमान मंदी सो सेवक नाही, तात समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन एहो कीर्त करला, कथन कहन ते मुक्ता।

भले हार न तुस दिता अमृत नाम रहाओ जिन तू सेवया पाओ कर से पुरख सुजान तिन्ना पिछे छुटिया जिन अंदर नाम निदान गुरजे वड़दाता को नहीं जिन दिता आत्म दान आए से परवान है जिन गुर मिलिया सुपाई सच्चे से तीरतिया दरगाह बैसन जाए करते हाथ वड़ियाईया पूर्ब लिखे आ पाए सच करता सच करनहार सच साहिब सच टेक सचो सच वखाणिए सचो बुद्ध बबेक सर्ब निरंतर रव रहिया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवा गुर परमेश्वर पूजिए मन तन लाए प्यार सतगुर दाता जी का सबसे दे आधार सतगुर

हर हर नाम संभाल साधु संगत मन वसै पूर्ण हो ऐ काल रहाउ गुर समरथ अपार गुर वडभागी दर्शन होए गुरिया गोचर निर्मला गुर जीवड़ अवर ना कोई गुर करता गुर करनहार गुर

आर गुरी उच्चाय अगम अपार, गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार। जितड़े फल मन बांछी है, जितड़े सत गुर पास,

कीतड़ा लिखना जाने कोई जे सौ सायर मेलिय तिल ना पुजावह रोई कीमत किने ना पाईया सब सुन सुन आख सोई पीर पै कामर फालक साधक सुहदे और शहीद सेख मसायक काजी मुल्ला दर दरवेश रसीद बरकत तिन को अगली पढ़दे रहन दरूद पुछ ना साजे पुछ ना काही

तेरे जुगह जुगह भंडार महला पहला सबे कंत महलियां सगलियां करहें श्रृंगार गणत गणावन।

दया हो सद बलिहार जाऊं सा धन रंड ना बैसई जे सतगुर माही समाय फिर री सालू नौ तनु साचो मरै ना जाय नित रवै सोहागनी

दीपक शब्द विगासिया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार सुभा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार बिन पेर पुरख ना जानी साचे गुर कै हित प्यार निस अंधारी सुतिए क्यों पिर बिन रैन विहाय अंक जलो तन जालियो मन धन जल बल जाय जा धन कंत ना राविया ता बिरथा जो बन जाय सेजै कंत मेह लड़ी सूती बूझ ना पाए हौ सुती पिर जागना किस को पूछो जाय सतगुर मेली पै वसी नानक प्रेम सखाय श्री राग महला पहला आपे गुण आपे कथै आपे सुन विचार आपे रतन परख तू आपे मोल अपार साचो मान महत तू

शब्द पछाणिए साच रते गुरवाक तित तन मैल ना लगई सच कर जिस ओताक नदर करे सच पाई है।

सच रास साची दरगाह बैसई भगत सच्ची अरदास पात स्यों लेखा निबड़ै राम नाम परगास ऊंचा ऊंचो आखिए कहो ना देखिया जाय जह देखा तह एक तू।

रहाउ। सब जग बांधु काल को बिन गोर काल अपार, सच रते से उबरी दुबदहा छोड़ विकार। हौ किन कै बलिहार ने दर सचै सत्यार, सी चाने ज्यो पंखिया जाली बदक हाथ। गुर राखे से उबरे होर फाथे चोगे साथ, बिन नावे चुन सुटिए कोई ना संगी साथ। सचो सच्चा आखिए सच्चे सच्चा थान, जिन्नी सच्चा मन्या तिन मन सच ध्यान। मन मुख सूचे जानिए गुरमुख जिन्ना ज्ञान, सतगुर अगे अरदास कर साजन दे मलाए। साजन मिले सुख पाया जमदूत मोए बिख खाए, नावे अंदर हौ वसा नाओ वसै मन आए। बाज गुरु गोबार है बिन शब्द बूझ ना पाए, गुरमति परगास हुई सच।

आद पंडित वाचह पोथियां ना बूझह विचार अन को मत्ती दे चल है माया का व्यापार कथनी झूठी जग पवे रहनी शब्द सो सार केते पंडित जोत की वेदां करह विचार वाद विरोध सलाहनी वादे आवन जान बिन गुर कर्म ना छुटसी कह सुन आख बखान सब गुणवंती आखिए मैं गुण नाही कोए हर वर नार सुहावनी मैं पावे प्रभ सोए नानक शब्द मलावड़ा ना वे छोड़ा होए श्री राग महला पहला जप तप संयम साधी है तीरथ कीचे वास पुन दान चंगियाइयां बिन साचे क्या तास जे

रहाउ गिन रासी वापारिया तक्के कुंडा चार मूल ना बुझै अपना वस्त रही कारबार गिन वखर दुख अगला कूड़ मुठी कुड़ियार लाहा एहन सनौतना परखे रतन विचार वस्त लह कार अपने चल कार्ज सार बन जारिया स्यों बणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार संतां संगत पाई है।

सोहु प्रभ जानिए साचो साचै नाई सा तन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग महली महल बुलाइए सो पिर रावे रंग सच सुहागन सा भली।

ना होई सुख दुख सम कर जानिए है शब्द भेद सुख होई वेद पकारे वाची है वाणी ब्रह्म व्यास मुन जन सेवक साधिका नाम रते गुणतास सच रते से जिन गए हम सद बलिहारे जास चहो जुग मैले मल भरे जिन मुख नाम ना होए भगती पाए विहूणिया मुह काला पत खोए जिन्नी नाम वसारिया अवगण मुठी रोए खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए आप पछाणे घर वसे हम तृष्णा जाय नानक निर्मल उजले जो राते हर नाए श्री राग महला पहला सुन मन भूले बावरे गुर की चरनी लाग हर जप नाम त्याए तू जम डर पै दुख भाग दुख घणो दोहागनी क्यों फिर रह सुहाग भाई रे अवर नाही मैं थाऊं मैं तन नाम निदान है गुर दिया बल जाऊं रहाव गुरमत पत साबास तिस तिस कै संग मलाऊं तिस बिन घड़ी ना जीवं।

ज्यो कलर की पीत तब लग महल ना पाई है जब लग साच ना चीत शब्द रपै घर पाई है।

शब्द रत्ते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार नाम सलाहन सद सदा हर राख है उरतार सो क्यों मनहु विसारी है सब जिया का आधार शब्द मरे सो मर रह फिर मरे ना दूजी वार शब्द ही ते पाई है हर नामे लगे प्यार बिन शब्द जग भूला फिरे मर जन्मे वारू वार सब सलाह है आपको बड़ो बडेरी होय गुर बिन आप ना चीनी है कहे सुने क्या होय नान

सुख से जड़ी बिन पिर बाद सिंगार दुख घणो दुहागणी ना कर सेज पतार मन रे राम जपो सुख होए बिन गुर प्रेम ना पाईए शब्द मिले रंग होए रहाओ गुर सेवा सुख पाईए हर वर सहज सिंगार सच माने पिर से जड़ी गूड़ा हित प्यार गुरमुख जान सियाणी है गुर मेली गुण चार सच मेनु वर कामणी पिर मोही रंग लाए मन तन साच विगसिया कीमत कहन ना जाए हर वार घर सुहागणी निर्मल साच नाए मन मह मनुआ जी मरे ता पिर रावे नार इकत ता गैराल मिले गाल मोतियन का हार संत सभा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार हिन मह उपजे खिन खपै

आपे खवे दुध कौ खपण ना दे आपे मेल वशुन्या सच वडे आई दे रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मनमुख सो जी ना पवे गुरमुख सदा हजूर।

अवर के करे कराय, मिलिया कहा क्या मिली है, शब्द मिले पति आए, मन मुख सोजी ना पवे, बिछड़ चोटा खाए, नानक दर कर एक है, अवर ना दूजी जाए। श्री राग महला पहला, मन मुख भुलै भलाई।

माया परम भुलाई परम भुली दोहागनी ना फिर अंक समाय रहाओ भूली फिरै दसंतरी भूली ग्रह तज जाय भूली डूंगर थल चढ़ै पर मैं मन डोलाय तुरहु विछुनी क्यों मिलै गर्भ मुठी बिललाय बिछड़िया गुरमेल सी हर रस नाम प्यार साच सहज सोभा कणी हर गुण नाम आधार ज्यों पावे त्यों रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार अखर पढ़ पढ़ भुलिए भेखी बहुत अभमान तीर्थ नाता क्या करे मन

गुर बिन किन समझाई है मन राजा सुनतान। प्रेम पदार्थ पाई है गुरमुख तत विचार सा तन आप गवाया।

वाचा करी मन निर्मल सुख होए गुर का शब्द मन वसिया हूं मैं विचो खोए नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होए कर्म मिले ता पाईए आप ना लया जाए गुर की चरनी लग रहो विचों आप गवाए सच्चे से तीरतिया सचो पल्ले पाए भुलने अंदर सब को अपुल गुरु करतार गुरमत मन समझाया लागा तिसै प्यार नानक साच ना।

मैं तुझ बिन अवर न पावई, तू पावह सुख होए रहाउ। नाम सलाही रंग सिउ, गुर कै शब्द संतोख। जो दिसै सो चलसी।

से पले खोटा खरा ना कोई गुरु सरनाई छुट्टी है मनमुख खोटी रास अष्ट धात पातशाह की कड़िए शब्द विगास आपे परखे पारखू पवे खजाने रास तेरी कीमत ना पवे सब डिठी ठोक बजाए कहने हाथ ना लगई सच टिके पत पाए गुरमत तू सालाहना होर कीमत कहन ना जाए जित तन नाम ना पावे तित

सिर करवत तराई, तन है मंचल गालिये, पी मन ते रोग ना जाय, हर नामे तुल ना पुजई, सब डिठी ठोक बजाय, कंचन के कोट दत करी, बहु है वर गैवर दान, पूम दान गौआ कणी, पी

मन मुख जाने अपनी धिया पूत संजोग नारी देख भगासी है नाले हरख सो सोग गुरमुख शब्द रंगावले अहनस हर रस भोग चित चले वित जावणु साकत डोल डोलाई बाहर ढूंढ विगुची है कर्म है वस्त सुथाई मन मुख हो मैं करमुसी गुरमुख पल्ले पाई साकत मेरे गुण आरिया अपना मूल पछाण रखत बिंद का एहो तनु अग्नि पास फिराण पवन कै वस देवरी मस्तक सच निशान बहुता जीवन मंगी है मुआ ना लोड़े कोई सुख जीवन तिस आखी है जिस गुरमुख वस्या सोय नाम निहूणे क्या गणी जिस हर गुर दर्श ना होय ज्यों सुपने निस भुली है जब लग निंदरा होय इं सरपन कै वस जियड़ा अंतर हों मैं दोय गुरमत होए विचारी है सुपना एहो जग लोय अगन मरै जल पाई है ज्यो बारक दूध माए बिन जल कमल सोना थी है बिन जल मीन मराए नानक गुरमुख हर रास मिले।

पूरा सतगुर रस मिलै गुर तारे हर नाउ रहाउ। चलना चलना जे करी जाना चलन हार, जो आया सो चल सी अमर सो गुर करतार। पी सच्चा सालाहना सच्चे थान प्यार, दर कर महला सोहणी पक्के कोट हजार। हस्ती घोड़े पाखरे लश्कर लख अपार, किस ही नाल ना चलिया खप खप मुए असार। सोयना रूपा संतिया माल जाल जंजाल, सब जग मह दो ही फेरिए बिन नामे सिरकाल। पिंड पड़े जियो खेल सी बद फैली क्या हाल, पुत्ता देख विगसिए नारी सेज पतार। चोआ चंदन लाइए कापड़ रूप शिंगार, खेहू खेर लाइए छोड़ चले घर बार। महर मलूक कहाइए राजा राव के खान, चौधरी राव सदाइए जल बलिए अभमान। मन मुख नाम वसारिया ज्यों डब ददा कान, हों मैं कर कर जाए सी जो आया जग माही। सब जग काजल कोठड़ी तन मन दे सुवाही, गुर राखे से निर्मले शब्द निवारी पाही। नानक तरिये सच नाम सिर छाह पातशाह, मैं हर नाम ना विसरे हर नाम रतन वेसाह। मन मुख भोजन पच मोए गुरमुख तरे अथाह, श्री राग महला पहला कर दूजा मकाम कर कर बैसना।

अष्टपदियां श्री राग महल्ला तीजा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरमुख कृपा करे भगत की जय बिन गुर भगत ना होए आपे आप मलाए बूझे ता निर्मल होवे।

बिन सतगुरु को मग ना जाने अंधे ठौर ना काई हर सुख दाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई पेई अड़ै जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया अन दिन भगत करह दिन राती हमै मोह चुकाया जिस स्यों राता तैसो हुए सच।

सहज उपजे होमे तृष्णा मार। हर गुण दाता सद मन वसै सच रखिया उरतार। प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाय। नाम निधान हर मन वसै होमे दुख सब जाय। सतगुर शब्द सुनाया हों सद बलिहारै जाऊं। अपने मन चित कह कहाई बिन गुरे आप ना जाई। हर जियो भगत वशल सुख दाता कर कृपा मन वसाई। नानक सोभा सु

रहाउ। बिन सतगुर प्रतीत न आवे, नाम न लागो पाव, सुपनह सुख न पावी, दुख मह सवै समाई। जे हर हर कीचै बहुत लोची है, किरत न मेटिया जाए। हर का भाणा भगती मन्या, से भगत पए दर थाए। गुर शब्द दड़ावै रंग स्यों, बिन कृपा लया न जाए। जे सौ अमृत नीरी है, पी बिख फल लागै ताए। से जन सच्चे निर्मले, जिन सतगुर नाल प्यार। सतगुर का भाणा कमावंदे, बिख होमै तज बेकार। मन हठ कितै उपाय ना छूटी है, सिमरत शास्त्र शुद्ध हो जाए। मिल संगत साधु उभरे, गुर का शब्द कमाए। हर का नाम

गुर कै पाणे जे चल है ता अन दिन राचे है हर नाय रहाउ। पंखी बिरख सुहावड़े उड़े है चहो दिस जाहे, जेता उड़े है दुख घणे नित दाज है तै बिल लाहे। बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे, गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचे सहज सुपाए। साखा तीन नवारिया एक शब्द लिवलाए, अमृत फल हर एक है आपे देखवाई। मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना शाओ, तिन्ना पास ना बैसिए ओना घर ना ग्राओ। कटिय है तै नित जालिय है ओना शब्द ना नाओ, हुक्मे कर्म कमावणे पय किरत फराओ। हुक्मे दर्शन देखना जह भी जह तह जाऊं, हुक्मे हर हर मन वसै हुक्मे सच समाऊं। हुक्म ना जान है बपड़े भूले फिर है गवार, मन हट कर्म कम

जाय। हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाय। पाठ पढ़े ना बूझई भेखी भरम पलाय। गुरमती हर सदा पाया रसना हर रस समाय। माया मोह चकाया गुरमती सहज सुपाय। बिन शब्द जग दुखिया फिर मन मुखा नु गई खाय। शब्दे नाम त्याई है शब्दे सच समाय। माया भूले सिद्ध फिर है समाध न लगे सुपाय। तीने लो व्यापत है अधिक रही लपटाय। बिन गुर मुक्त ना पाई है ना दुगदा माया जाय। माया किसनो आखी है क्या माया कर्म कमाई। दुख सुख एहो जियो बद है हम मैं कर्म कमाई। बिन शब्द परम ना चुकई ना विचो हम मैं जाय। बिन प्रीति भगत ना हो गई बिन शब्द थाए ना पाई। शब्दे हम मैं मारी है माया का भ्रम जाय। नाम पदार्थ पाई है गुरमुख सहज सुपाय। बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए। भगत वश्चल हर मन वस्या सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर सालाही है कर्म परापत होए। श्री राग महला तीजा माया मोह मेरे प्रभ कीना आपे परम पलाए।

नाम जप हो सुख होए, गुर पूरा सालाही है, सहज मिले प्रभ सोई रहाओ, परम गया पहु भागिया, हर चरणी चित लाई, गुरमुख शब्द कमाई है, हर वसै मन आई, कर महल सच समाई है।

तै पाई। दैत पुत कर्म धर्म किस संजम ना पड़े, दूजा भाव ना जाने। सतगुरु भेटिया निर्मल हुआ, अन दिन नाम बखाने। एको पढ़े एको ना बूझे, दूजा अवर ना जाने। खट दर्शन जोगी सन्यासी, बिन गुर परम भलाई,

पंडित पर पर वाद बखान है बिन गुर परम पलाय लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाई जां नाउ चेतै तां गत पाई जां सतगुर मेल मलाय सत संगत मह नाम हर उपजै जां सतगुर मिलै सुपाई मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाई सत बलिहारी गुरे अपने बिटो जे हर सेती चित लाई सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर सेती रंग राता प्रभ निकट बसै सबना घट अंतर।

बिन गुर पाया न जाय, पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके, भेखी परम पलाय, गुर भेटे सहज पाया, अपनी कृपा करे रजाय। भाई रे गुर बिन सहज न होए, शब्द ही ते सहज उपजे, हर पाया सच सोए रहाओ, सहजे गाव्या थाई पवे, बिन सहजे कथनी बाद, सहजे ही भगत उपजे, सहज प्यार बैराग, सहजे ही ते सुख शांत होए, बिन सहजे जीवन बाद, सहज सलाही सदा सदा, सहज समाद लगाई, सहजे ही गुण उचरै।

सहज मलाएसी शब्द मलावा हुई, बिन सहज सब अंध है माया मोह गुबार। सहज ही सूझी पई सच्चा शब्द अपार, आपे बख्श मलायन पूरे गुर करतार। सहजे अधिष्ट पछाणिय निरपौ ज्योत।

शब्द समाये श्री राग महला तीजा सतगुर सेवे मन निर्मला भये पवित्र शरीर मन आनंद सदा सुख पाया भेटिया गहर गंभीर सच्ची संगत बैसना।

ती उपजय सच्चे सच्चा नाम जिन्नी हऊ मैं मार पछाणिया हऊ तिन बलिहारे जाऊं मन मुख सच ना।

राम पछाणिया गुरमति निज घर वास सच वेखण सच बोलना तन मन सच्चा हुए सच्ची साखी उपदेश सच

ता देख कै भज पए सतगुर सरना। सतगुर सच दड़ाया सदा सच संयम रहना। सतगुर सच्चा है बोहिथा शब्दे पवजल तरना। लख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त ना होई। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके दूजे पाए पथ खोई। सतगुर शब्द सुनाया बिन सच्चे अवर ना कोई। जो सच्चे लाए से सच लगे नित सच्ची कार करन। तिन्ना निज कर वासा पाया सच्चे महल रहन। नानक भगत सुखिये सदा सच्चे नाम रचन। श्री राग महला पंजवां। जा को मुश्किल अत बने टोई कोय न दे लागू होए दुश्मना। साख पे भज खले सबो भजै आसरा। चुकै सब असराऊ केत आवै उस पार ब्रह्म।

करी ना किस होवे काज कित आवे उस पार ब्रह्म ता निश्चल होवे राज जां को चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग ग्रिस्त कटम पलिटिया।

ब्रह्म तन मन शीतल होय, काम क्रोध मोहे वस किया, किरपन लोभ प्यार, चारे किलविख उन अग किए, हुआ असुर संगार।

पुरख सिमरत तरिया सास्त सिमरत बेद चार मोखागर बिचरी तपे तपी सर जोगिया तीरथ गमन करे खट कर्मा ते दुगणे पूजा करता नाए रंग ना लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए राज मिलख सिखदारियां रस भोगण बिसथार बाग सुहावे सोहणे चलै हुक्म अफार रंग तमाशे बहु विधि चाए लग रहिया चेतना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया बहुत तनाड अचारवंत सोभा निर्मल रीत मात पिता सुत पाइया साजन संग परीत लश्कर तरकस बंद बंद जियो जियो सगली कीत चेतना आयो पार ब्रह्म ता खड़ सातल दीत काया रोग ना छिदर किस ना किस काड़ा सोग मृत ना आवी चित तिस अहनस भोग भोग सब किस कीतो ने अपना जिये ना संक धरिया चेतना आयो पार ब्रह्म जम कंकर वस परिया कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवै साधु संग ज्यो ज्यो ओह वधाई है त्यों त्यों हर स्यों रंग दोहां सिरियां का खसम आप।

भोगिया, तू भोगी अंदर भोगिया, तेरा अंत न पाया, सुर्ग माच पयाल जियो, हों वारी हों वार ने, कुर्बान तेरे नाम नु रहाओ, तुद संसार पाया, सिरे सिर तंदे लाया, वेख है कीता अपना, कर कुदरत पासा टाल जियो, परगट पहार है जापदा, सब नावै नो परतापदा, सतगुर बाज ना पायो, सब मोही माया जाल जियो, सतगुर कहो बल जाइए, जित मिले परम गत पाइए, सुर नार मुन जन लोच दे, सो सतगुर दिया बुझाए जियो, सत संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम बखानी है, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो, एहो जगत परम पलाया, आपहु तुद खवाया, प्रताप लगा दोहागणी, भाग जिन्ना के नाए जियो, दोहागणी क्या निशानिया, खसम हो खुतियां फिर है निमानिया, मैले वेस तिन्ना कामणी, दुखी रहन विहाए जियो, सुहागणी क्या कर्म कमाया, पूर्व लिखिया फल पाया, नदर करे कह अपनी, आपे लए मलाए जियो, हुक्म जिन्ना नु मनाया, तिन अंतर शब्द वसाया, सहियां से सुहागणी, जिन सह नाल प्यार जियो, जिन्ना पाणे का रस आया, तिन विचों परम चुकाया, नानक सतगुर ऐसा जानिए, जो सब सह लए मलाए जियो, सतगुर मिले फल पाया, जिन विचों अहंकरण चुकाया, दुर्मत का दुख कटिया, भाग बैठा मस्तक आए जियो, अमृत तेरी बाणिया, तेरिया भगतां हृदय समाणिया, सुख सेवा अंदर रखे है, अपनी नदर कर है निस्तार जियो, सतगुर मिलिया जानिए, जित मिलिया नाम बखानिए, सतगुर बाज ना पायो, सब थकी कर्म कमाए जियो, हों सतगुर बिटो कुमाया, जिन भ्रम भुला मार्ग पाया, नदर करे जे अपनी, आपे लए रलाए जियो, तू सबना माहे समाया, तिन करतै आप लुकाया, नानक गुरमुख प्रगट होया, जां को जोत धरी करतार जियो, आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड दे साजिया, अपने सेवक की पैज रखिया, दोए कर मस्तक तार जियो, सब संग

मेरा गुण अवगन ना बिचारिया रब अपना बिरद संवारिया कंठ लाए कह रखियों लगे ना तत्ती वाउ जियो मैं मन तन प्रभु ते आया जिए इच्छे अड़ा फल पाया साहा पातशाह सिर कसम तू जप नानक जीवै नाउ जियो तुदे आपे आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सचो सच वर्तदा जिस भावै तिसै बुझाई जियो गुर प्रसादी पाया तिथै माया मोह चकाया कृपा करकै अपनी आपे लए समाए जियो गोपी नै गोवालिया तुदे आपे गोहे उठा लिया हुक्मी भांडे साजिया तू आपे भन सवार जियो जिन सतगुर स्यों चित लाया तिन्नी दूजा पाउ चुकाया निर्मल जोत तिन प्राणिया ओए चले जन्म सवार जियो तेरिया सदा सदा चंगे आईया मैं रात देह बड़े आईया अण मंगिया दान देवना कहो नानक सच संभाल जियो श्री राग महला पंजवा पै पाए मनाई सोए जियो सतगुर पुरख मलाया तिस जेवड़े अवन ना कोए जियो रहाओ गुसाई मेहंडा इठड़ा अम अबे थाम मिठड़ा भैन भाई सब सजना तुद जेहा ना ही कोए जियो तेरा हुक्मे सामने आया मैं सत का हल जो आया नाऊ बीजन लगा आस कर हर बोहल बख्श जमाए जियो हाँ गुर मिले एक पछाण दा दुइया कागल चेतना जान दा हर इक तै कार लायोन ज्यो भावे तिवें नभाए जियो तुसी भोगे हो पुंच हो भाई हो गुर दी बाण कवाए पैनाइयो हों हो आ माहर पिंड दा बाने आंदे पांज शरीक जियो हों आया सामे ते हंडिया पांज किरसान मुजेरे मेहंदिया कन कोई कड ना हंगई नानक बुट्टा कुग ग्राउ जियो हों वारी घुमा जामदा इक साहा तुद त्याए दा उजड़ थेहो वसायो हों तुद विटहो कुर्बान जियो हर इत्थै नित त्याए दा मन चिंदी सो फल पाए दा सबे काज सवारियन लाहियन मन की भुख जियो मैं छड़िया सबो तंदड़ा गुसाई सेवी सचड़ा नौ निध नाम निधान हर मैं पल्ले बद्दा शिक जियो मैं सुखी हूँ सुख पाया गुरे अंतर शब्द वसाया सतगुर पुरख विखालिया मस्तक तर कै हाथ जियो मैं बद्दी सच धर्म साल है गुरसिखा लहंदा पाल कै पैर धुआं पखा फेरदा तिस निव निव लगा पाए जियो सुन गल्ला गुर पह आया नाम दान इशनान दड़ाया सब मुक्त हुआ सै सारड़ा नानक सच्ची बेड़ी चाड़ जियो सब सिष्ट सेवे दिन रात जियो दे कान सुनहो अरदास जियो ठोक वजाए सब डिठियां तुसे आपे नयन छड़ाए जियो हुण हुक्म हुआ मेहरवान दा पै कोई न किसै रजान दा सब सुखाली बुठियां एहो हुआ हले मीराज जियो।

हमारे मन वांछत फल देत है स्वामी जी की बिरथा सारे नाथ के नाते सब कै साथे जप जुए जन्म ना हारी है नानक की बेनंती प्रभ पह कृपा कर पव जल तारी है दखना धूड़ी मजन साधखे साई थिए कृपाल लदे हब्बे थोकड़े नानक हर तन माल संत सुंदर स्वामी धाम भगत है विश्राम आसा लग जीव ते जियो मन तने गलतान सिमरत प्रभ नाम हर अमृत पीवते जियो अमृत हर पीवते सदा थिर थीवते बिकै बन फीका जानिया भये कृपाल गोपाल प्रभ मेरे साध संगत निद मानिया सर्ब सो सुख आनंद कन प्यारी हर रतन मन अंतर सीवते एक

आप मोहियो जस नानक आप सुनियो हे संत प्रेम ठगौरी पाए रिझाए गोविंद मन मोहया जियो संतन कै प्रसाद अगाध कंठे लग सोहया जियो हर कंठ लग सोहया दोख सब जोहया भगत लखियण कर वस पए मन सर्ब सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच पुजाया बहुड़ ना माया होया कर गहलीने नानक प्रभ प्यारी संसार सागर नहीं पोहया दखना साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो जिन्ना भाग मथाए सेना।

नह मरी। सतगुर दयाल कृपाल भेट तहरे, काम क्रोध लोभ मारिया। कथन न जाए अकथ स्वामी, सदकै जाए नानक वारिया। श्री राग महला चौथा बनजारा, एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद। हर हर उत्तम नाम है, जिन सिरिया सब कोई जियो। हर जी सबे प्रतपालदा, घट घट रमैया सोए। सो हर सदा त्याई है, तिस बिन अवर ना कोए। जो मोहे माया चित लाइंदे, से छोड़ चले दुख रोए। जन नानक नाम त्याया, हर अंत सखाई होए। मैं हर बिन अवर ना कोए, हर गुर सरनाई पाईऐ बनजारिया। मित्रा वड भाग प्राप्त होए रहाओ, संत जना मिन पाईया। हर किने न पाया नाव, विच हऊ मैं कर्म कमाम दे। ज्यों वेसवा पुत निनाओ, पिता जात ता होई है। गुर तुठा करे पसाओ, वड भागी गुर पाया। हर एलस लगा पाओ, जन नानक ब्रह्म पछाणिया। हर कीरत कर्म कमाओ, मन हर हर लगा चाओ। गुर पूरे नाम दरड़ाया, हर मिलिया हर प्रभ नाओ रहाओ। जब लग जोबन सास है, तब लग नाम त्याए। चलदिया नाल हर चल सी, हर अंते लए छडाए। हों बलिहारी तिनको, जिन हर मन उठायाए। जिन्नी हर हर नाम ना चेत्यो, से अंत गए पछताए। तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया, जन नानक नाम त्याए। मन हर हर प्रीत लगाए, वड भागी गुर पाया। गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ, हर आपे आप उपाएंदा। हर आपे देवैली, हर आपे परम भलाएंदा। हर आपे ही मत दे, गुरमुखा मन परगास है। से विरले के हौ बलिहारी तिनको, जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया, मन हर हर गुठड़ाए। मन हर हर जपन करे, हर गुर सरनाई भज पौ जिंदू। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ, घट घट रमैया मन वसै। क्यों पाईऐ कित भत, गुरपूरा सतगुर भेटीऐ। हर आए वसै मन चित, मैं तर नाम आधार है। हर नामै ते गत मत, मैं हर हर नाम वसाऊ है। हर नामे ही जत पत, जन नानक नाम त्याया। रंग रतड़ा हर रंग रत, हर त्याऊ हो हर प्रभ सत। गुर बचनी हर प्रभ जानिया, सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ। जिनको पूर्व लिखिया, से आए मिले गुर पास। सेवक पाए बनजारिया मित्रा, गुर हर हर नाम परगास। तन तन बन जवा पारिया, जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले, ते आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिन पाया, जिन्ना आप तुठा गुणतास। हर त्याऊ हो सास ग्रास, मन प्रीत लगी तिन्ना गुरमुखा। हर नाम जिन्ना रह रास रहाओ, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री राग की वार महला चौथा, सलोका नाल सलोक महला तीजा। रागां विच श्री राग है, जे सच तरे प्यार। सदा हर सच मन वसै, निःचल मत अपार। रतन अमोलक पाया, गुर का शब्द बीचार। जेवा सच्ची मन सच्चा, सच्चा शरीर अकार। नानक सच्चै सतगुर सेवै, सदा सच वापार। महला तीजा, होर बिरहा सब तात है। जब लग साहिब प्रीत ना होए, एहो मन माया मोहया। वेखण सुनण ना होए, सह देखे बिन प्रीत ना उपजै। अंधा क्या करे, नानक जिन अखी लीतियां। सोई सच्चा दे पौड़ी,
हर इको करता एक इको दीवान हर हर इक सैदा है अमर इको हर चित धर हर तिस बिन कोई नाही डर भ्रम भउ दूर कर हर तिसै नु सलाहे जे तुद रखै बाहर कर हर जिसनो होए दयाल सो हर जप भउ बिखम तर सलोक महला पहला दाती साहिब संदिया क्या चलै तिस नाल इक जा गंदे ना लहन इक ना सुतिया दे उठाल महला पहला सिदक सबूरी साधका सबर

तू आपे कमल अलिप्त है सह थां विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा एक निमख घड़ी कर ख्याल हर तुदहो बाहर किस नहीं गुर शब्दी वेख निहाल सलोक महला तीजा हुक्म ना जाने बहुतारो है अंदर धोखा नींद ना सोवे जे तन खसमै चले रजाई दर कर सोभा महल बुलाई नानक करमी एह मत पाई गुर प्रसादी सच समाई महला तीजा मनमुख नाम विहूणिया रंग कुसुंबा देख ना भुल इसका रंग दिन थोड़िया सोचा इसदा मुल दूजै लगे पच मोए मूर्ख अंध गवार बिष्टा अंदर कीट से पै पचह वारो वार नानक नाम रते से रंगले गुर कै सहज सुपाए भगती रंग न उतरै सहजे रह सुमाए पौड़ी सृष्ट उपाई सब तुद आपे रिजक संबाहया एक वल छल करके खाम दे मुंह कूड़ कुसत तिन्नी ढाया तुद आपे पावै सुह करह तुद ओतै कम ओए लाया इक ना सच बुझायो न तिना अतुट भंडार दिवाया हर चेत खाहे तिना सफल है अचेता हाथ तड़ाया सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित बेद बखान है माया मोह सवाई दूजै पाए हर नाम वसारिया मन मूर्ख मिले सजाए जिन जियो पिंड दिता तिस कबहू ना चेतै जो देंदा रिजक संभाए जम का पाहा गलहू ना कटिए फिर आवे जाए मनमुख किशु ना सूजै अंदोले पूर्व लिखिया कमाए पूरै भाग सतगुर मिले सुख दाता नाम वसै मन आए सुख मान है सुख पैनना सुखे सुख वेहाय नानक सो नाओ मनो ना विसारी है जित दर सच्चै सोभा पाए महला तीजा सतगुर सेव सुख पाया सच नाम गुणतास गुरमति आप पछाणिया राम नाम परगास सचो सच कमावना वडियाई वड्डे पास जियो पिंड सब तिसका सिफत करे अरदास सच्चै शब्द सलाहना सुखे सुख निवास जप तप संयम मनै माहि बिन नावै त्रिग जीवास गुरमति नाव पाइयै मनमुख मोहि विनाश ज्यों भावै त्यों राख तू नानक तेरा दास पौड़ी सब को तेरा तू सब सदा तू सब नारास सब तुदै पासो मंग दे नित कर अरदास जिस तू देहें तिस सब किश मिलै।

है कर्म परापत हो सत्य रत्ते गुर शब्द सियो तिन सच्ची सदा लिव होए नानक जिसनो मेले ना विछड़ै सहज समावै सोई महला तीजा सो भगौती जो भगवंत जानै गुर प्रसादी आप पछाणै धावत राखै इकत घर आणै जीवत मरै हर नाम बखाणै ऐसा भगौती उत्तम होए नानक सच समावै सोए महला तीजा अंतर कपट भगौती कहाए पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए पर निंदा करे अंतर मल लाए बाहर मल धोवै मन की झूठ ना जाए सत

पूर्व लिखिया सु मेटना न जाए, नानक बिन सतगुर सेवे मोख न पाए। पौड़ी सतगुर जिनी त्याया से कर न सुवाही, सतगुर जिनी त्याया से तृप्त अगाही। सतगुर जिनी त्याया तिन जम डर नाही, जिन को हुआ कृपाल हर से।

कै फूलड़ गंदे डुम पयास पौड़ी। सो ऐसा हर नाम त्याइए मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर लय छाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भूख गवाए। सो गुरमुख नाम जपिया वडभागी तिन निंदक दुष्ट सब पैरी पाए। नानक नाम आराध सबना ते वड्डा सब नावै अगे आन निवाए। सलोक महला तीजा वेस करे कुरूप कलखणी मन फूटै कूड़ियार। फिर कै भाणे ना चलै हुक्म करे गवार। गुर कै भाणे जो चलै सब दुख निवारण हार। लिखिया मेट ना सकी जो तुर लिखिया करतार। मन तन सौंपे कंत को शब्दे धरे प्यार। बिन नावे किने ना पाया देखो हृदय विचार। नानक सास वाले सुलखणी जे रावी सिरजनहार। महला तीजा माया मोह गवार है तिसदा ना दिसै उरवार ना पार। मनमुख अज्ञानी महा दुख पाए दे डुबे हर नाम विसार। भलके उठ बहु कर्म कमावे दूजै भाई प्यार। सतगुर सेवह अपना भव जल उतरे पार। नानक गुरमुख सच समावह सच नाम उरतार पौड़ी। हर जल थल महियल भरपूर दूजा नाही कोई। हर आप बह करे न्याऊ कूड़ियार सब मार कढोए। सचियारा दे वड्याई हर धर्म न्याऊ की ओए। सब हर की करहो उस्तत जिन गरीब अनाथ राख लियोए। जयकार कियो धर्मियां का।

को मां जाने जे दिन दिन अवध कटत है मोर मोर कर अधिक लाड तार पेखत ही जमराव हस्से ऐसा तैं जग भरम लाया कैसे बूझे जब मोहया है माया रहाओ कहत कबीर छोड़ बिख्या रस इत संगत निश्चौ मरना रमैया जपोह प्राणी अनत जीवन बाणी इन बिद भव सागर तरना जा तिस भावै ता लागे भाव परम भलावा विचों जाए उपजै सहज ज्ञान मत जागे गुर प्रसाद अंतर लिव लागे इत संगत नाही मरना हुक्म पछाण ता खसमै मिलना रहाउ दूजा श्री राग त्रिलोचन का माया मोह मन आग लड़ा प्राणी जरा मरण पहु विसर गया कटंब देख बिकसह कमला ज्यो पर कर जो है कपट नरा दूड़ा आयो हे जमह तना तिन आग लड़ै मैं रहन ना जाए कोई कोई साजन आई कहे मिल मेरे बीठला ले बाहड़ी वलाए मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए रहाओ अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी संसार सागर पै अमर पया माया मूठा चेत सनाही जन्म गवायो आलसिया बिखम घोर पंथ चालना प्राणी राव सस तह ना प्रवेशं माया मोह तब बिसर गया जा तजियले संसार आज मेरा मन प्रगट भया है पेखी अले धर्म राहो तह कर दल करन महाबली

बदत त्रिलोचन रामैया श्री राग भगत कबीर जियो का अचरज एक सुनोरे पंडिया अब किस कहन न जाई सुर नार गण गंधर्व जिन मोहे त्रिभुवन में खुली लाई राजा राम अनहद किंगुरी बाजे जा की दिष्ट नाद लिव लागे रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया कनक कलस एक पाया तिसमह तार चोय अत निर्मल रसमह रसन चुआया एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजिया तीन पवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा ऐसे ज्ञान प्रगटिया प्रखोतम कहो कबीर रंग राता और दुनी सब परम फलानी मन राम रसायन माता श्री राग

रे नार गर्भ कुंडल जब आसत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मादना अहनस एक अज्ञान सो नागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारिया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनहु बिसारिया फिर पछताव हैगा मूड़िया तू कमल कमत भ्रम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचर अनरादा रहाओ बाल बनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोहे प्यापै रस मिस मेद अमृत बिख चाखी तौ पंच प्रगट संतापै जप तप संयम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना अरादिया उछलिया काम काल मत लागी तौ आन सकत गल बांधिया तरुण तेज पर त्रय मुख जो है सर अपसर ना पछाणिया उन्मत काम महा बिख भूले पाप पुन ना पछाणिया सुत संपत देख इहो मन गर्भिया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तौ भग मुख जन्म बगोया कुंडर केस कुसुम ते तौले सपत पाताल की बाणी लोचन श्रम है बुद्ध बल नाठी ता काम पव समाधानी ता ते बिख भई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तौ पाछे पछताना निकुट्टी दे देख तुन उपजे मान करत नहीं बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कशु ना सूझे थाका तेज उड्या मन पंखी तारे आंगन ना सुखाई देनी कह सुनो रे भगत हो मरन मुक्त किन पाई श्री राग तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक।

तुम जो नायक आचो हो अंतर जामी प्रभ ते जन जानी जय जन ते स्वामी शरीर आराध्य मोको विचार देहू रविदास सम दल समझावे को राग माज चौपदी कर पहला महला चौथा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद हर हर नाम मैं हर मन पाया वड भागी हर नाम ते आया गुरपूरे हर नाम सिद्ध पाई को विरला गुरमत चले जियो मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले मेरा प्राण सखाई सदा नाल चले गुरपूरे हर नाम दड़ाया हर निश्चल हर तन पल्ले जियो हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया कोई आन मलावे मेरे प्राण जीवाया।

हे मेरी माई हर जियो कृपा करहो गुर मेलहो जन नानक हर तन पल्लै जियो माज महला चौथा मद सूदन मेरे मन तन प्राणा हौ हर बिन दूजा अवर ना जाना कोई सज्जन संत मिले बड़ भागी मैं हर प्रभ प्यारा दसै जियो हौ मन तन खोजी पाल पलाई क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई मिल सत संगत खोज दसाई।

करहो प्रित पाला। मेरा मात पिता गुर सत गुर पूरा, गुर जल मेल कमल विगसै जियो। मैं बिन गुर देखे नींद ना आवै, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावै। हर हर दया करहु गुर मेलहु, जन नानक गुर मिल रहस्य जियो। माज महला चौथा, हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सत संगत हर गुण गाए, जग भौजल।

मित्र सखा सो प्रीतम भाई, मैं दसे हर नर हरिय जियो, मेरी बेदन हर गुर पूरा जाने, हो रह ना सका बिन नाम वखाने, मैं औखद मंत्र दीजै गुरपूरे, मैं हर हर नाम उधरिय जियो, हम चातरक दीन सतगुर सरनाई, हर हर नाम बूंद मुख पाई, हर जल निद हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरिय जियो, माज महला चौथा हर जन संत मिलो मेरे भाई, मेरा हर प्रभ दसो मैं भुख लगाई, मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन भीजै जियो, मिल सतसंग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन पानी, हर हर अमृत हर मन भावे, मिल सतगुर अमृत पीजै जियो, वडभागी हर संगत पावे, भागहीन भ्रम चोटा खावे, बिन भागा सतसंग ना लब्बै, बिन संगत मैल परी जै जियो, मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन तारे, गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन पी जै जियो, माज महला चौथा हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया, मन हर रंग राता हर रस पी आया, हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस टुल टुल पौंदा जियो, आवहु संत मैं गल में लाईए, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाईए, हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौंदा जियो, वड भागी हर संत मलाया, गुरपुरे हर रस मुख पाया, भागहीन सतगुर नहीं पाया, मन मुख गर्भ जूनी नित पौंदा जियो, आप दयाल दया प्रभ धारी, मल हूं मैं बिखिया सब नेवारी, नानक हट पटन विच काया, हर लैंदे गुरमुख सौदा जियो, माज महला चौथा हौ गुण गोविंद हर नाम त्याई, मिल संगत मन नाम वसाई, हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी, मिल सतगुर हर रस की चै जियो, तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता, जाए पुछा जन हर की बाता, पाव मलोआ मल मल धोआ, मिल हर जन हर रस पीचै जियो, सतगुर दातै नाम दिड़ाया, वड भागी गुर दर्शन पाया, अमृत रस सच अमृत बोली, गुरपुरे अमृत लीचै जियो, हर सत संगत सत पुरख मिलाइय, मिल सत संगत हर नाम ते आइय, नानक हर कथा सुनी मुख बोली, गुर

प्रीतम दसे तिस कै हों वारिया मिल सत संगत लद्दा हर सज्जन हों सतगुर विटो कुमाइया जियो जह जह देखा तह तह स्वामी तू घट घट रविया अंतर जामी गुर पूरै हर नाल देखा लिया हों सतगुर विटो सदवारिया जियो एको पवन माटी सब एका सब एका जोत सबाइया सब इका जोत वरतै भिन भिन ना रली किसै धीर लाइया गुर प्रसादी एक नदनी आया हों सतगुर विटो बताया जियो जन नानक बोलै अमृत बाणी गुर सिखा कै मन प्यारी पाणी उपदेश करे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर पर उपकारिया जियो सत चौप दे महले चौथे के माज महला पंजवा चौप दे घर पहला मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई बिलप करे चात्रक की न्याई त्रिखा न उतरै शांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हों भोली जियो कोल कमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सहावा जियो सहज धुन बाणी चिर होवा देखे सारिंग पाणी तन सो देश जहां तू

रहाउ। एक घड़ी ना मिलते ता कल युग होता, हुण कद मिली है त्रिय तुद भगवंता। मोहे रहण ना विहावे नींद ना आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। हौ कोली जियो कोल कमाई, तिस सच्चे गुर दरबारे जियो रहाउ। भाग होवा गुर संत मलाया, प्रभ अवनासी घर मह पाया। सेव करी पल चसा न बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। हौ कोली जियो कोल कमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाउ। राग माज महला पंजवा, सारुत सुहावी जित तुद संभाली। सो काम सुहेला जो तेरी काली, सो रिदा सुहेला जित हृदय तू उठा। सबना के दातारा जियो, तू सांझा साहिब बाप हमारा। नौ निद तेरे अखुट भंडारा, जिस तू देहे सो तृप्त अघावे। सोई भगत तुम्हारा जियो, सब को वास्ते तेरी बैठा। घट घट अंतर तू है बुठा, सबे सांझी वाल सदाइन। तू किसे न दिस है बाहरा जियो, तू आपे गुरमुख मुक्त कराए। तू आपे मन मुख जन्म पुआए, नानक दास तेरे बलिहारे। सब तेरा खेल दसाहरा जियो, माज महला पंजवा। अनहद वाजे सहज सुहेला, शब्द आनंद करे सद केला। सहज गुफा महतारी लाई, आसन ऊच सवारिया जियो। फिर किर अपने ग्रह में आया, जो लड़ींदा सोई पाया। तृप्त अगाए रहया है संतो, गुरे अनुपो पुरख दिखारिया जियो। आपे राज ने आपे लोगा, आप निर्वाणी आपे भोगा। आपे तख्त बह सच न्याई, सब चूकी कूक पकारिया जियो।

साई परधानी सब श्रृंगार बने तिस ज्ञानी सा कुलवंती सा सब रहाई जो पिर कै रंग सवारी जियो महिमा तिसकी कहन ना जाए जो पिर मेल लई अंग लाए फिर सुहाग वर अगम अगोचर जन नानक प्रेम साधारी जियो माज महला पंजवा खोजत खोजत दर्शन चाहे पांत पांत बन बन अवगाहे निर्गुण सरगुण हर हर मेरा कोई है जियो आन मलावे जियो खट सासत विचरत मुख ज्ञाना पूजा तिलक तीरत इशनाना निवली कर्म आसन चौरासी इन मह शांत ना आवे जियो अनक बरख किए जप तापा गमन किया धरती परमाता एक खिन हृदय शांत ना आवे जोगी बहुड़ बहुड़ उठता वै जियो कर कृपा मुहि साध मलाया मन तन सीतल धीरज पाया प्रभ अवनासी बसिया कट पीतर हर मंगल नानक गावै जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म अपरंपर देवा अगम गोचर अलख अपेवा दीन दयाल गोपाल गोविंदा हर त्यावो हो गुरमुख गाती जियो गुरमुख मधसूदन निस्तारी गुरमुख संगी कृष्ण मरारी दयाल दमोदर गुरमुख पाईए होरत कित ना भांती जियो निरहारी केशव निरवैरा कोट जना जाके पूजह पैरा गुरमुख हृदय जा कै हर हर सोई भगत एकांती जियो अमोग दर्शन बेअंत अपारा वड समर्थ सदा दातारा गुरमुख नाम जपिए तित तरिए गत नानक विरली जाती जियो माज महला पंजवा कहया करना दिता लेना गरीबां अनाथां तेरा माना सब किश तू है मेरे प्यारे तेरी कुदरत कौ बल जाई जियो पाणे उजड़ पाणे राहा पाणे हर गुण गुरमुख गावाहा पाणे परम पवै बहुजूनी सब किस तिसै रजाई जियो ना को मूरख ना को सियाणा वरतै सब किस तेरा पाणा अगम अगोचर बेअंत अथाहा तेरी कीमत कहण ना जाई जियो खाक संतन की देहो प्यारे आए पया हर तेरे द्वारे दर्शन पेखत मन आगावे नानक मिलन सफाई जियो माज महला पंजवा दुख तदे जा विसर जावे भुख व्यापै बहु विद तावे सिमरत नाम सदा सुहेला जिस देवे दीन दयाला जियो सतगुर मेरा वड समरथा जिये संभाली ता सब दुख लत्ता चिंता रूप गई हो पीड़ा आप करे प्रतपाला जियो बारक वांगी हो सब किश मंगा दिन दे तोट नाही प्रभ रंगा पैरी पै पै बहुत मनाई दीन दयाल गोपाला जियो हो बलिहारी सतगुर पूरे जिन बंधन काटे सगले मेरे हृदय नाम दे निर्मल किए नानक रंग रसाला जियो माज महला पंजवा लाल गोपाल दयाल रंगीले गहर गंभीर बेअंत गोविंदे ऊच अथाहा बेअंत स्वामी सिमर सिमर हौ जीवा जियो दुख भंजन निदान अमोले निरपो निरवैर अथाहा अतोले अकाल मूर्त अजूनी संभो मन सिमरत ठंडा थीवा जियो सदा संगी हर रंग गोपाला ऊच नीच करे प्रतपाला नाम रसायन मन तृपतायन गुरमुख अमृत पीवा जियो दुख सुख प्यारे तुद त्याई एह समत गुरु ते पाई नानक की धर तू है ठाकुर हर रंग पार परीवा जियो माज महला पंजवा धन सो वेला जित मैं सत

सूत सेवक संग राता, प्रभ प्रत पाले सेवक सुख दाता, पानी पक्का पीसो सेवक कै, ठाकुर ही का आहर जियो, काट सिलक प्रभ सेवा लाया, हुक्म साहिब का सेवक मन पाया, सोई कमावै जो साहिब पावै, सेवक अंतर बाहर माहर जियो, तू दाना ठाकुर सब विद जान है, ठाकुर के सेवक हर रंग मान है, जो किस ठाकुर का सो सेवक का, सेवक ठाकुर ही।

सो गहर गंभीरा गौहर जीव माज महला पंजवा सब किश घर मह बाहर नाही बाहर टोले सो परम पलाही गुर प्रसादी जिन्नी अंतर पाया सो अंतर बार सुहिला जीओ चिम चिम वरसै अमृत तारा मन पीवै सुन शब्द बीचारा अणद बनोद करे दिन राती सदा सदा हर के ला जीओ जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया साध कृपा ते।

आपे तुद संभालिए दियो, तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुपत प्रगट प्रभ आपे, नानक दास सदा गुण गावे, एक पोरी नदर निहालिए दियो, माज महला

ते नेतर परवान जिन्नी दर्शन पेखा से कर भले जिन्नी हर जस लेखा से चरण सहावे जो हर मार्ग चले हौ बाल तिन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारी साध संग किन माही उधारी किल बिख काट हुआ मन निर्मल

जियो सुख भया दुख दूर पराना संत रसन हर नाम बखाना जल थल नीर भरे सरस पर।

दयाला सगले तृप्त अगाए जियो वाण त्रेण त्रे पवन की तुन हरिया कर्णहार खिन पीतर करिया गुरमुख नानक तिसै आराधी मन की आस पुजाए जियो माज महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदप तू

तेरा माणा, तुझ बिन दूजा अवर न कोई। सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, जी जंत सब तुद उपाय। जित जित पाणा तित तित लाए, सब किस कीता तेरा हुवै। नाही किस असाड़ा जियो, नाम त्याए महा सुख पाया।

जी प्राण प्रभ मन है आधारा, भगत जीव है गुण गाए अपारा, गुण निदान अमृत हर नामा, हर त्याए त्याए सुख पाया जीओ, मनसा तार जो करते आवे, साध संग जन्म मरण मटावे, हास मनोरथ पूरन होवे, टेटत गुर दरसाया जीओ, अगम अगोचर किस मित नहीं जानी, साधक सिद्ध त्याव है ज्ञानी, खुदी मिटी चूका पुलावा,

ते गुर प्रसाद मन धारू तुमरी कृपा ते होए परगासा सर्व मया प्रतपाला जीओ सत सत सत प्रभ सो।

सुख पाया, ठांड पाई प्रभ आपी जीव, सब किस बहुतो बहुत उपाया, कर कृपा प्रभ सगल रजाया, दात करहु मेरे दातारा, जी जंत सब त्रापे जीव, सच्चा साहेब सच्ची नाई, गुर प्रसाद तिस सदा त्याई।

खिन पीतर हर हर हर गुण जापे जीओ माज महला पंजवा। आओ साजन संत मीत प्यारे मिल गाव है गुण अगम अपारी गावत सुनत सबे ही मुक्ते सो त्याई है जिन हम।

कर कृपा प्रभ भक्ति लाभ हो सच नानक अमृत पिए जियो माज महला पंजवां पये कृपाल गोविंद गुसाई मेघ वरसै सबनी थाई दीन दयाल सदा कृपाला ठांड पाई करतारी जियो अपने जी जंत प्रित पारी ज्यों बारक माता संभारी दुख भंजन सुख सागर स्वामी देत सगल आहारी जियो जल थल पूर रहया मेहरवाना सद बलिहार जाइए कुर्बाना रैन दिन सतिस सदा त्यानी जे खिन मह सगल उदारे जियो राख लिए सगले प्रभ आपे उतर गए सब सोग संतापे नाम जपत मन तन हरियावल प्रभ नानक नदर निहारे जियो माज महला पंजवां जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे।

हरु खी रोटी खाए संभाले, हरे अंतर बाहर नदर निहाले, खाए खाए करे बद फैली, जान विसु की वाड़ी जियो, संतां से तिरंग न लाए, साकत संग विकर्म कमाए, दलाब देखोई अज्ञानी, जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो, तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुरु गोपाला।

नानक दान किया दुख भंजन रत्ते रंग रसाली जियो माज महला पंजवा मन तन तेरा तन पी तेरा तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा जियो पिंड सब रास तुम्हारी तेरा जोर गोपाला जियो सदा सदा तू है सुखदाई।

सगल मनोरथ पूरन होए, कदे ना होए दुखाला जीओ। माज महला पंजवा, पार ब्रह्म प्रभ मेघ पठाया, जल थल महियल दह दिस वरसाया। शांत भई बुझी सब तृष्णा, आनंद भया सब ठाई जीओ। सुख दाता दुख भंजन हारा, आपे बख्श करे जी सारा। अपने कीते नो आप प्रतपाले, पै पैरीत सह मनाई जीओ। जा की सरन पया गत पाईए, सास सास हर नाम ते आईए। तिस बिन होर

आठ पहर तुद प्याई जीओ माज महला पंजवा सबे सुख पए प्रभ तुठे गुरपूरे के चरण मन उठे सहज समाद लगी लिव अंतर सोरा।

गुर के चरण बसे मन माही, अंगीकार किया तिन करतै, दुख का डेरा टाहया जीओ, मन पन वसया सच्चा सोई, बिखड़ा थान ना दिसै कोई, दूत दुश्मन सब सज्जन हुए, एको स्वामी आहया जीओ, जो किछ करे सो आपे आपै, बुद्ध सियाणप किशु ना जापै, अपनिया संतां नु आप सहाई, प्रभ भरम भलावा लाहया जीओ, चरण कमल जन का आधारु, आठ पहर राम नाम वपारु, सहज आनंद गावे है गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्ब समाहया जीओ, माज महला पंजवा, सो सच मंदर जित सच त्याई है, सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है, सा धरत सुहावी जित वस है हर जन, सच्चे नाम विटहो कुरबाणो जीओ, सच वडाई कीम न पाई, कुदरत कर्म न कहना जाई, त्याए त्याए जीव है जन तेरे, सच शब्द मन माणो जीओ, सच सलाहन वड भागी पाई है, गुर प्रसादी हर गुण गाई है।

जय सागर कटिया जम की पासा जीओ चार पदार्थ हर की सेवा पार जात जप अलख अपेवा काम क्रोध किल बिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जीओ पूर्ण भाग भये जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वसिया जिस अंतर परवान गिरस्त उदासा जीओ माज महला पंजवा सिमरत नाम हृदय सुख पाया कर कृपा भगती प्रगटाया संत संग मिल हर हर जपिया।

ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर प्रभ सबना गल्ला जोगा जीओ छिन मह थाप उथापन हारा आप एकंती आप पसारा लेप नहीं जग जीवन दाते दर्शन दिते लहन विजोगा जीओ अंचल लाए सब शिष्ट तराई अपना नाओ आप जपाई गुर बोहित पाया।

निर्मल जिन देखे सब उतरह कलमल नानक नाम त्याए त्याए जीवै बिनसिया भ्रम भउ तीठा जीउ माज महला पंजवा झूठा मंगण जे कोई मांगै तिस कौ मर के घड़ी ना लागै पार

अन दिन नित जागी बाहा पकड़ तिस स्वामी मेले जिस कह मस्तक लहना चरण कमल भगता मन उठे बिन परमेश्वर सगले मुठे संत जना की धूड़ नित बांच है नाम सच्चे का गहना उठत बैठत हर हर गाइय जिस सिमरत वार निह चल पाई है नानक कहो प्रभ होए दयाला तेरा कीता सहना राग माज अष्टपदियां।

पाया माया मोह चुकावणिया हौ वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारणिया गुरमती परगास हुआ जी अन दिन हर गुण गावणिया रहाउ तन मन खोजे ता नाउ पाई धावत राखै खाक रहाई गुर की बाणी अन दिन गावै सहजे भगत करावणिया इस काया अंदर वस्त असंखा गुरमुख साच मिलै ता वेखा नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द बजावणी।

जन निर्मल दर सच्चे नाम सुहावनिया लेखा मांगे तां किन दीए सुख नाही फुन दूऐ तीए आपे बख्श लए प्रभ साचा आपे बख्श मलावनिया आप करे तै आप कराए पूरे गुर कह शब्द मलाई नानक नाम मिले वडियाई आपे मेल मलावनिया माज महला तीजा इको आप फिरे परछन्ना।

तैनाही जमपुर बद्दा दुख सहाही अन्ना बोला किस नदर ना आवे मन मुख पाप पचावनिया इक रंग राते जो तुद आप निवलाई पाए भगत तेरे मन पाए सतगुर सेवन सदा सुख दाता सब इच्छा आप पुजावनिया हर जीओ तेरी सदा सरनाई आपे बख्शे दे वडियाई जम काल तिस नेड़ ना आवे जो हर हर नाम त्यावनिया अण दिन राते जो हर पाई मेरे प्रभ मेले मेल मलाई सदा सदा सच्चे तेरी सरनाई तू आपे सच बुझा बनिया जिन सच जाता से सच समाणी हर गुण गावे सच बखाणी नानक नाम रते बैरागी।

गुर कै शब्द परख परखाया, जिन सच पल्लै सच बखान है, सच कसवटी लावणिया, हो वारी जी ओ वारी, गुर की बाणी मन वसावणिया, अंजन माहे निरंजन पाया, ज्योति ज्योत मलावणिया, रहाउ इस काया अंदर बहुत पसारा, नाम निरंजन अत अगम अपारा, गुरमुख हो ऐसो ही पाई, आपे बख्श मलावणिया, मेरा ठाकुर सच दृढ़ाई।

कह आप उपाया, दुबदा दूजा त्रिविद माया, चौथी पौड़ी गुरमुखी उची, सचो सच कमावणिया, सब है सच्चा जे सच्चे पावे, जिन सच जाता सो सहज समावे, गुरमुख करनी सच्चे सेवे, सच्चे जाए समावणिया, सच्चे बाजो को अवर ना दुआ, दूजे लाग जग खप खप मुआ, गुरमुख होवे सो एको जाने, एको सेव सुख पावणिया, जी जंत सब सरण तुम्हारी, आपे धर देख कच्ची।

या भरपूर नानक आपे आप वरतै गुरमुख सोजी पावणिया। माज महला तीजा अमृत बाणी गुर की मीठी गुरमुख विरलै किनै चख डीठी अंतर प्रगास महारस पीवै दर सच्चै।

तलाया। तुद सलाहे नारजा कबहू सच्चे नावे की भुख लावणिया। एको वेखा अवर ना बिया गुर प्रसादी अमृत पिया।

मन वसाई आंदिन सदा रहे पै अंदर पै मार परम चकावणिया परम चकाया सदा सुख पाया गुर प्रसाद परम पद पाया अंतर निर्मल निर्मल बाणी हर गुण सहजी गावणिया सिमरत शास्त्र वेद बखाणे परमे भूला।

सावणिया गुर कृपा ते हर निरपौ ध्याया बिख पौ जल शब्द तरावणिया रहाउ मन मुख मुग्ध करह चतुराई नाता धूता थाए ना पाई जिहा आया तेहा जासी कर अवगण पछो तावणिया मन मुख अंधे किशु ना सूझै मरन लखाए आए नहीं बूझै मन मुख कर्म करे नहीं पाए बिन नामे जन्म गवावणिया सच करनी शब्द है सार पूरा गुर पाईए मुख द्वार अन दिन बाणी शब्द सुनाई सच राते रंग रंगावणिया रसना हर रस राती

सहज मनावणिया जिस अंदर रंग सोई गुण गावे गुर कै शब्द सहजे सुख सुमावे हों बलिहारी सदा तिन विटू गुर सेवा चित लावणिया सच्चा सचो सच पतीजै।

सो पाई, गुर प्रसादी हो मैं जाई। नानक नाम वसै मन अंतर, दर सच्चै सो बा पावणिया। माज महला तीजा, सतगुर सेवियां वड्डी वड्याई। हर जी अचिंत वसै मन आई, हर जी ओ सफले ओ बिरख है अमृत। जिन पीता तिस तिखा लहावणिया, हों वारी जी ओ वारी। सच संगत मेल मनावणिया, हर सत संगत आपे मेलै। गुर शब्दी हर गुण गावणिया, रहाउ सतगुर सेवी शब्द सुहाया। जिन हर का नाम मन वसाया, हर निर्मल हों मैं मैल गुआई। दर सच्चै सो

निर्मल बाणी शब्द बखाण है, सच्चे सेव सदा सुख पायन, नौ निद नाम मन वसावणिया, सुथान सुहाया जो हर मन पाया, सत संगत बह हर गुण गाया, अन दिन हर सलाह है साचा, निर्मल नाद बजावणिया, मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, कूड़ कमावण दुख लागे पारा, परमे भूले फिरन दिन राती, मर जन्म है जन्म गवावणिया, सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर कै शब्द आधारा, नानक नाम मिले वडियाई, दुख सुख सम कर जाननिया, माज महला तीजा, तेरिया खानी तेरिया बाणी, बिन नावे सब परम पलानी।

हर सच्चा गुर भगती पाईऐ सहजे मन वसावणिया रहाउ सतगुर सेवे ता सब किछ पाए जेहि मनसा कर लागै तेहा फल पाए सतगुर दाता सबना वथू का पूरै भाग मलावणिया इहो मन मैला इक न त्याए अंतर मैल लागी बहु दूजै पाए तट तीर्थ दसंतर भवै अहंकारी होर वधेरै होमै मल लावणिया सतगुर सेवे ता मल जाए जीव तमरै हर स्यों चित लाए हर निर्मल सच मैल न लागै सच लागै मैल गवावणिया बाज गुरु है अंध गुबारा।

भिदमाया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके चौथे पद की सार ना पावणिया आपे रंगे रंग चढ़ाई से जल राते गुर शब्द रंगाई हर रंग चढ़िया अत अपारा हर रस रस गुण गावणिया गुरमुख रिद सिद्ध सच संयम सोई गुरमुख

गुरमुख जात पत सब आपी, नानक गुरमुख नाम त्याई, नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा, उत्पत परलो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर ओ पत होवे। गुरमुख वरतै सब आपे सच्चा, गुरमुख अपाए समावणिया। हौ वारी जियो वारी, गुरपूरा मन वसावणिया। गुर ते शांत भगत करे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया। रहाउ गुरमुख धरती गुरमुख पाणी, गुरमुख पवन बै संतर।

पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, बिन भागा गुर पाई है नाही, शब्द है मेल मलावणिया, गुरमुख अलिप्त रह संसारी, गुर कै तकिय नाम अधारी, गुरमुख जोर करे क्या तिसनो, आपे खप दुख पावणिया, मनमुख अंधे सुध ना काई, आत्म घाती है जगत कसाई।

निंदा कर कर बहु भार उठावे, बिन मजूरी भार पहुंचावणिया। इहो जग वाड़ी मेरा प्रभ माली, सदा संभाले को नाही खाली। जेही वासना पाए ते ही वरतै, वासु वास जना वणिया। मनमुख रोगी है संसारा, सुखदाता विसरिया अघम अपारा। दुखिए नित फिर है बिललांदी, बिन गुर शांत।

आई अमृत नाम दिया वणिया रहाउ। अमृत बोलै सदा मुख वैणी, अमृत वेखै परखै सदा नैणी। अमृत कथा कहै सदा दिन राती, अवरा आख सुनावणिया। अमृत रंग रत्ता लिवलाई, अमृत

अमृत पीवै जिसनो आप पी आए, गुर प्रसादी सहज लिभ लाए, पूरन पूर रहया सब आपे, गुरमत नदरी आवणिया, आपे आप निरंजन सोई, जिन सिर जीतने आपे गोई, नानक नाम संभाल सदा तू, सहजे सच समावणिया, माज महला तीजा, से सच लागे जो तुद पाई।

मन निश्चल निज घर वासा पावणिया। गुरु कै शब्द हृदय दिखाया, माया मोह शब्द जलाया। सचो सचा वेख सलाही, गुर शब्दी सच पावणिया। जो सच राते तिन सच्ची लिव लागी, हर नाम संभाल है से वडभागी। सच्चा शब्द आप मलाई, सत संगत सच गुण गावणिया। लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवे, ओहो अगम अगोचर शब्द सुधो होवे। अन दिन सच शब्द सलाही, होर कोई ना कीमत पावणिया। पढ़ पढ़ था के शांत न आई, तृष्णा जाले सुध न काई। बिख विहाज है बिख मोह प्यासी।

सब थाई ज्योति ज्योत मलावणिया तिसना अगन जलै संसारा लोभ अभिमान बहुत अहंकारा मर मर जन्मै पत गुआई अपनी बिरथा जन्म गुआवणिया गुर का शब्द को विरला बूझै आप मारे ता त्रे पवन सूझै।

जुहया जम काली माया मोह इस मनह नचाई अंतर कपट दुख पावनिया गुरमुख भगत जा आप कराई तन मन राता सहज सुपाई बाणी बजे शब्द बजाई गुरमुख भगत था।

माज महला तीजा आत्म राम परगास गुर ते होवे। हौं मैं मैल लागी गुर शब्दी खोवे। मन निर्मल अन दिन भगती राता भगत करे हर पावणिया। हौं वारी जियो वारी आप भगत करन अवरा भगत करावणिया। इन्ना भगत जना को सद नमस्कार कीजै जो अन दिन हर गुण गावणिया। रहाओ आपे करता कारण कराई जित भावै तित कारै लाई। पूरै भाग गुर सेवा होवै गुर सेवा ते सुख पावणिया। मर मर जीवै तां किछ पाई गुर प्रसादी हर मन वसाई। सदा मुकत हर मन वसाई सहजे सहज समावणिया। बहु कर्म कमावै मुक्त ना पाए दे संतर भवै दूजै पाए खुआए। बिरथा जन्म गवाया कपटी बिन शब्दै दुख पावणिया। धावत राखै ठाक रहाई गुर प्रसादी परम पद पाई। सतगुर आपे मेल मलाई मिल प्रीतम सुख पावणिया। एक कूड़ लागे कूड़े फल पाई दूजै पाए बिर

हार दुख पाए मन मुके अंधे सूझ नाही फिर घेरे आए गुरमुख वत पावणिया गुर प्रसादी सच्चा हर पाए मन तन वेखै हउमै मैल जाए बैस सुथान सद हर गुण गावे।

दिन राती गुरमति शब्द सुनावणिया बिन शब्द अंतर अनेरा ना वस्त लह ना चूकै फेरा सतगुर हाथ कुंजी होरत दर खुले नाही गुरपूरै भाग मलावणिया गुपत प्रगट तू सबनी थाई गुर प्रसादी मिल सोजी पाई नानक नाम सलाहे सदा तू गुरमुख मन वसावणिया माज महला तीजा गुरमुख मिले मलाए आपे काल ना जो है दुख ना संतापे हौ मैं मार बंधन सब तोड़े गुरमुख शब्द सुहावणिया हौ वारी जीओ वारी हर हर नाम सुहावणिया गुरमुख गावे गुरमुख नाचे।

गुरमुख हर दर शोभा पाई, गुरमुख विचों आप गवाई, आप तरह कुल सगले तारी, गुरमुख जन्म सवारनिया, गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर, गुरमुख हौ मैं चूकै पीर, गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे, गुरमुख सहज समावनिया, गुरमुख नाम मिले वडियाई, गुरमुख गुण गावे शोभा पाई, सदा आनंद रह दिन राती, गुरमुख शब्द करावनिया, गुरमुख अन दिन शब्द दे राता, गुरमुख जुग चारे है जाता, गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल, शब्द भगत करावनिया, बाज गुरु है अंध अंधारा,

नानक जिस नदर करे सो पाए, कर कृपा मन वसावणिया। माज महला तीजा, हर आपे मेले सेव कराए, गुर कै शब्द।

सत सच्चा हृदय वसावणिया, सच्चा नाम सदा है निर्मल, गुर शब्दी मन वसावणिया। रहाउ आपे गुरदाता कर्म विधाता, सेवक सेव है गुरमुख हर जाता। अमृत नाम सदा जन सू है, गुरमत हर रस पावणिया। इस गुफा में एक थान सुहाया, पूरे गुर हम मैं परम चुकाया। अन दिन नाम सलाहन रंग राती,

रतियों मासा तोल कढावनिया पेयड़ फिर चेते नाही दूजे मुठी रोवै ताही खरी कवाले उपरूप कलखणी सुपने फिर नहीं पावनिया पेयड़ फिर मन वसाया पूरे गुर हदूर दिखाया कामन फिर राख्या कंठ लाई शब्दे फिर रावै सेज सुहावनिया।

पढ़ बुझ मन वसावणिया गुरमुख पढ़े हर नाम सलाह है दर सच्चा सोभा पावणिया रहाउ अलक अपेयो हर रहे आसमाई उपाय न किती पाया जाई कृपा करी ता सतगुर भेटै नदरी मेल मनावणिया दूजै पाए पड़ै नहीं दूजै त्रेविद माया कारण लूजै त्रेविद बंधन टूटै गुर शब्दी मुक्त करावणिया एहो मन चंचल वस न आवै दुबदा लागै दह दिस धावै बिख का कीड़ा बिख मैं राता बिख ही माही पचावणिया हौ हौ करे तै आप जनाई बहु कर्म करै किस थाए ना पाई तुझते बाहर किछु ना होवै बख्शे शब्द सुहावणिया उपजै पचै हर बूजै नाही अन दिन दूजै पाए फराही मन मुख जन्म गया है बिरथा अंत गया पछतावणिया फिर परदेश शिंगार बनाई मन मुख आंधिया से

शब्द पुछाता अन दिन भगत करे दिन राती सहजे ही सुख पावनिया सब मैं वरतै इको सोई गुरमुख विरला बूझै कोई नानक नाम रते जन सोहै कर किरपा आप मलावनिया माज महला तीजा मनमुख पढ़ै पंडित कहावै दूजै पाए महा दुख पावै बिख्या माते किस सूजै नाही फिर जूनी आवनिया हौ वारी जियो वारी हौ मैं मार मनावनिया गुर सेवा ते हर मन वसिया हर रस सहज पी आवनिया रहाउ वेद पढ़ै हर रस नहीं आया वाद वखाणै मोहे माया अज्ञान मती सदा अंधियारा गुरमुख बूझ हर गावनिया अकथो कथिया शब्द सुहावै गुरमती मन सचो पावै सचो सच रवै दिन राती इहो मन सच रंगावनिया जो सच रत्ते तिन सचो पावै आपे दे ना पछो तावै गुर कै शब्द सदा सच जाता मिल सच्चे सुख पावनिया कूड कसत किन्ना मैल ना लागै गुर प्रसादी अन दिन जागै निर्मल नाम वसै कट पीतर ज्योति ज्योत मलावनिया त्रै गुण पढ़ै हर तत ना जानै मूलों भुले गुर शब्द ना पछाणै मोह व्यापे किस सूजै नाही गुर शब्दी हर पावनिया वेद पकारै त्रिविध माया।

जलाई सो हर सिउ चित लाई हर दर महली शोभा पावणिया रहाउ। देवी देवा मूल है माया सिमरत शास्त्र जिन उपाया काम क्रोध पसरिया संसारी आए जाए दुख पावणिया तिस विच ज्ञान रतन एक पाया गुर प्रसादी मन वसाया जात सत संयम सच कमावै गुरपूरै नाम त्यावणिया पे अड़ै तन परम फुलाणी दूजै लागी फिर पछोताणी हलत पलत दोवै गवाई सुपने सुख ना पावणिया पे अड़ै तन कंत संभाले गुर प्रसादी वेखै नाले पिरकै सहज रह रंग राती शब्द शिंगार बनावणिया सफल जन्म जिन्ना सतगुर पाया दूजा भाओ गुर शब्द जलाया एको रव रहिया घट अंतर मिल सत संगत हर गुण गावणिया सतगुर ना सेवे सो काहे आया त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया मनमुख नाम चेतना आवे बिन नावे बहु दुख पावणिया जिन शिष्ट साजी सोई जाने आपे मिले शब्द पछाणे नानक नाम मिलया तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लखावणिया माज महला चौथा आदि पुरख अपरंपर।

प्रीतम मेरे, तुद बिन अवरना कोई जाचा, गुर प्रसादी तू पावणिया, अगम अगोचर मित नहीं पाई, अपनी कृपा करह तू नह मलाई, पूरे गुर कै शब्द ते आईऐ, शब्द सेव सुख पावणिया, रसना गुणवंते गुण गावे, नाम सलाहे सच्चे पावे, गुरमुख सदा रह रंग राती, मिल सच्चे सोभा पावणिया, मनमुख कर्म करे अहंकारी, जुए जन्म सब बाजी हारी, अंतर लोभ महा गुबारा, फिर फिर आवण जावणिया, आपे करता दे वडियाई, जिनको आप लिखत तुर पाई, नानक नाम मिले पौ भंजन, गुर शब्दी सुख पावणिया, माज महला पंजवा कर पहला, अंतर अलख न जाई लखिया, नाम रतन लै गुजा रखिया, अगम अगोचर सब

सर्वनिवासी सबना कह मन पावनिया साचा साहिब गुरमुख जापै पूरे गुर कै शब्द संजापै जिन पिया से त्रिपतासी सच्चे सच अगामणिया तिस कर सहजा सोई सोहेला अणद बनोद करे सद केला सो तनवंता सो वड साहा।

आज महला पंजवां, कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता, कौन सो ज्ञानी कौन सो बक्ता, कौन सो गृही कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो, किन बिद बादा किन बिद छूटा, किन बिद आवण जावण टूटा, कौन कर्म कौन नेह कर्मा, कौन सो कह कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिलिया किन बिद बिछरै, एह बिद कौन प्रगटाए जियो, कौन सो अखर जित धावत रहता, कौन अपदेश जित दुख सुख सम सहता, कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याय, किन बिद कीर्तन गाए जियो, गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख बक्ता, तन गिरही उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जियो, हौ मैं बादा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवण जावण टूटा, गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा, गुरमुख करे सो सुपाए जियो, गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया मनमुख विछरै, गुरमुख बिद प्रगटाए जियो, गुरमुख अखर जित तावत रहता, गुरमुख अपदेश दुख सुख सम सहता, गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याय, गुरमुख कीर्तन गाए जियो, सगली बणत बणाई आपे, आपे करे कराए थापे, इकस ते होयो आनंता, नानक एकस माहि समाए जियो, माज महला पंजवां, प्रभ अवनासी ता क्या काड़ा, हर भगवंता ता जन खरा सुखाला।

कर कृपा दास नदर निहाली गुण गावे है पूर्ण अबनासी कह सुन तोट ना आवणिया एथे उथे तू है रखवाला मात गर्भ में तुम ही पाला माया अग्न ना पोहे तिनको रंग रते गुण गावणिया क्या गुण तेरे आख संभाली मन तन अंतर तुद नदर निहाली तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी तुद बिन अवर ना जाननिया जिसको तू प्रभ पया सहाई तिस तत्ती वाओ न लगे काई तू साहेब सरन सुखदाता सत संगत जप प्रगटावणिया तू ऊच अथाह अपार अमोला तू साचा साहेब दास तेरा गोला तू मीरा साची ठकुराई नानक बल बल जावणिया माज महला पंजवा कर दूजा नित नित दयो संभाली है मूल ना मनहु विसारी है रहाव संतां संगत पाई है जित जम कह पंथ ना जाई है तोसा हर का नाम ले तेरे कुलह ना लागे गाल जियो जो सिमरन दे साई है नरक ना से पाई है तत्ती वाओ ना लग गई जिन मन बुठाया आए जियो से सुंदर सोहने साध संग जिन बहने हर तन जिनी संजिया से

जित घर हर कंतना प्रगटई पाठ नगर से ग्राम सरब सिंगार तंबोल रस सन देहि सब खाम।

जिसका निह चल ताम चेत गोविंद अरादिया हुए आनंद घना संत जना मिल पाइए रसना नाम पणा जिन पाया प्रभ अपना आई तिसह गणा एक खेन किस बिन जीवना बिरथा जन्म जना जल तल मई अल पूरिया रव्या विच बना सो प्रभ चेतना आवई कितड़ा दुख गणा जिन्नी राव्या सो प्रभु तिन्ना भाग मना हर दर्शन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना चेत मलाई सो प्रभु तिसकै पाए लगा वैसाख तीरन क्यों वाडियां जिन्ना प्रेम बशो हर साजन पुरख वसार कै लगी माया तो पुत्र कलत्तर ना संग तना हर अवनासी ओ पलच पलच सगली मुई झूठ तंद मोह इक सहर के नाम बिन अगे लई है खोहे दयो वसार विगुचना प्रभ बिन अवर ना कोई।

प्राप्त होई। वै साख सुहावा तां लगै जां संत भेटै हर सोई। हर जेठ जुड़ंदा लोड़ी है जिस अगै सब निवन। हर सज्जन दावन लगै।

मन तन प्यास दर्शन घणी कोई आण मलावे माय संत सहाई प्रेम के हो किन कै लागा पाए बिन प्रभ क्यों सुख पाईए दूजी ना ही जाए जिन्नी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए आप त्याग बिनती करह लेहो प्रभु लड़ लाए जो हर कंत मलाइया से विछड़ कतह ना जाए।

दोष ना काहू जोग परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग खिन मह कौड़े होए गए जितड़े माया भोग विच ना कोई कर सके किस ठहरू वह रोज कीता किशू

तन मन मौलिया राम सिंहु संग साध सहेलड़िया साध जना ते बाहरी से रहन अके लड़िया तिन दुख ना कबहु उतरे से जम कै बस पड़िया जिन्नी राव्या प्रभ अपना से दिसन नित खड़िया रतन जवे हर लाल हर कंठ तिना जड़िया नानक बांछे धूड़ तिन प्रभ सरणी दर पड़िया मंगर प्रभ आराधना बहुड़ ना जन्मड़िया पोख तुखार ना व्यापई कंठ मिलिया हर ना मन भिद्या चरनार बिंद दर्शन लगड़ा सा ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी ला बिख्या पोहे ना सकई मिल

लाख बेरियां हर सज्जन अगम अगाह शरम पई नारायण नानक दर पैया पोख सोहंदा सर्ब सुख जिस बख्शे वे परवाह माग मज्जन संग साधुआ तूड़ी कर इशनान हर का नाम त्याए सुन सबना नो कर दान जन्म कर्म मल उतरे।

हर गुरु पूरा आराध्या दरगाह सच खरी सर्व सुखा निद चरण हर भौजल बिखम तरी प्रेम भगत तिन पाईया बिख्या नाही जरी कूड़ गए दुबदा नसी पूर्ण सच भरे पार ब्रह्म प्रभ सेवंदी मन अंदर एक तरे महादिवस मूरत भले जिसको नदर करे नानक मंगै दर्श दान कृपा करहु हरि माज महला पंजवां दिन रैन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवी सतगुर अपना हर सिमरी दिन सब रैन आप त्याग सरनी पवां।

हर ते विछोड़े से सुख ना वसन पैन हर फिर बेन चैन ना पाई खोज दिते सब गैन आप कमाण विछोड़ी दोष ना काहू देन कर कृपा।

जिन रच रचिया तिसह ना जाने, अंधा अंध कमाई जां भजै तां ठीक कर होवै, घाड़त घड़ी ना जाई। नानक गुर बिन नाही पत, पत बिन पार ना पाई। महला दूजा, दिन दे थाम हूं दिता चंगा, मन

कर्म कमावे सो चहो कुंडी जानिए जो धर्म कमावे तिस धर्म नाउ होवे पाप कमाणे पापी जानिए तू आपे खेल करह सब करती क्या दूजा आख बखाणीए जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति विच तू बोले विण ज्योति कोई किस करे हो दिखा सियाणी है नानक गुरमुख नदरी आया हर इको सुगड़ सुजानी है पौड़ी तुदे आपे जगत अपायक है तुदे आपे तंद लाया मोह ठगौली पायक है तुदे आप हो जगत खुआया जिसना अंदर अग्न है नह तिपतै भुखा त्याया सहसा एहो संसार है मर जमै आया जाया बिन सतगुर मोह ना टुटई सब थके कर्म कमाया गुरमति नाम त्याई है सुख रजा जां तुद पाया कुल उधारे अपना धन जने दी माया सोभा सुरत सुहावनी जिन हर सेती चित लाया सलोक महला दूजा अखी बाजो वेखना विण कन्ना सुनना पैरां बाजो चलना विण हत्थां करना जीबै बाजो बोलना।

जिस लाभ लोभ अहंकारा नाव पढ़िया नाव बुझिया गुरमति विचारा गुरमति नाम तन खटिया भगती परे भंडारा।

साथ इस भाव सी नानक रखै लाज महला पहला हक पराया नानका उस सुअर उस गाय गुर पीर हा माता भरी जा मुरदार न खाए गली पिस्त ना जाइए छुट्टै सच कमाए मारन पाहे हराम मैं होए हलाल न जाए नानक गली कूड़ी कूड़ो पल्ले पाए महला पहला पंज निवाजा वक्त पंज पंजा पंजे नाम पहला सच हलाल दुए तीजा खैर खुदाई चौथी नीयत रास मन पंजवी सिफत सनाई करनी कलमा आख कै ता मुसलमान सदाई नानक जेते कूड़ियार कूड़ै कूड़ी पाए पौड़ी एक रतन पदार्थ वणज दी एक कच्चै दे वापारा सतगुर तुठै पाइयन अंदर रतन भंडारा बिन गुर किनै ना लद्या अंधे भौंक मोए कूड़ियारा मनमुख दूजै पच मोए ना बूझै विचारा एक सबाजो दूजा को नहीं किसे आगै करह पुकारा एक निरतन सदा भौंक दे एक ना भरे तुजारा बिन नावै होर धन नाही होर बिख्या सब छारा नानक आप कराए करे आप हुक्म सवारन हारा सलोक महला पहला मुसलमान कहावन मुश्किल जा हुए ता मुसलमान कहावै अवल औल दीन कर मिठा मस्कल माना माल मसावै होए मुस्लिम दीन महान मरण जीवन का भरम चुकावै रब की रजाए मन्ने सिर उपर करता मन्ने आप गवावै तौ नानक सर्ब जिया मेहरमत होए ता मुसलमान कहावै।

काम कामनी मोह तजै ता अंजन माहे निरंजन पावे तज मान अभमान प्रीत सुत दारा तज प्यास आस राम लिवलावे नानक साचा मन वसै साच शब्द हर नाम समावै पौड़ी राजे रैयत सिकदार कोई ना रहसियो हट पटन बाजार हुक्मी टहसियो पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने दर्भ भरे भंडार रीते एक खने ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे बाग मिलख घरवार किथे से अपने तंबू पलंग निवार सराय के लालती नानक सच दातार सनाखत कुदरती सलोक महला पहला नदियां हो वह तीनवा सोम हो वह दुध कीयो सगली धरती सक्कर हो वह खुशी करे नित जीयो।

महला पहला पार अठारह मेवा हुए गरुड़ा हुए सुआऊ चांद सूर्य दोए फिर दे रखी है निश्चल हो ऐ पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ महला पहला जे देह दुख लाई है पाप ग्रह दोए राह रात पीने राजे सिरे ऊपर रखी है।

आओ पवड़ी बद फैली गै बाना खसम ना जानी सो कहिया देवाना आप ना पछाणी कलह बुरी संसार वादे खपी है बिन नावे वेकार परमी पची है राह दोवे एक जाने सोई सिजसी कुफर गो कफराने पया धजसी सब दुनिया सुबहान।

क्या हाथ सच परखिए मोहरा हुए हाथ मरिए चखिए सच्चे की सरकार जुग जुग जानिए हुक्म मन्ने सिरदार दर दी बाणिए फुरमानी है कार खसम पठाया तबल बाज बीचार शब्द सुनाया एक होए असवार एक ना साखती इकनी बदे पार इक ना ताखती सलोक महला पहला जा पक्का ता कटिया रही सो पलरवार सन की सारा चिथिया कान लया तन झाड़ दोए पुड़ चक्की जोड़ के पीसन आए पहिठ जो दर रहे सो उबरे नानक अजब डिठ महला पहला वेख जे मिठा कटिया कट कुट बद्दा पाय खुंडा अंदर रख के देन सो मल सजाय रस कस टटर पाई।

गुरमुख जानिया, गुरमती आप दुआए सच पछाणिया, सच तेरा दरबार शब्द निशानिया, सच्चा शब्द विचार सच समाणिया, मनमुख सदा कूड़ियार परम फलाणिया, विष्ठा अंदर वास साधना जानिया, बिन नावे दुख पाए आमन जानिया, नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया। सलोक महला पहला, सीहां बाजा चरगा कुहियां, इना खवाले काह काहो खान तिना मास खवाले, एह चलाए राह नदियां विच टिब्बे दे खाले, थली करे असगा कीड़ा थाप दे पातशाही, लश्कर करे स्वाह जेते जी जीवह लै साहा, जीवाले तां के असाहा, नानक ज्यों ज्यों सच्चे पावे त्यों त्यों दे ग्राह। महला पहला, एक मास हारी एक त्रिण खाही, एक ना शक्ति अमृत पाहे, एक मिटिया मह मिटिया खाए, एक पौन समारी पौन समार, एक निरंकारी नाम आधार, जीवे दाता मरे ना कोए, नानक मुठे जाहे नाही मन सोए। पौड़ी, पूरे गुर की कार कर्म कमाई है, गुरमति आप गवाए नाम त्याई है, दूजी कार लग जन्म गवाई है, बिन नावे सब विस पेंजे खाई है, सच्चा शब्द सलाहे सच समाई है, बिन सतगुर सेवे नाही सुख निवास, फिर आई है, दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है, नानक सच खरा सलाहे पत स्यों जाई है। सलोक महला पहला, तुद भावे ता वावह गावह, तुद भावे जल नावह, जा तुद

सिख कहावै जा तुद भावै ता होवै राजे रस कस बहुत कमावै जा तुद भावै तेग बगावै सिर मुंडी कट जावै जा तुद भावै जाहे दसंतर सुन गल्ला घर आवै जा तुद भावै नाहिर चावै तुद पाणी तू भावै नानक एक कह बेनंती होर सगले कूड़ कमावै महला पहला जा तू वड्डा सब वडियाईया चंगा चंगा होई जा तू सच्चा ता सब को सच्चा कूड़ा कोई ना कोई आखण वेखण बोलण चलण जीवन मरना तात हुक्म साज हुक्मै विच रखै नानक सच्चा आप पौड़ी सतगुर सेवन संग परम चुकाई है सतगुर आखै कार सो कार कमाई है सतगुर होए दयाल ता नाम त्याई है लाहा भगत सो सार गुरमुख पाई है मनमुख कूड़ गुबार कूड़ कमाई है सच्चे दै दर जाए सच चुवाई है सच्चा अंदर महल सच बुलाई है नानक सच सदा सचियार सच समाई है सलोक महला पहला कल काती राजे का साई धर्म पंख कर उडरिया कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसै नाही कह चढ़िया हों भाल विकुन्नी होई अंधेरै राहो ना कोई विच हों मैं कर दुख रोई कहो नानक किन बिदगत होई महला तीजा कल कीरत प्रगट चानन संसार गुरमुख कोई उतरै पार जिसनो नदर करे तिस देवै नानक गुरमुख रतन सो लेवै पौड़ी भगतां तै संसारियां जोड़ कदे ना आया करता आप अपुल है ना भुलै किसै दा भुलाया भगत आपे मेलियन जिन्नी सचो सच कमाया संसारी आप खुआयन जिन्नी कूड़ बोल बोल बिख खाया चलन सार ना जाननी काम क्रोध विस वधाया भगत करन हर चाकरी जिन्नी अन दिन नाम त्याया दासन दास होए कै जिन्नी विचों आप गवाया ओना खसमै कै दर मुख उजले सच्चै शब्द सुहाया सलोक महला पहला सबाही सलाह जिन्नी त्याया इक मन से पूरे साह वखतै उपर लड़ मोए दूजै बहुते राह मन कियां मती खिंदियां बहुत पए असगाह गोते खाहे ना निकलै तीजै मुही ग्राह भुख तिखा दोए पौंकियां खादा हुए स्वाह पी खाने स्यों दोस्ती।

पूरा जे करे कटे नाही तोल पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाई है मुठी तंदे चोर महल ना पाई है इन्हें चित कठोर सेव गवाई है जित घट सच ना पाई सो पन कढ़ाई है क्यों कर पूरे वट तोल तुलाई है कोई ना आखै घट हमें जाई है लइन खरे परख दर भी नाई है सौदा इक तहट पूरे गुर पाई है सलोक महला दूजा अठी पैरी अठ खंड नावा खंड शरीर इस विच नौ निद नाम एक पाल है गुणी गहीर कर्मवंती सालाया नानक कर गुर पीर चौथे पहर सबहा कै सुरतियां कुजै चाओ तिन्ना दरियावां स्यों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम उतै अमृत वंडी है कर्मी हुए पसाव कंचन काया कसी है

गुण गाहक एक वन भुखियां भुख ना उतरै गली भुख ना जाए नानक भुखा ता रजै जा गुण कह गुणी समाए पौड़ी बिन सच्चे सब कूड़ कूड़ कमाई है बिन सच्चे कूड़ियार बन चलाई है बिन सच्चे तन शार शार रलाई है बिन सच्चे सब भुख जे पैंजै खाई है।

ठगियो ठग आईऐ जाइऐ तन मह तृष्णा अग शब्द बुझाइऐ सलोक महला पहला नानक गुर संतोख रुख धर्म फुल फल ज्ञान रस रसिया हरिया सदा पक्कै कर्म ध्यान पत के

संसार किन समझाई है, सच ना धरे प्यार तंदे ताई है। काल बुरा खै काल सिर दुनियाई है, हुक्मी सिर जंदार मारे दाई है। आपे दे प्यार मन वसाई है, मोहत ना चसा विलम भरिए पाई है। गुर प्रसादी बुझ सच समाई है, सलोक महला पहला तुम्मी तुम्मा विस। आकत तूरा निम फल मन मुख वसह तिस, जिस तू चेतना आवही नानक कहिए किस। हंडन करमा बाहरी महला पहला, मत पंखे रू किरत साथ। कब उत्तम कब नीच, कब चंदन कब अक डाल, कब उच्ची परीत। नानक हुक्म चलाई है।

खट दर्शन कह भीख किसे सच समावना सच्चा पुरख अलख शब्द सुहावना मन्नी नाउ बसंख दरगाह पावना खालक कौ आदेश ताडी जावना नानक जुग जुग एक मन वसावना सलोक महला दूजा मंत्री होए अठूहिया नागी लगे जाए आपण हथी आपने देखू चाया पे लाए हुक्म पया तुर खसम का अति हूं टका खाए गुरमुख स्यों मनमुख अड़े डुबे हक न्याय दुहां सिरिया आपे खसम वेख कर व्यपाय नानक एवै जानिए सब किस तिसहर जाय महला दूजा नानक।

मूल जान गल्लां करे हान लाए हान लाभना चली सच रहै सो विष्ट प्रवान सर संदे आगास को।

पौड़ी खसमै कै दरबार टाडी वसिया सच्चा खसम कलाण कमल विगसिया खसम पूरा पाए मनो रहस्या दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरस्या सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दस्या सच्चा शब्द विचार काल वधोसिया ढाडी कथे अकथ शब्द सवारिया नानक गुण गहरास।

इत के होम जग सद पूजा पय कार्य सो है गुरु समुंद नदी सब सिखी नाते जित वड्याई नानक जे सिर खुते नावन नाही ता सत चट्टे सिर शाई महला दूजा अग्नि पाला की करे सूरज के ही रात चंद अनेरा की करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस विच सब किछु।

चढ़ सुआया नानक मंग दान जो तुद पाया सलोक महला दूजा दीख्या आख बुझाया सिफती सच समेओ तिनको क्या उपदेसी है जिन गुर नानक देव महला पहला आप बुझाए सोई बुझे जिस आप सुझाए तिस सब किस सूझे।

पै पौरख्या पाई सुवार रहाउ पै तन अगन पखै पै नाल पै पौ कड़ी है शब्द सुवार पै बिन काड़त कच न कच अंधा सच्चा अंधी सट बुद्धि बाजी उपजै चाउ सहस सियाणप पवै ना ताउ नानक मनमुख बोलन वाउ अंधा अखर वाउ दुआउ गौड़ी महला पहला।

ना डूबै तरै जिन किश किया सो किश करै हुक्मे आवै हुक्मे जाए आगे पाछे हुक्म समाए हंस हित आसा समान तिस विच भूख बहुत नैसान पाओ खाना पीना आधार बिन खादे मर होए गवार जिसका कोए कोई कोए कोए सबको तेरा तू सबना का सोए जाके जी जंत धन माल नानक आखन बिखम बीचार गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर इहो वसेख कहना है किस कहन न जाए तौ कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ शर्म सुरत धोए ससुर भए करनी कामन कर मन लए साहा संजोग व्याह वजोग सच संतत कहो नानक जोग गौड़ी महला।

तट तीर्थ जाही, रत्न पदार्थ काट ही माही, पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाण, पीतर होंदी वस्त ना जाने। हौ ना मुआ मेरी मुई बलाई, ओ ना मुआ जो रहे आसमाई, कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नदर ना आया। गौड़ी महला पहला दखनी, सुन सुन बूझे मन नाऊ, ताँ कै सद बलिहारे जाऊ। आ

संजोगी गोइन थाट काम क्रोध फूटै बिखमाट बिन बखर सुनो कर हाट गुर मिल खोले बजर कपाट साध मिलै पूरब संजोग सच रहस्ये पूरे हर लोग मन तन देले सहज सुभाए नानक तिनकै लागो पाए गौड़ी महला पहला काम क्रोध।

हृदय पड़वाऊ, जेवा इंद्री एक सुवाऊ, दिष्ट विकारी नाही पहु पाऊ, आप मारे ता पाए नाऊ, शब्द मरे फिर मरन ना हुए, बिन मुए क्यों पूरा हुए, परपंच व्याप रहया।

उठाऊ। नानक गुरमत सहज सुमाऊ। गौड़ी महला पहला सतगुर मिले सो मरण दिखाई। मरन रहन रस अंतर पाई। गर्भ निवार गगन पुर पाई। मरन लिखाए आए नहीं रहना। हर जप जाप रहन हर सरना रहाउ। सतगुर मिले तदुबदा भागे। कमल बगास मन हर प्रभ लागे। जीवत मरे महारस आगे। सतगुर मिले सच संयम सूचा। गुर की पौड़ी ऊंचो ऊंचा। कर्म मिले जम का पौ मूचा। गुर मिले मिल अंक समाया। कर कृपा कर महल दिखाया। नानक हों मैं मार मलाया। गौड़ी महला पहला।

गुर बचनी सच शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वडियाई, नानक रहना भगत सरनाई, गौड़ी महला पहला, जिन अकथ कहाया अपयो पी आया, अन पै बिसरे नाम समाया, क्या डरिय डर डर है समाना, पूरे गुर कै शब्द पछाना, रहाओ जिस नर राम हृदय हर रास, सहज सुपाए मिले साबास, जाहे सवारे सांझ बयाल, इत उत मन मुख बांदे काल, अहनस राम हृदय से पूरे, नानक राम मिले ब्रह्म दूरे।

और तीन अवस्था कह बखियान, तुरियावस्था सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा तरना, बहुड़ जन्म ना हुए है मरना रहाउ, चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत सासत पंडित मुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार न पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया, जां कै हृदय बसिया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद, जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा माही निरास बुझाया, दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता, गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रह सुखाली, बाजी एहु संसारु, लाभ लोभ मुच कूड़ कमावे, बहुत उठावे पारू, तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यों धारू परिशारु, सुन सुन सिख हमारी, सो कृत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहुड़ न आवे वारी रहाऊ।

भोगत सह का पाना रहाउ। साहू हमारा ठाकुर पारा, हम तिसके बन जारी। जियो पिंड सब रास तिसह की, मारे आपे जी वाले। गौड़ी चेती महला पहला, अवर पंच हम एक जना। क्यों राखो कर बार मना, मार है लूट है नीत नीत। किस आगे करी पुकार जना।

ही सातना अमृत केल करे नित कामन अवर लुटेन सो पंच जना ताहे मड़ोली लूटिया देहरा सा तन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया भाग गए से पंच जना कामन लोड़े सोयना रूपा मित्र लोड़ेन सो खादाता नानक पाप।

लब लोभ की भाविसता जपस निरंजन रचस मना काहे बोलह जोगी कपट कना रहाउ काया कमली हंस एयाणा मेरी मेरी करत बिहानीता प्रणवत नानक नांगी दाजै फिर पाछै पछतानीता गौड़ी चेती महला पहला औखद मंत्र मूल मन एकै जे कर दृढ़ चित की जैरे जन्म जन्म के पाप कर्म के काटन हारा ली जैरे मन एको साहिब पाई रे तेरे तीन गुणा संसार समाव है अलख न लखना जाई रे रहाउ सक्कर खंड माया तन मीठी हम तो पंड उचाई रे रात अनेरी सूजस नाही लज टूकस मूसा पाई रे मन मुख करह तेता दुख लागे गुरमुख।

तिनकी पंख होवे जे नानक तो मूड़ा किश पाई रे। गौड़ी चेती महला पहला कत की माई बाप कत केरा किदू थाम हो हम आई अग्न बिंब जल पीतर निप।

नाम का। मूढ़े फिर पाश पछताहे रे रहाउ, अनता तन तरनी तरे अनत ना चाहे आ जाए। अनत को चाहन जो गए से आए अनत गवाए। आपन लिया जे मिले ता सब को पागठ होए।

गौरी बैरागण महला पहला हरनी हुआ बन बसा कंद मूल चुन खाऊ गुर प्रसादी मेरा सहो मिले वार वार हो जाऊं जियो मैं बनजार राम की तेरा नाम बकर वापार जी रहाउ कोकिल हुआ अम्ब बसा सहज शब्द विचार सहज सुपाए मेरा सहु मिले दर्श

आए नानक सदा सुहागणी जिन ज्योति ज्योत समाए गौड़ी पूर्वी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखिए करते का हुए विचार तित कर गाव हो सोहिला शिवर हो सिरजनहार तुम गाव हो मेरे नरपहु का सोहिला हौ वारी जाऊं जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ नित नित जियड़े संभालियन देखे गा देवनहार तेरे दान कीमत ना पवे तिस दाते कवन समार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सज्जन आसी सड़िया ज्यो होवे साहिब स्यो मेल कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरी है नानक से दे आवन राग गौड़ी गवार री महला तीजा चौपदी।

शब्द पछाण सतगुर कै पहे ब्रह्म पहु जाई पैरा कै सच रंग सुमाई रहाउ गुर मिले हर मन वसै सुपाई मेरा प्रभ भारा कीमत नहीं पाई।

साची वाणी शब्द विचार गावत रहै जे सतगुर पावे मन तन राता नाम सुहावे रहाउ एक गावे है एक भगत करे नाम ना पावे बिन असने सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना पिर राखिया सदा उरतार भगत करह मूर्ख आप जनाव है नच नच टप है बहुत दुख पाव है नचे टपे भगत न होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वशल भगत कराए सोए सच्ची भगत बिचो आप खोए मेरा प्रभ साचा सब बिद जाने नानक बख्शे नाम पछाणे गौड़ी गुआरी महला तीजा मन मारे धात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोई मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे दे वडियाई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाउ गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन मैं मत मैं गल मिकदारा गुर अंकस मार जी वालन हारा मन असाद साधे जन कोए अचार चरे ता निर्मल होए गुरमुख एहो मन लया सवार हौ मैं विचों तजे वकार जो तुर राखियन मेल मलाए कदे ना विचण है शब्द समाए अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाण गौड़ी गुआरी महला तीजा हम मैं विच सब जग बहुराना दूजे पाए परम पुलाना बहु चिंता चितवै आप ना पछाना धंधा करतिया आन दिन वेहाना हिरदय राम रमहु मेरे भाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाउ गुरमुख हिरदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हौ मैं मारे गुर शब्द पछाता कृपा करे प्रभ कर्म बधाता से जन सच्चे जो गुर शब्द मलाए

समाना जित सेवे दरगाह पत परवाना हर के नाम बिटो बल जाऊं तू विसर है तद ही मर जाऊं रहाऊ तिन तू विसर है जे तुदे आप भुलाऊ।

तै पुन तिन हम मैं मारी, नानक जो नाम रते तिन को बलिहारी। गौड़ी ग्वारी महला तीजा, तू अकथ क्यों कथिया जाई, गुर शब्द मारन

सब कोई, गुर शब्द समावे बूझे हर सोई, सुन सुन वेखे शब्द मलाए, वड्डी वड्याई गुर सेवा ते पाए, नानक नाम रते हर नाम समाए, गौड़ी गुवारी महला तीजा, मनमुख सूता माया मोहे प्यार, गुरमुख जागे

ते बूझै जन कोई रहाउ। असंत अनाड़ी कदे ना बूझै, कथनी करे तै माया नाल लूझै। अंध अज्ञानी कदे ना सीजै, इस युग में राम नाम निस्तारा। बिरला को पाई गुर शब्द विचारा, आप तरै सगले कुल उदारा। इस कल युग में कर्म धर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कै कर होई। नानक नाम बिना को मुक्त ना होई, गौड़ी महला तीजा गुवारेरी। सच्चा अमर सच्चा पातशाह।

राम जपहु हो पवजन उत्तरु हो पार रहाव परमे आवे परमे जाई एहो जग जन्मया दूजे पाई मन मुख ना चेतै आवे जाई आप भुला के प्रभ आप भुलाया एहो जियो वडाणी चाकरी लाया महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया कृपा कर सतगुरु मलाए एको नाम चेते विचो परम चकाए नानक नाम जपे नाओ नौ निद पाए गौड़ी गुआर दी महला तीजा जिन्ना गुरमुख त्याया।

बिन नावे त्रिग त्रिग अहंकार बंधन बांधियो माया पास जन नानक छूटे गुर प्रगास महला तीजा गौड़ी बैरागण जैसी धरती ऊपर मेघला बरसत है क्या धरती मध्य पानी नाही जैसे धरती मध्य पानी परगासिया बिन पग्गा वरसत फरा।

तुझ ही माही समाही। इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही। जाका कार्य सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही। तेरा

प्रीत करे पुत खाए, मीने प्रीत पई जल नाए, सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए। ए हर जन हर मेलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाहे हमारे।

जा हर जस गावे सारिंग प्रीत बसह जल तारा नरपत प्रीत माया देख पसारा हर जन प्रीत जपे निरंकारा नर प्राणी प्रीत माया धन खाटे गुरसिख प्रीत गुर मिले गलाटे जन नानक प्रीत साध पग चाटे गौड़ी गुआरी महला चौथा भीखक प्रीत भीख प्रभ पाए भूखे प्रीत होवे अन्न खाए गुरसिख प्रीत गुर मिल आघाए हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी कर कृपा लोच पूर हमारी रहाओ चकवी प्रीत सूरज मुख लागे मिले प्यारी सब दुख त्यागे गुरसिख प्रीत गुरु मुख लागे बछरे प्रीत खीर मुख खाए हृदय बिगसै देखे माए गुरसिख प्रीत गुरु मुख लाए होर सब प्रीत माया मोह काचा बिन सजाए पूरा कच पाचा जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा गौड़ी गुआर री महला चौथा सतगुर सेवा सफल है बनी जित मिल हर नाम त्याया हर तनी जिन हर जपया तिन पीछे छूटी कणी गुरसिख हर बोलो हो मेरे भाई हर बोलत सब पाप लह जाई रहाओ जब गुर मिलया तब मन वास आया तावत पंच रहे हर त्याया अन दिन नगरी हर गुण गाया सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई तिन कूड़ ते आगे हर लिब लाई ते हर दरगाह मुख उजल पाई गुर सेवा आप हर पावे कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावे नानक गुरमुख हर आप तरावे गौड़ी गुआर री महला चौथा हर आपे जोगी डंडा तारी हर आपे रव रहे बनवारी हर आपे तप तापे लाए तारी ऐसा मेरा राम रहया भरपूर निकट वसै नाही हर दूर रहाओ हर आपे शब्द सुरत धुन आपे हर आपे वेखै विगसै आपे हर आप जपाए आपे हर जापे हर आपे सारिंग अमृत धारा हर अमृत आप पी आवनहारा।

पणंजह रंग स्यों जे आप दयाल हुए देह हम बन जारे राम के हर वणज करावे दे रासरे रहाओ लाहा हर भगत तन खटिया हर सच्चे साहा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया होर वणज करह वापारिये अनंत तरंगी दुख माया वे जे है वणज हर लाया फल तेहा तिन पाया हर हर वणज सो जन करे

महला चौथा ज्यों जननी गर्भ पालती सुत की कर आसा वड्डा हुए तन खात दे कर भोग बलासा त्यों हर जन प्रीत हर राखदा दे आप हथासा मेरे राम मैं मूर्ख हर राख मेरे गुसैया जन की उपमा तुझह वडैया रहा मंदर कर आनंद हर हर जस मन पावे सब रस मीठे मुख लग है जां हर गुण गावे हर जन परवार सधार है इक्की ही कुली सब जगत छडावे जो किश किया सो हर किया हर की वडियाई हर जी तेरे तू वरतदा हर पूज कराई हर भगत भंडार लहाईंदा आपे वरताई लाला हाट विहाजिया क्या तिस चतुराई जे राज बहाले ता हर गुलाम कासी को हर नाम कढाई जन नानक हर का दास है हर की वडियाई गौड़ी गुवार भी महला चौथा किरसानी किरसान करे लोचे जियो लाए हल जोते उदम करे मेरा पुत धी खाए त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छाए।

मुह वधावे त्यो हर जन हर हर बोलता हर बोल सुख पावे बिक संचय हटवानिया बह हाथ कमाए मोह झूठ पसारा झूठ का झूठे लपटाए त्यों हर जन हर तन संचया हर खर्च लै जाए इह माया मोह कटंब है।

गौड़ी बैरागण महला चौथा नित दिन सरात लालच करी पर मैं परमाया वेगार फिरे वेगारिया सिर पार उठाया जो गुर की जन सेवा करी सो कर कह काम हर लाया मेरे राम तोड़ बंधन माया कर कह कम लाए नित हर गुण गावे हर नाम समाए रहाउ नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजी अर्थ सब माया कै बंदे कै दान ले कै नरपत मर जाया तन तन सेवा सफल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद की चै बहु भांत कर माया कह ताई जा लाहा दे ता सुख मने तू टै मर जाई जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे जिस हर आप कृपा करे सो वे

हमरै मन चित हर आस नित, क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा, जिन प्रीत लाई सो जानता, हमरै मन चित हर बहुत प्यारा, हौ कुर्बानी गुरे अपनी, जिन बिछड़िया मेलिया मेरा सिरजनहार।

अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गणत ना आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लह हर पावे। हम अपराधी राखे गुर संगति, अपदेश दियो हर नाम छडावे। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोल है तब विस्म हुए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुर राख लिए छडाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंधप मेरा सखा सखाए। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जान हो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे। गौड़ी बैरागन महला चौथा, कंचन नारी मह जियो लुभत है। मोह मीठा माया, कर मंदर घोड़े खुशी, मन अन रस लाया।

दयाल कर कृपा बख्शे अवगण सब मेरे रहाओ। किस रूप नहीं किस जात नाही किस ढंग ना मेरा क्या मुँह लै बोल है गुण बिहून

कपड़ पहनन दिया रासे अन्न को गाणी जिन दिए सो चेतना आवई पशु हौ कर जानी सब कीता तेरा वर्तदा तू अंतर जामी हम जंत विचारे क्या करह सब खेल तुम स्वामी जन नानक हाट विहाजिया हर गुलम गलामी गौड़ी बैरागण महला चौथा ज्यों जननी सुत जन पालती राखह नदर मजार अंतर बाहर मुख देह ग्रास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारक हर प्रभ के है यानी तन तन गुरु गुर सतगुर पांदा जिन हर उपदेश दे किए सियाणी रहाओ जैसी गगन परंती उड़ती कपरे बागे वाली ओहरा खै चीत पीछे बिच बचरे नित हिरदय सार संभाली त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखै जी नाली जैसे काती तीस बतीस है विच राखै रसना मास रात केरी कोई जान हो मास काती कै किस हाथ है सब वसगत है हर केरी त्यों संत जना की नर निंदा करह हर राखै पैज जन केरी भाई मत कोई जानो किसी कै किस हाथ है सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप सब हर कै वस है कोई लाग ना सकै बिन हर का लाया ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावहु जन नानक जो अंति अवसर लै छाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लहिए मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिले हों खिन खिन करी नमस्कार मेरा गुर पूरा क्यों मिले रहाओ कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा इच्छ पुन्नी जन केरिया ले सतगुर तूरा हर भगत दरड़ावे हर भगत सुने तिस सतगुर मिलिए टोटा मूल ना आवई हर लाभ नित दृढ़िए जिस को हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उधरे हर गुण गावाही महला चौथा गौड़ी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग भया अत गूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हों गोली जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ करहो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली हर हर रूप सब जोत सबाई हर निकट वसै हर कोली हर हर निकट वसै सब जग कै अपरंपर पुरख अतोली हर हर प्रगट कियो गुर पूरै सिर वेचियो गुर पै मोली हर जी अंतर बाहर तुम सरनाग तुम वड पुरख वडोली जन नानक अन दिन हर गुण गावै मिल सतगुर गुर वे चोली गौड़ी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी जगदीश्वर पुरख बधाते जित मार्ग तुम प्रेर हो स्वामी तित मार्ग हम जाते राम मेरा मन हर से तीराते सत संगत मिल राम रस पाया हर राम मैं नाम समाते रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते तिनके पाप दोख सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सरनाते दुर्मत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते राम तुम आपे आप आप प्रभ ठाकुर तुम जेवड़ अवर ना दाते
जन नानक नाम लए ता जीवै, हर जपियै हर कृपा ते, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, करहो कृपा जग जीवन दाते, मेरा मन हर से तीराचे, सतगुर बचन दियो अत निर्मल, जप हर हर हर मन माचे, राम मेरा मन तन बेद लियो हर साचे, जेहे काल कै मुख जगत सब ग्रसया, गुर सतगुर कै बचन हर हम बाचे, रहा जिनको प्रीत नाही हर सेती, ते साकत मूड नर काचे, तिनको जन्म मरण अत भारी, विच विष्टा मर मर पाचे, तुम दयाल सरन प्रतपालक, मोको दीजै दान हर हम जाचे, हर के दास दास हम कीजै, मन निरत करे कर नाचे, आपे साहा बड़े प्रभु स्वामी, हम बन जारे है ताचे, मेरा मन तन जियो रास सब तेरे, जन नानक के साहा प्रभ साचे, गौड़ी पूर्वे महला चौथा, तुम दयाल सर्व दुख पंजन,

हम सतगुर पार ब्रह्म कर मानी, हम मूड मुगद अशुद्ध मत होते, गुर सतगुर कै बचन हर हम जानी रहाउ, जितने रस अनरस हम देखे सब कितने फीक फीकानी, हर का नाम अमृत रस चाखिया मिल सतगुर मीठ रस गानी, जिनको गुर सतगुर नहीं पीटिया ते साकत मूड देवानी, तिनके कर्महीन तुर पाए देख दीपक मोहे पचाने, जिनको तुम दया कर मेलो ते हर हर सेव लगानी, जन नानक हर हर हर जप प्रगटे मत गुरमत नाम समाने। गौड़ी पूर्वी महला चौथा। मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है स्वामी, कहो कित्ते हर पहु नसीऐ, हर आपे बख्श लए प्रभ साचा, हर आप छुड़ाए छुटिऐ, मेरे मन जप हर हर हर मन जपिऐ, सतगुर की सरनाई भज पौ मेरे मना, गुर सतगुर पीछे छुटिऐ रहाउ, मेरे मन सेव हो सो प्रभ सर्व सुख दाता, जित सेवै निज कर वसीऐ, गुरमुख जाए लहो कर अपना, कस चंदन हर जस कसीऐ, मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम, लै लाहा हर मन हसीऐ, हर हर आप दया कर देवै, ताय अमृत हर रस चखीऐ, मेरे मन नाम बिना जो दूजै लागे, ते साकत नर जम कुटिऐ,

यह लेखा छुट्टी है जन नानक हर प्रभ पूरे किए खिन मासा तोल ना कटिए गौड़ी पूर्वे महला चौथा हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरे मेरा जियो पिंड सब तेरी दया करहो हर दर्श दिखावहो मेरे मन तन लोच कनेरी राम मेरे मन तन लोच मिलन हर केरी गुर कृपाल कृपा किंचत गुर कीनी हर मिल आए प्रभ मेरी रहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम हर जानो मेरी अन दिन नाम जपी सुख पाई नित जीवा आस हर तेरी गुर सत गुरु दाते पंथ बताया हर मिल आए प्रभ मेरी अन दिन अनद पया वड भागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश्वर करते सब वसगत है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर राखो पैज जन केरी गौड़ी पूर्वी महला चौथा इहो मनुआ खिन ना टिकै बहु रंगी दह दह दिस चल चल हांडी गुरपुरा पाया वड भागी हर मंत्र दिया मन ठाढे राम हम सतगुर लाले कांडे रहाओ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु साढ़े पार उपकार पुन बहु किया बहु दुत्तर तार पराढ़े जिनको प्रीत हृदय हर नाही तिन कूरे गाडन गाडी ज्यों पानी कागद बिन सुजात है क्यों मन मुख गर्भ गलाडी हम जानिया कशु ना जान है आगे ज्यों हर राख है त्यों ठाडी हम पूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे कांडी गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडाई पूर्व लिखित लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाई कर साधु अंजली पुन वड्डाई कर डंडोत पुन वड्डाई रहाओ साकत हर रस साधना जानिया इन अंतर हम मैं कंडाई ज्यों ज्यों चल है चुभे दुख पावे है जम काल सह सिर डंडाई हर जन हर हर नाम समाणी दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डाही जन नानक नाम आधार टेक है हर नाम

मनमुख हियरा अत कठोर है तिन अंतर कार करीता। बिसियर कौ बहु दूध पी आई है भिक निकसै फोल फलीठा। हर प्रभ्यान मलाव गुर साधु कस गरड़ो शब्द मुख लीठा। जन नानक गुर के लाले गोले लग संगत करुआ मीठा। गौड़ी पूर्वी महला चौथा।

मस्तक पाग सुपागी राम गुरमत हर लिव लागी रहाउ कट कट रमैया रमत राम राई गुर शब्द गुरु लिव लागी हो मन तन देवो काट गुरु कहो मेरा भ्रम पहो गुर बचनी भागी अंधियारै दीप ज्ञान जलाई गुर ज्ञान गुरु लिव लागी अज्ञान अंधेरा बिनस बनासेउ कर वस्त लही मन जागी साकत बदक माया तारी तिन जम जो हन लागी हुन सतगुर आगै सीस ना बेचिया हुए आवह जाहे अभागी हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर हम शरण प्रभु हर मांगी जन नानक की लाज पात गुरु है सिर बेचे हो सतगुर आगी गौड़ी पूर्वी महला चौथा हम अहंकारी अहंकार अज्ञान मत गुर मिले आप गवाया हम मैं रोग गया सुख पाया तन तन गुरु हर राया राम गुर कै बचन हर पाया रहाउ मेरा ही अरे प्रीत राम राय की गुर मार्ग पंथ बताया मेरा जियो पिंड सब सतगुर आगै जिन विछड़िया हर गल लाया मेरा अंतर प्रीत लगी देखन को गुर हिरदय नाल दिखाया सहज आनंद भया मन मोरै गुर आगै आप बिचाया हम अपराध पाप बहु कीने कर दुष्टि चोर चुराया अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर पाया गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजै शब्द अनाहद गुरमत मनुआ गावे वड भागी गुर दर्शन पाया तन तन गुरु लिव लावे गुरमुख हर लिव लावे रहाउ हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे हम मल मल तो वह पाव गुरु के जो हर हर कथा सुनावे हृदय गुरमत राम रसायन जिहवा हर गुण गावे मन रसक रसक हर रस आगामी फिर बहोर न भूख लगावे कोई करे उपाव अनेक बहुतेरी बिन कृपा नाम ना पावे जन नानक को हर कृपा तारी मत गुरमत नाम दृढ़ावे रा गौड़ी माज महला चौथा गुरमुख जिंदू जप नाम करम्मा मत माता मत जियो नाम मुख रामा संतोख पिता कर गुरपुरख अजन्मा वड भागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो वड भागी मिल सुगड़ सुजाणी जियो मेरा मन तन हर रंग पिन्ना आवहु संत हो मिल नाम जपाहा विच संगत नाम सदा ले लाहा जियो कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो मिल पूर्व लिखियड़े तुर कर्मा सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर कुह कियड़ा शब्द मुख पाया हर अमृत बुठड़ा मिलिया हर राया जियो जन नानक प्रेम रतन्ना गौड़ी माज महला चौथा आओ सखी गुण कामण करीहा जियो मिल संत जना रंग मान रलिया जियो गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो हर तुठै टुल टुल मिलिया जी।

जियो। हर हर नाम प्रगासिया मेरे गोविंदा, सब दालत दुख लह जाही दियो। हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा, वडभागी नाम समाही दियो। नैनी मेरे प्यारिया, नैनी मेरे गोविंदा, किने हर प्रभ डिठड़ा नैनी दियो। मेरा मन पन बहुत बैरा गया मेरे गोविंदा, हर बाजो हूं धन कुम लैनी जियो। संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा, मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो। हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा, मैं सुख विहानी रैनी जियो। मैं मेलोह संत मेरा हर प्रभ सज्जन, मैं मन तन भुख लगाइया जियो। हो रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतम, मैं अंतर बिरहो हर लाइया जियो। हर राया मेरा सज्जन प्यारा, गुर मेले मेरा मन जीवाइया जियो। मेरा मन तन आसा पूरिया मेरे गोविंदा, हर मिलिया मन वादाइया जियो। वारी मेरे गोविंदा, वारी मेरे प्यारिया, हौ तुद विटण हो सदवारी जियो। मेरा मन तन प्रेम परम का मेरे गोविंदा, हर पूंजी राख हमारी जियो। सतगुर विष

हरे आपे सब कट भोग दा मेरे गोविंदा, आपे रसिया भोगी जियो हर सुजान ना भुलई मेरे गोविंदा, आपे सतगुर जोगी जियो आपे जगते उपाए दा मेरे गोविंदा, हरे आप खेले बहुरंगी जियो एक ना भोग पगाए दा मेरे गोविंदा, एक नगन फिर है ना

हर कथा मंगह हर चंगी जियो, हर आपे भगत कराएंदा मेरे गोविंदा। हर भगता लोच मन पूरी जियो, आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा। रब रहया नहीं दूरी जियो, हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा। हर आप रहया भरपूरी जियो, हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा। हर वेखै आप हदूरी जियो, हर अंतर वाजा पौन है मेरे गोविंदा। हर आप बजाए त्यों वाजे जियो, हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा। गुर शब्दी हर प्रभ गाजे जियो, आपे सरन पुआएंदा मेरे गोविंदा। हर भगत जना राख लाजे जियो, वडभागी मिल संगती मेरे गोविंदा। जन नानक नाम सिद्ध काजे जियो, गौड़ी माज महला चौथा। मैं हर नामे हर बिरहो लगाई जियो, मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो। हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो, मेरा नाम सखा हर पाई जियो। गुण गावो संत जियो, मेरे हर प्रभ केरे जियो। जप गुरमुख नाम जियो, भाग वडेरे जियो। हर हर नाम जियो, प्राण हर मेरे जियो। फिर बहुड़ ना

मन लगा भाव जियो गुर शब्दी पाई हर प्रीतम राव जियो वड भागी जप नाउ जियो मेरा मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो हर मेलो संत जियो गोविंद प्रभ पासा जियो सतगुर मत नाम सदा प्रगासा जियो जन नानक पूरे अड़ी मन आसा जियो गौड़ी माज महला चौथा मेरा बिरही नाम मिलै ता जीवा जियो मन अंदर अमृत गुरमत हर लीमा जियो मन हर रंग रतड़ा हर रस

पंजवा राग गौड़ी गुआरी चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद इन बेद कुशल होत मेरे भाई

सुपन पेखारी एक कुशल मोको सतगुरु बताया हर जो किश करे सो हर किया भगता पाया जन नानक हो मैं मार समाया इन बिद कुशल होत मेरे भाई इउं पाईए हर राम सहाई रहाओ दूजा गौड़ी गुआररी महला पंजवा क्यों भ्रमिए भ्रम किसका होई जां जल थल महियल रविया सोई गुरमुख उबरे मनमुख पत खोई जिस राखै आप राम दयारा तिस नहीं दूजा को पहुंचन हारा रहाओ सब मह वरतै एक अनंता ता तू सुख सो होए अचिंता ओहो सब किस जाने जो वरतंता मनमुख मोए दिन दूजी प्यासा बहु जोनी पवह तुर किरत लिखियासा जैसा बीजह तैसा खासा देख दर्श मन पया विगासा सब नदनी आया ब्रह्म परगासा जन नानक की हर पूर्ण आसा गौड़ी ग्वार री महला पंजवा कई जन्म पय कीट पतंगा कई जन्म गजमीन कुरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल एह दे संजरिया रहाओ कई जन्म सैल गिर करिया कई जन्म